0: मास्टर निर्गुणों के भाव लगा दी का
1: ना व्यास रहे दे।
2: पापा मम्मी के लिए बेस्ट गिफ्ट कारवा मिनी।

0: अनेकतामा एक, यो हो भोजपुरी एफएम 92.8।
1: जो लोग डायबिटीज से परेशान है वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज जैसे
2: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, टीका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, सुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
1: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
3: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता प्रत्येक गुरुवार घोड़ा साहन स्टेट बैंक से 5 मकान पूरब मुरारी जी के मकान में,
4: प्रत्येक शुक्रवार, शनिवार एवं रविवार
1: रक्सौल डंकर हॉस्पिटल से पूरब मिश्रा गली से पूरब वाली गली में त्यागी जी के अपने मकान में, प्रत्येक मंगलवार बेतिया उर्वशी सिनेमा से पूरब सेंट्रल बैंक के बगल में मानवर शोरूम के पास अजय झा जी के मकान में, प्रत्येक बुधवार मोतिहारी बेलही देवी मंदिर से पूरब राजेश्वरी होटल के सामने आनंद होटल के नीचे, प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में,
4: प्रत्येक बुधवार नरकटियागंज रजिस्ट्री कचहरी रोड तारखाना के बगल में सरबदेव कुशवाहा के मकान में।
3: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554493
1: और 90971602।
5: डॉक्टर साहब देखी ना, मुँह पियरा गई बा, हाँ तो झंझनाता, का बाएगर इलाज?
6: देखी अपने के कहल सब समस्या आ साथ में चेहरा मुरझाइल, सीढ़ी चढ़ला पर आ तेज चढ़ला पर जन सांस दम फूलेला उ समस्या, आ अपन उम्र से जन 5 साल ज्यादा दिखेला, इस सब समस्या के समाधान करे खातिर हेमोडेक्स के प्रयोग करी। साथ ही अपने अपन बच्चा के पूर्ण रूप से सुंदर स्वस्थ देखे के चाहतानी तो हेमोडेक्स ही प्रयोग करी।
7: जी गुजरात ग्रोमेड, विश्वास के एक नाम, गुजरात ग्रोमेड के बनल संपूर्ण पारिवारिक टॉनिक हेमोडेक्स, जे खून कमी के समस्या से तुरंत छुटकारा दी। हेमोडेक्स आज वे अपन नजदीकी दुकान से खरीदी हेमोडेक्स।
8: जी अब अपने के साथवा स्टोमाक्यू, जौन, गैस्ट्रिक अल्सर, हाइपर एसिडिटी के कारण सांस और छाती के तकलीफ, उच्च रक्तचाप, पुरान आव, पुरान कब्ज, सिर दर्द एवं बेचैनी जैसन तकलीफ के दूर करेला,
5: पेट के विभिन्न प्रकार के तकलीफ के करे दूर सियोर, इहा स्टोमाक्यूर।
7: गुजरात ग्रोमेड गुजरात के उत्पादन स्टोमाक्यूर।
9: अरे वाह भौजी, अरे ये की चेहरा पर गजब के चमक, पहिने कारी लगे छन, गोड़ भगे।

0: आ हम फोकटिया क्रीम नहीं यूज करै छी, ई त गोरी गोरी क्रीम के जादू छै, बुझलियै ने?
1: जी हाँ, गोरी गोरी क्रीम जे देत अहाँके चेहरा पर गजब सन चमक, चेहरा के राखत गोरापन सावला हटात आ तहिना मुँह में रहल दाग झुर्री सब सब दूर करत आ आँख के नीचा में रहल कालापन सेहो दूर भगात। आओ यत्र तत्र सर्वत्र बाजार में उपलब्ध अछि गोरी गोरी क्रीम।
2: आब हरेक गोरे गोरे क्रीम पर एकटा निश्चित उपहार देल जायत आ नकली सँ सावधान रहब।
0: तहन आब दोसर नहि, बस गोरी गोरी क्रीम।
1: निर्माता सारा भाई।
3: कोलार्क रिसर्च बीरगंज 14 बहुअरी।
4: जी आप सही सुने, कोलार्क रिसर्च बीरगंज 14 बहुअरी जो कि नारायणी सिंचाई के पूर्व में स्थित एक बहुत ही मनमोहक और हरियाली भरे वातावरण में सभी आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है। इस रिसर्च में अनेकों पार्टी हॉल जिसमें आप 20 आदमी से लेके 2000 आदमी तक का फंक्शन कर सकते हैं।
3: खास तौर पे बोर्ड मीटिंग, कॉन्फ्रेंस, बर्थडे पार्टी एंड एनिवर्सरी पार्टी और साथ ही शादियों के लिए खास रूप से अलग अलग पैकेज तैयार किया गया है।
4: कोलार्क रिसर्च आपको अनेकों तरह के व्यंजन परोसने के लिए तैयार है, जिसमें खास करके चाइनीज, इंडियन, कॉन्टिनेंटल, इटालियन और रीजनल फूड अवेलेबल है। पूरी तरह से ट्रेंड स्टाफ स्वादिष्ट खाना के साथ आपको सर्विस देने को तैयार है।
3: आप किसी भी विशेष जानकारी और बुकिंग के लिए फूड एंड बेवरेज मैनेजर से कॉन्टेक्ट करें।
5: संपर्क मोबाइल नंबर 98023 10555 और 98023 10888।
6: सूचना भोजपुरिया FM से विज्ञापन एवं प्रचार प्रसार करावे खातिर संपर्क करी। संपर्क के खातिर मोबाइल नंबर 98550 36867, 98013 65011, वैसा ही व्हाट्सएप नंबर 98013 65011। अपने के बिजनेस तथा व्यापार के सहयात्री एवं शुभ चिंतक, हर पल अपने के साथ रेडियो भोजपुरिया FM 92.8 MHz, आदर्श नगर बीरगंज टाउन हॉल गेट के पास परसा नेपाल।
7: नमस्ते, आप सुन रहे हो भोजपुरिया FM 92.8। सुनते रहो, सुनाते रहो।

0: भोजपुरी आवाज, भोजपुरी संस्कृति और भोजपुरिया सबके साथ यह भोजपुरिया FM 92.8 MHz।
1: जो लोग डायबिटीज से परेशान है वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा कर इलाज कराकर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य SP त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज, जैसे
2: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, साइटी का, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंताएं और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
1: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
3: वैद्य SP त्यागी जी से मिलने का पता प्रत्येक गुरुवार घोड़ा साहन स्टेट बैंक से 5 मकान पूरब मुरारी जी के मकान में,
4: प्रत्येक शुक्रवार, शनिवार एवं रविवार
1: रक्सौल डंकर हॉस्पिटल से पूरब मिश्रा गली से पूरब वाली गली में त्यागी जी के अपने मकान में, प्रत्येक मंगलवार बेतिया उर्वशी सिनेमा से पूरब सेंट्रल बैंक के बगल में मानवर शोरूम के पास अजय झा जी के मकान में, प्रत्येक बुधवार मोतिहारी बेलही देवी मंदिर से पूरब राजेश्वरी होटल के सामने आनंद होटल के नीचे, प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में,
4: प्रत्येक बुधवार नरकटियागंज रजिस्ट्री कचहरी रोड तार खाना के बगल में सरबदेव कुशवाहा के मकान में।
3: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554493
1: और 9097160602।
5: डॉक्टर साहब देखी ना, मुंह पियर आ गई बा, हाथों झनझनाता, का बायकर इलाज?
6: देखी अपने के कहल सब समस्या आ साथ में चेहरा मुरझाइल, सीढ़ी चढ़ला पर आ तेज चढ़ला पर जन सांस दम फूलेला उ समस्या, आ अपन उम्र से जन 5 साल ज्यादा दिखेला, इस सब समस्या के समाधान करे खातिर हेमोडेक्स के प्रयोग करी। साथे अपने अपन बच्चा के पूर्ण रूप से सुंदर स्वस्थ देखे के चाहतानी तो हेमोडेक्स ही प्रयोग करी।
7: जी गुजरात ग्रोमेट, विश्वास के एक नाम, गुजरात ग्रोमेट के बनल संपूर्ण पारिवारिक टॉनिक हेमोडेक्स, जे खून के कमी के समस्या से तुरंत छुटकारा दी। हेमोडेक्स आजवे अपन नजदीकी दुकान से खरीदी हेमोडेक्स।
8: जी अब अपने के साथ बा स्टोमाक्यूर, जॉन, गैस्ट्रिक अल्सर, हाइपर एसिडिटी के कारण सांस और छाती के तकलीफ, उच्च रक्तचाप, पुरान आ पुरान कब्ज, सिर दर्द एवं बेचैनी जैसन तकलीफ के दूर करेला,
9: पेट के विभिन्न प्रकार के तकलीफ के करे दूर सियोर, यह स्टोमाक्यूर।
7: गुजरात ग्रोमेट गुजरात के उत्पादन स्टोमाक्यूर।
10: अरे वाह भौजी, अरे ई की चेहरा पर गजब के चमक, पहिने कारी लगे छन, गोड़ भर।

0: हम फोकटिया क्रीम नहीं यूज करै छी, ई त गोरी गोरी क्रीम के जादू छै, बुझलियै ने?
1: जी हाँ, गोरी गोरी क्रीम जे देत अहाँके चेहरा पर गजब सन चमक, चेहरा के राखत गोरापन सावला हटात, आ तहिना मुँह में रहल दाग धुरी सब सब दूर करत, आ आँख के नीचा में रहल कालापन सेहो दूर भगात। आओ यत्र तत्र सर्वत्र बाजार में उपलब्ध अछि गोरी गोरी क्रीम।
2: आब हरेक गोरे गोरे क्रीम पर एकटा निश्चित उपहार देल जायत, आ नकली सँ सावधान रहब।
0: तहन आब दोसर नहि, बस गोरी गोरी क्रीम।
1: निर्माता सारा भाई।
3: सूचना भोजपुरिया FM से विज्ञापन एवं प्रचार प्रसार करावे खातिर संपर्क करी। संपर्क के खातिर मोबाइल नंबर 98550-36867, 98013-65011, वैसा ही व्हाट्सएप नंबर 98013-65011। अपने के बिजनेस तथा व्यापार के सहयात्री एवं शुभ चिंतक, हर पल अपने के साथ। रेडियो भोजपुरिया FM 92.8 MHz, आदर्श नगर बीरगंज टाउन हॉल गेट के पास, परसा नेपाल।
4: नमस्ते, आप सुन रहे हो भोजपुरिया FM 92.8। सुनते रहो, सुनाते रहो।

0: भोजपुरी आवाज, भोजपुरी संस्कृति और भोजपुरिया सबके साथ यह भोजपुरिया FM 92.8 MHz।
1: जो लोग डायबिटीज से परेशान है वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा कर इलाज कराकर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य SP त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज जैसे
2: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया टीका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोरायसिस तथा
1: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
3: वैद्य SP त्यागी जी से मिलने का पता प्रत्येक गुरुवार घोड़ा साहन स्टेट बैंक से 5 मकान पूरब मुरारी जी के मकान में,
4: प्रत्येक शुक्रवार, शनिवार एवं रविवार
1: रक्सौल डंकन हॉस्पिटल से पूरब मिश्रा गली से पूरब वाली गली में त्यागी जी के अपने मकान में, प्रत्येक मंगलवार बेतिया उर्वशी सिनेमा से पूरब सेंट्रल बैंक के बगल में मानवर शोरूम के पास अजय झा जी के मकान में, प्रत्येक बुधवार मोतिहारी बेलही देवी मंदिर से पूरब राजेश्वरी होटल के सामने आनंद होटल के नीचे, प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में,
4: प्रत्येक बुधवार नरकटियागंज रजिस्ट्री कचहरी रोड तार खाना के बगल में सरबदेव कुशवाहा के मकान में।
3: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
1: और 9097160602।
5: डॉक्टर साहब देखी ना, मुँह पियरा गई बा, हाथों झनझनाता, का बाएकर इलाज?
6: देखी अपने के कहल सब समस्या आ साथ में चेहरा मुरझाइल, सीढ़ी चढ़ला पर आ तेज चढ़ला पर जन सांस दम फूलेला उ समस्या आ अपन उम्र से जन 5 साल ज्यादा दिखेला इस सब समस्या के समाधान करे खातिर हेमोडेक्स के प्रयोग करी। साथे अपने अपन बच्चा के पूर्ण रूप से सुंदर स्वस्थ देखे के चाहतानी तो हेमोडेक्स ही प्रयोग करी।
7: जी गुजरात ग्रोमेट, विश्वास के एक नाम, गुजरात ग्रोमेट के बनल संपूर्ण पारिवारिक टॉनिक हेमोडेक्स, जे खून के कमी के समस्या से तुरंत छुटकारा दी। हेमोडेक्स आजुए अपन नजदीकी दुकान से खरीदी हेमोडेक्स।
8: जी अब अपने के साथवा स्टोमा क्यूर, जॉन, गैस्ट्रिक अल्सर, हाइपर एसिडिटी के कारण सांस और छाती के तकलीफ, उच्च रक्तचाप, पुरान कब्ज, सिर दर्द एवं बेचैनी जैसन तकलीफ के दूर करेला,
9: पेट के विभिन्न प्रकार के तकलीफ के करे दूर सियोर, यह स्टोमा क्यूर।
7: गुजरात क्रोमेट गुजरात के उत्पादन स्टोमा क्यूर।
10: अरे वाह भौजी, अरे ये की चेहरा पर गजब के चमक, पहिने कारी लगे छन, हो गोड़ भगे।

0: आ हम फोकटिया क्रीम नहीं यूज करै छी, ई त गोरी गोरी क्रीम के जादू छै, बुझलियै ने?
1: जी हाँ, गोरी गोरी क्रीम जे देत अहाँके चेहरा पर गजब सन चमक, चेहरा के राखत गोरापन सावला हटात आ तहिना मुँह में रहल दाग धुरी सब सब दूर करत आ आँख के नीचा में रहल कालापन सेहो दूर भगात। तो आओ यत्र तत्र सर्वत्र बाजार में उपलब्ध अछि गोरी गोरी क्रीम।
2: आब हरेक गोरे गोरे क्रीम पर एकटा निश्चित उपहार देल जायत आ नकली सँ सावधान रहब।
0: तहन आब दोसर नहि, बस गोरी गोरी क्रीम।
1: निर्माता सारा भाई।
3: कोलार्क रिसोर्ट बीरगंज 14 बहुअरी।
4: जी आप सही सुने, कोलार्क रिसोर्ट बीरगंज 14 बहुअरी, जो कि नारायणी सिंचाई के पूर्व में स्थित एक बहुत ही मनमोहक और हरियाली भरे वातावरण में सभी आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है। इस रिसोर्ट में अनेकों पार्टी हॉल जिसमें आप 20 आदमी से लेके 2000 आदमी तक का फंक्शन कर सकते हैं।
3: खास तौर पे बोर्ड मीटिंग, कॉन्फ्रेंस, बर्थडे पार्टी एंड एनिवर्सरी पार्टी और साथ ही शादियों के लिए खास रूप से अलग अलग पैकेज तैयार किया गया है।
4: कोलार्क रिसोर्ट आपको अनेकों तरह के व्यंजन परोसने के लिए तैयार है, जिसमें खास करके चाइनीज, इंडियन, कॉन्टिनेंटल, इटालियन और रीजनल फूड अवेलेबल है। पूरी तरह से ट्रेंड स्टाफ स्वादिष्ट खाना के साथ आपको सर्विस देने को तैयार है।
3: आप किसी भी विशेष जानकारी और बुकिंग के लिए फूड एंड बेवरेज मैनेजर से कॉन्टेक्ट करें।
5: संपर्क मोबाइल नंबर 98023 10555 और 98023 10888।
6: सूचना भोजपुरिया FM से विज्ञापन एवं प्रचार प्रसार करावे खातिर संपर्क करी। संपर्क के खातिर मोबाइल नंबर 98550 36867, 98013 65011, वैसा ही व्हाट्सएप नंबर 98013 65011। अपने के बिजनेस तथा व्यापार के सहयात्री एवं शुभचिंतक, हर पल अपने के साथ रेडियो भोजपुरिया FM 92.8 MHz 10011। अपने के बिजनेस तथा व्यापार के सहयात्री एवं शुभचिंतक, हर पल अपने के साथ रेडियो भोजपुरिया FM 92.8 MHz आदर्श नगर बीरगंज टाउन हॉल गेट के पास परसा नेपाल।
7: नमस्ते, आप सुन रहे हो भोजपुरिया FM 92.8। सुनते रहो, सुनाते रहो।

पानी के प्यार में बानी ट्रेंड हो, तोहरा जैसन आइटम के कितना बजवले बानी बैंड हो। अरे

0: हामी सबै नेपाली अनि हामी सबैको भावना एक र सबैलाई मनपर्ने भोजपुरी एफएम 92.8
1: खुनदान ही जीवनदान है। टाइम चेक भोजपुरी एफएम 92.8 मेगाहर्ज में
2: अभी दोपहर के 12 बजे।

पतंजलि पता नहीं कि मैं वापस आऊंगा कि नहीं, बट इफ आई डोंट कम बैक दोबारा शादी मत करना।

0: सुर में गाना सीखिए पाधानिसा ऐप के साथ, AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा।
1: वो नहीं आने वाले,
2: झूठी खाई थी कसम।

0: अनेकतामा एक, यो हो भोजपुरी एफएम
1: नाइलाज। जैसे सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टैबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, साइटिका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंताएं और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
2: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
3: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता, प्रत्येक गुरुवार घोड़ा साहन स्टेट बैंक से 5 मकान पूरब मुरारी जी के मकान में,
4: प्रत्येक शुक्रवार, शनिवार एवं रविवार
2: रक्सौल डंकर हॉस्पिटल से पूरब मिश्रा गली से पूरब वाली गली में त्यागी जी के अपने मकान में, प्रत्येक मंगलवार बेतिया उर्वशी सिनेमा से पूरब सेंट्रल बैंक के बगल में मानवर शोरूम के पास अजय झा जी के मकान में, प्रत्येक बुधवार मोतिहारी बेलही देवी मंदिर से पूरब राजेश्वरी होटल के सामने आनंद होटल के नीचे, प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में,
4: प्रत्येक बुधवार नरकटियागंज रजिस्ट्री कचहरी रोड मुख्तार खाना के बगल में सरबदेव कुशवाहा के मकान में।
3: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
2: और 9097160002।
5: डॉक्टर साहब देखी ना, मुंह पियर आ गई।

0: हाँ तो झंझनाता का बाएकर इलाज
1: देखी अपने के कहल सब समस्या आ साथ में चेहरा मुरझाइल सीढ़ी चढ़ला पर आ तेज चढ़ला पर जन सांस दम फूलेला उ समस्या आ अपन उम्र से जन 5 साल ज्यादा दिखेला इस सब समस्या के समाधान करे खातिर हेमोडेक्स के प्रयोग करी। साथे अपने अपन बच्चा के पूर्ण रूप से सुंदर स्वस्थ देखे के चाहतानी तो हेमोडेक्स ही प्रयोग करी।
2: जी गुजरात ग्रोमेट विश्वास के एक नाम गुजरात ग्रोमेट के बनल संपूर्ण पारिवारिक टॉनिक हेमोडेक्स जे खून के कमी के समस्या से तुरंत छुटकारा दी। हेमोडेक्स आज वे अपन नजदीकी दुकान से खरीदी हेमोडेक्स।
3: जी अब अपने के साथवा स्टोमा क्यूर जॉन गैस्ट्रिक अल्सर हाइपर एसिडिटी के कारण सांस और छाती के तकलीफ उच्च रक्तचाप पुरान आ पुरान कब्ज सिर दर्द एवं बेचैनी जैसन तकलीफ के दूर करेला
0: पेट के विभिन्न प्रकार के तकलीफ के करे दूर सियोर स्टोमा क्यूर
2: गुजरात ग्रोमेट गुजरात के उत्पादन स्टोमा क्यूर।
4: अरे वाह भौजी अरे ये की चेहरा पर गजब के चमक पहिने कारी लगे छन हो गोड़ भग

0: आ हम फोकटिया क्रीम नहीं यूज करै छी, ई तो गोरी गोरी क्रीम के जादू छै, बुझलियै ने?
1: जी हाँ, गोरी गोरी क्रीम जे देत अहाँ के चेहरा पर गजब सन चमक, चेहरा के राखत गोरापन सांवला हटात और तहिना मुंह में रहल दाग धुरी सब सब दूर करत आ आँख के नीचा में रहल कालापन सेहो दूर भगात। तो आओ यत्र तत्र सर्वत्र बाजार में उपलब्ध अछि गोरी गोरी क्रीम।
2: अब हरेक गोरी गोरी क्रीम पर एक निश्चित उपहार दिल जात आ नकली सा सावधान रहब।
0: तहन आप दोसर नहीं, बस गोरी गोरी क्रीम।
1: निर्माता सारा भाई।
3: किसी डिस्को में जाए, किसी होटल में जाए।
4: कोलार्क रिसोर्ट्स बीरगंज 14 बहुअरी।
5: जी आप सही सुने, कोलार्क रिसोर्ट्स बीरगंज 14 बहुअरी जो कि नारायणी सिंचाई के पूर्व में स्थित एक बहुत ही मनमोहक और हरियाली भरे वातावरण में सभी आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है। इस रिसोर्ट्स में अनेकों पार्टी हॉल जिसमें आप 20 आदमी से लेके 2000 आदमी तक का फंक्शन कर सकते हैं।
4: खास तौर पे बोर्ड मीटिंग, कॉन्फ्रेंस, बर्थडे पार्टी एंड एनिवर्सरी पार्टी और साथ ही शादियों के लिए खास रूप से अलग अलग पैकेज तैयार किया गया है।
5: कोलार्क रिसोर्ट्स आपको अनेकों तरह के व्यंजन परोसने के लिए तैयार है जिसमें खास करके चाइनीज, इंडियन, कॉन्टिनेंटल, इटालियन और रीजनल फूड अवेलेबल है। पूरी तरह से ट्रेंड स्टाफ स्वादिष्ट खाना के साथ आपको सर्विस देने को तैयार है।
4: आप किसी भी विशेष जानकारी और बुकिंग के लिए फूड एंड बेवरेज मैनेजर से कॉन्टेक्ट करें।
6: संपर्क मोबाइल नंबर 98023 10555 और 98023 10888।
7: सूचना भोजपुरिया FM से विज्ञापन एवं प्रचार प्रसार करावे खातिर संपर्क करी। संपर्क के खातिर मोबाइल नंबर 98550 36867, 98013 65011, वैसा ही व्हाट्सएप नंबर 98013 65011। अपने के बिजनेस तथा व्यापार के सहयात्री एवं शुभचिंतक हर पल अपने के साथ रेडियो भोजपुरिया FM 92.8 MHz आदर्श नगर बीरगंज टाउन हॉल गेट के पास परसा नेपाल।
8: नमस्ते, आप सुन रहे हो भोजपुरिया FM 92.8। सुनते रहो, सुनाते रहो।

0: अनेकतामा एक, यो हो भोजपुरी एफएम 92.8।
1: जो लोग डायबिटीज से परेशान है वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलता पूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज जैसे
2: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, आईटी का, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
1: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
3: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता प्रत्येक गुरुवार घोड़ा साहन स्टेट बैंक से 5 मकान पूरब मुरारी जी के मकान में,
4: प्रत्येक शुक्रवार, शनिवार एवं रविवार
1: रक्सौल डंकर हॉस्पिटल से पूरब मिश्रा गली से पूरब वाली गली में त्यागी जी के अपने मकान में, प्रत्येक मंगलवार बेतिया उर्वशी सिनेमा से पूरब सेंट्रल बैंक के बगल में मानवर शोरूम के पास अजय झा जी के मकान में, प्रत्येक बुधवार मोतिहारी बेलही देवी मंदिर से पूरब राजेश्वरी होटल के सामने आनंद होटल के नीचे, प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में,
4: प्रत्येक बुधवार नरकटियागंज रजिस्ट्री कचहरी रोड तार खाना के बगल में सरबदेव कुशवाहा के मकान में।
3: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
1: और 9097160602।
5: डॉक्टर साहब देखी ना, मुंह पियर आ गई बा, हाँ तो झनझनाता, का बाएकर इलाज?
6: देखी अपने के कहल सब समस्या आ साथ में चेहरा मुरझाइल, सीढ़ी चढ़ला पर आ तेज चढ़ला पर जन सांस दम फूलेला उ समस्या, आ अपन उम्र से जन 5 साल ज्यादा दिखेला, इस सब समस्या के समाधान करे खातिर हेमोडेक्स के प्रयोग करी। साथ ही अपने अपन बच्चा के पूर्ण रूप से सुंदर स्वस्थ देखे के चाहतानी तो हेमोडेक्स ही प्रयोग करी।
7: जी गुजरात ग्रोमेट, विश्वास के एक नाम, गुजरात ग्रोमेट के बनल संपूर्ण पारिवारिक टॉनिक हेमोडेक्स, जे खून के कमी के समस्या से तुरंत छुटकारा दी। हेमोडेक्स आज वे अपन नजदीकी दुकान से खरीदी हेमोडेक्स।
8: जी अब अपने के साथवा स्टोमाक्यूर, जॉन, गैस्ट्रिक अल्सर, हाइपर एसिडिटी के कारण सांस और छाती के तकलीफ, उच्च रक्तचाप, पुरान आव, पुरान कब्ज, सिर दर्द एवं बेचैनी जैसन तकलीफ के दूर करेला,
9: पेट के विभिन्न प्रकार के तकलीफ के करे दूर सियोर, यह स्टोमाक्यूर।
7: गुजरात ग्रोमेट, गुजरात के उत्पादन स्टोमाक्यूर।
10: अरे वाह भौजी, अरे ये की चेहरा पर गजब के चमक, पहिने कारी लगे छन हो गोड़।

0: हम फोकटिया क्रीम नहीं यूज करी छी, ई त गोरी गोरी क्रीम के जादू छै, बुझलियै ने?
1: जी हाँ, गोरी गोरी क्रीम जे देत अहाँ के चेहरा पर गजब सन चमक, चेहरा के राखत गोरापन सांवला हटात आ तहिना मुंह में रहल दाग धुरी सब सब दूर करत आ आँख के नीचा में रहल कालापन सेहो दूर भगात। त आओ यत्र तत्र सर्वत्र बाजार में उपलब्ध अछि गोरी गोरी क्रीम।
2: आब हरेक गोरे गोरे क्रीम पर एकटा निश्चित उपहार देल जायत आ नकली सँ सावधान रहब।
0: तहन आब दोसर नहि, बस गोरी गोरी क्रीम।
1: निर्माता सारा भाई।
3: सूचना भोजपुरिया FM से विज्ञापन एवं प्रचार प्रसार करावे खातिर संपर्क करी। संपर्क के खातिर मोबाइल नंबर 98550368667, 98013-6511, वैसा ही व्हाट्सएप नंबर 98013-6511। अपने के बिजनेस तथा व्यापार के सहयात्री एवं शुभचिंतक हर पल अपने के साथ रेडियो भोजपुरिया FM 92.8 MHz आदर्श नगर बीरगंज टाउन हॉल गेट के पास परसा नेपाल।
4: नमस्ते, आप सुन रहे हो भोजपुरिया FM 92.8। सुनते रहो, सुनाते रहो।

0: अनेकतामा एक, यो हो भोजपुरी एफएम 92.8।
1: जो लोग डायबिटीज से परेशान है वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज जैसे
2: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, टीका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
1: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
3: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता प्रत्येक गुरुवार घोड़ा साहन स्टेट बैंक से 5 मकान पूरब मुरारी जी के मकान में,
4: एक शुक्रवार, शनिवार एवं रविवार
1: रक्सौल डंकर हॉस्पिटल से पूरब मिश्रा गली से पूरब वाली गली में त्यागी जी के अपने मकान में, प्रत्येक मंगलवार बेतिया उर्वशी सिनेमा से पूरब सेंट्रल बैंक के बगल में मानवर शोरूम के पास अजय झा जी के मकान में, प्रत्येक बुधवार मोतिहारी बेलही देवी मंदिर से पूरब राजेश्वरी होटल के सामने आनंद होटल के नीचे, प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में,
4: प्रत्येक बुधवार नरकटियागंज रजिस्ट्री कचहरी रोड तारखाना के बगल में सरबदेव कुशवाहा के मकान में।
3: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554493
1: और 9097160602।
5: डॉक्टर साहब देखी ना, मुंह पियर आ गई बा, हाँ तो झनझनाता, का बा एकर इलाज?
6: देखी अपने के कहल सब समस्या आ साथ में चेहरा मुरझाइल, सीढ़ी चढ़ला पर आ तेज चढ़ला पर जन सांस दम फूलेला उ समस्या, आ अपन उम्र से जन 5 साल ज्यादा दिखेला, इस सब समस्या के समाधान करे खातिर हेमोडेक्स के प्रयोग करी। साथे अपने अपन बच्चा के पूर्ण रूप से सुंदर स्वस्थ देखे के चाहतानी तो हेमोडेक्स ही प्रयोग करी।
7: जी गुजरात ग्रोमेट, विश्वास के एक नाम, गुजरात ग्रोमेट के बनल संपूर्ण पारिवारिक टोनिक हेमोडेक्स, जे खून के कमी के समस्या से तुरंत छुटकारा दी। हेमोडेक्स आजवे अपन नजदीकी दुकान से खरीदी। हेमोडेक्स
8: जी अब अपने के साथवा स्टोमा क्यूर, जौन, गैस्ट्रिक अल्सर, हाइपर एसिडिटी के कारण सांस और छाती के तकलीफ, उच्च रक्तचाप, पुरान आव, पुरान कब्ज, सिर दर्द एवं बेचैनी जैसन तकलीफ के दूर करेला,
9: पेट के विभिन्न प्रकार के तकलीफ के करे दूर सियोर, यह स्टोमा क्यूर।
7: गुजरात क्रोमेट गुजरात के उत्पादन स्टोमा क्यूर।
10: अरे वाह भौजी, अरे ये की चेहरा पर गजब के चमक, पहिने कारी लगे छन हो गोड़।

0: हम फोकटिया क्रीम नहीं यूज करै छी, ई तो गोरी गोरी क्रीम के जादू छै, बुझलियै ने?
1: जी हाँ, गोरी गोरी क्रीम जे देत अहाँ के चेहरा पर गजब सन चमक, चेहरा के राखत गोरापन सावला हटात आ तहिना मुँह में रहल दाग धुरी सब सब दूर करत आ आँख के नीचा में रहल कालापन सेहो दूर भगात। तो आओ यत्र तत्र सर्वत्र बाजार में उपलब्ध अछि गोरी गोरी क्रीम।
2: आब हरेक गोरे गोरे क्रीम पर एकटा निश्चित उपहार देल जायत आ नकली सँ सावधान रहब।
0: तहन आब दोसर नहि, बस गोरी गोरी क्रीम।
1: निर्माता सारा भाई।
3: कोलार्क रिसोर्ट बीरगंज 14 बहुअरी।
4: जी आप सही सुने, कोलार्क रिसोर्ट बीरगंज 14 बहुअरी, जो कि नारायणी सिंचाई के पूर्व में स्थित एक बहुत ही मनमोहक और हरियाली भरे वातावरण में सभी आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है। इस रिसोर्ट में अनेकों पार्टी हॉल जिसमें आप 20 आदमी से लेके 2000 आदमी तक का फंक्शन कर सकते हैं।
3: खास तौर पे बोर्ड मीटिंग, कॉन्फ्रेंस, बर्थडे पार्टी एंड एनिवर्सरी पार्टी और साथ ही शादियों के लिए खास रूप से अलग अलग पैकेज तैयार किया गया है।
4: कोलार्क रिसोर्ट आपको अनेकों तरह के व्यंजन परोसने के लिए तैयार है, जिसमें खास करके चाइनीज, इंडियन, कॉन्टिनेंटल, इटालियन और रीजनल फूड अवेलेबल है। पूरी तरह से ट्रेंड स्टाफ स्वादिष्ट खाना के साथ आपको सर्विस देने को तैयार है।
3: आप किसी भी विशेष जानकारी और बुकिंग के लिए फूड एंड बेवरेज मैनेजर से कॉन्टेक्ट करें।
5: संपर्क मोबाइल नंबर 98023 10555 और 98023 10888।
6: सारेगामा कारवां, द परफेक्ट गिफ्ट फॉर योर लव्ड वंस।

0: Hello everyone.
1: Namaste, मैं हूँ सारा अली खान.
0: और मैं हूँ विकी कौशल.
1: We hope you love this music video.
0: Do like and share and do not forget to subscribe to Saregama Music YouTube channel.

0: रक्तदान जीवन दान टाइम चेक भोजपुरिया FM 92.8 मेगाहर्ज में
1: अभी दोपहर के 1 बजे।
2: फ्रिक्वेन्सी मोडुलेसनमा अहिले तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ द किङ अफ इन्टरटेनमेन्ट भोजपुरिया FM

0: अनेकतामा एक, यो हो भोजपुरी एफएम 92.8।
1: जो लोग डायबिटीज से परेशान है वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज, जैसे
2: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, आईटी का, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोरायसिस तथा
1: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
3: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता प्रत्येक गुरुवार घोड़ा साहन स्टेट बैंक से 5 मकान पूरब मुरारी जी के मकान में,
4: प्रत्येक शुक्रवार, शनिवार एवं रविवार
1: रक्सौल डंकर हॉस्पिटल से पूरब मिश्रा गली से पूरब वाली गली में त्यागी जी के अपने मकान में, प्रत्येक मंगलवार बेतिया उर्वशी सिनेमा से पूरब सेंट्रल बैंक के बगल में मानवर शोरूम के पास अजय झा जी के मकान में, प्रत्येक बुधवार मोतिहारी बेलही देवी मंदिर से पूरब राजेश्वरी होटल के सामने आनंद होटल के नीचे, प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में,
4: प्रत्येक बुधवार नरकटियागंज रजिस्ट्री कचहरी रोड तार खाना के बगल में सरबदेव कुशवाहा के मकान में।
3: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554493
1: और 9097160602।
5: डॉक्टर साहब देखी ना, मुँह पियरा गई बा, हाँ तो झंझनाता, का बाएकर इलाज?
6: देखी अपने के कहल सब समस्या आ साथ में सहरा मुरझाइल, सीढ़ी चढ़ला पर आ तेज चढ़ला पर जन सांस दम फूलेला उ समस्या, आ अपन उम्र से जन 5 साल ज्यादा दिखेला, इस सब समस्या के समाधान करे खातिर हेमोडेक्स के प्रयोग करी। साथे अपने अपन बच्चा के पूर्ण रूप से सुंदर स्वस्थ देखे के चाहतानी तो हेमोडेक्स ही प्रयोग करी।
7: जी गुजरात ग्रोमेट, विश्वास के एक नाम, गुजरात ग्रोमेट के बनल संपूर्ण पारिवारिक टॉनिक हेमोडेक्स, जे खून के कमी के समस्या से तुरंत छुटकारा दी। हेमोडेक्स आज वे अपन नजदीकी दुकान से खरीदी। हेमोडेक्स
8: जी अब अपने के साथवा स्टोमा क्यूर, जॉन, गैस्ट्रिक अल्सर, हाइपर एसिडिटी के कारण सांस और छाती के तकलीफ, उच्च रक्तचाप, पुरान आव, पुरान कब्ज, सिर दर्द एवं बेचैनी जैसन तकलीफ के दूर करेला।
9: पेट के विभिन्न प्रकार के तकलीफ के करे दूर सियोर, यह स्टोमा क्यूर।
7: गुजरात ग्रोमेट, गुजरात के उत्पादन स्टोमा क्यूर।
10: अरे वाह भौजी, अरे ये की चेहरा पर गजब के चमक, पहिने कारी लगे छन हो गोड़।

0: आ हम फोकटिया क्रीम नहीं यूज करै छी, ई तो गोरी गोरी क्रीम के जादू छै, बुझलियै ने?
1: जी हाँ, गोरी गोरी क्रीम जे देत अहाँ के चेहरा पर गजब सन चमक, चेहरा के राखत गोरापन सांवला हटात आ तहिना मुँह में रहल दाग धुरी सब सब दूर करत आ आँख के नीचा में रहल कालापन सेहो दूर भगात। आओ यत्र तत्र सर्वत्र बाजार में उपलब्ध अछि गोरी गोरी क्रीम।
2: आब हरेक गोरे गोरे क्रीम पर एकटा निश्चित उपहार देल जायत आ नकली सँ सावधान रहब।
0: तहन आब दोसर नहि, बस गोरी गोरी क्रीम।
1: निर्माता सारा भाई।
3: सूचना भोजपुरिया FM से विज्ञापन एवं प्रचार प्रसार करावे खातिर संपर्क करी। संपर्क के खातिर मोबाइल नंबर 98550 36 867, 98013 65 011, वैसा ही व्हाट्सएप नंबर 98013 65 011। अपने के बिजनेस तथा व्यापार के सहयात्री एवं शुभ चिंतक, हर पल अपने के साथ रेडियो भोजपुरिया FM 92.8 MHz, आदर्श नगर बीरगंज टाउन हॉल गेट के पास परसा नेपाल।
4: फ्रिक्वेन्सी मॉड्युलेशन में अहिले तपाईं सुन्दै हुनुहुन्छ द किंग अफ इन्टरटेनमेन्ट भोजपुरिया FM 92.8।

0: अनेकतामा एक, यो हो भोजपुरी एफएम 92.8।
1: जो लोग डायबिटीज से परेशान है वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज जैसे
2: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, टीका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंताएं और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
1: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
3: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता प्रत्येक गुरुवार घोड़ा साहन स्टेट बैंक से 5 मकान पूरब मुरारी जी के मकान में,
4: एक शुक्रवार, शनिवार एवं रविवार
1: रक्सौल डंकर हॉस्पिटल से पूरब मिश्रा गली से पूरब वाली गली में त्यागी जी के अपने मकान में, प्रत्येक मंगलवार बेतिया उर्वशी सिनेमा से पूरब सेंट्रल बैंक के बगल में मानवर शोरूम के पास अजय झा जी के मकान में, प्रत्येक बुधवार मोतिहारी बेलही देवी मंदिर से पूरब राजेश्वरी होटल के सामने आनंद होटल के नीचे, प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में,
4: प्रत्येक बुधवार नरकटियागंज रजिस्ट्री कचहरी रोड तारखाना के बगल में सरबदेव कुशवाहा के मकान में।
3: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
1: और 9097160।
5: डॉक्टर साहब देखी ना, मुँह पियरा गई बा, हाँ तो झनझनाता, का बाय कर इलाज?
6: देखी अपने के कहल सब समस्या आ साथ में चेहरा मुरझाइल, सीढ़ी चढ़ला पर आ तेज चढ़ला पर जन सांस दम फूलेला उ समस्या, आ अपन उम्र से जन 5 साल ज्यादा दिखेला, इस सब समस्या के समाधान करे खातिर हेमोडेक्स के प्रयोग करी। साथे अपने अपन बच्चा के पूर्ण रूप से सुंदर स्वस्थ देखे के चाहतानी तो हेमोडेक्स ही प्रयोग करी।
7: जी गुजरात ग्रोमेट, विश्वास के एक नाम, गुजरात ग्रोमेट के बनल संपूर्ण पारिवारिक टोनिक हेमोडेक्स, जे खून के कमी के समस्या से तुरंत छुटकारा दी। हेमोडेक्स आज वे अपन नजदीकी दुकान से खरीदी। हेमोडेक्स
8: जी अब अपने के साथ बा स्टोमा क्यू, जॉन, गैस्ट्रिक अल्सर, हाइपर एसिडिटी के कारण सांस और छाती के तकलीफ, उच्च रक्तचाप, पुरान आव, पुरान कब्ज, सिर दर्द एवं बेचैनी जैसन तकलीफ के दूर करेला,
9: पेट के विभिन्न प्रकार के तकलीफ के करे दूर सियोर, स्टोमा क्यूर।
7: गुजरात ग्रोमेट गुजरात के उत्पादन स्टोमा क्यूर।
10: अरे वाह भौजी, अरे ये की चेहरा पर गजब के चमक, पहिने कारी लगे छन हो गोड़।

0: हम फोकटिया क्रीम नहीं यूज करे छी, ई त गोरी गोरी क्रीम के जादू छे, बुझलियै ने?
1: जी हाँ, गोरी गोरी क्रीम जे देत अहाँ के चेहरा पर गजब सन चमक, चेहरा के राखत गोरापन सांवला हटात आ तहिना मुँह में रहल दाग धुरी सब सब दूर करत आ आँख के नीचा में रहल कालापन सेहो दूर भगात। त आओ यत्र तत्र सर्वत्र बाजार में उपलब्ध अछि गोरी गोरी क्रीम।
2: आब हरेक गोरे गोरे क्रीम पर एकटा निश्चित उपहार देल जायत आ नकली सँ सावधान रहब।
0: तहन आब दोसर नहि, बस गोरी गोरी क्रीम।
1: निर्माता सारा भाई।
3: सूचना भोजपुरिया FM से विज्ञापन एवं प्रचार प्रसार करावे खातिर संपर्क करी। संपर्क के खातिर मोबाइल नंबर 98550368667, 98013665011, वैसा ही व्हाट्सएप नंबर 98013665011। अपने के बिजनेस तथा व्यापार के सहयात्री एवं शुभ चिंतक, हर पल अपने के साथ रेडियो भोजपुरिया FM 92.8 MHz, आदर्श नगर बीरगंज टाउन हॉल गेट के पास परसा नेपाल।
4: फ्रिक्वेन्सी मॉड्युलेशन में अहिले तपाईं सुन्दै हुनुहुन्छ द किंग अफ इन्टरटेनमेन्ट भोजपुरिया FM।

0: अनेकतामा एक, यो हो भोजपुरी एफएम 92.8।
1: जो लोग डायबिटीज से परेशान है वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलता पूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज जैसे
2: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टैबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, टीका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु छिनताई और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
1: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलता पूर्वक करते हैं।
3: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता प्रत्येक गुरुवार घोड़ा साहन स्टेट बैंक से 5 मकान पूरब मुरारी जी के मकान में,
4: प्रत्येक शुक्रवार, शनिवार एवं रविवार
1: रक्सौल डंकर हॉस्पिटल से पूरब मिश्रा गली से पूरब वाली गली में त्यागी जी के अपने मकान में, प्रत्येक मंगलवार बेतिया उर्वशी सिनेमा से पूरब सेंट्रल बैंक के बगल में मानवर शोरूम के पास अजय झा जी के मकान में, प्रत्येक बुधवार मोतिहारी बेलही देवी मंदिर से पूरब राजेश्वरी होटल के सामने आनंद होटल के नीचे, प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में,
4: प्रत्येक बुधवार नरकटियागंज रजिस्ट्री कचहरी रोड कारखाना के बगल में सरबदेव कुशवाहा के मकान में।
3: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
1: और 9097160602।
5: डॉक्टर साहब देखी ना, मुंह पियर आ गई बा, हाँ तो झनझनाता, का बाएकर इलाज?
6: देखी अपने के कहल सब समस्या आ साथ में चेहरा मुरझाइल, सीढ़ी चढ़ला पर आ तेज चढ़ला पर जन सांस दम फूलेला उ समस्या, आ अपन उम्र से जन 5 साल ज्यादा दिखेला, इस सब समस्या के समाधान करे खातिर हेमोडेक्स के प्रयोग करी। साथ ही अपने अपन बच्चा के पूर्ण रूप से सुंदर स्वस्थ देखे के चाहतानी तो हेमोडेक्स ही प्रयोग करी।
7: जी गुजरात ग्रोमेड, विश्वास के एक नाम, गुजरात ग्रोमेड के बनल संपूर्ण पारिवारिक टॉनिक हेमोडेक्स, जे खून के कमी के समस्या से तुरंत छुटकारा दी। हेमोडेक्स आज वे अपन नजदीकी दुकान से खरीदी हेमोडेक्स।
8: जी अब अपने के साथ बा स्टोमा क्यूर, जौन, गैस्ट्रिक अल्सर, हाइपर एसिडिटी के कारण सांस और छाती के तकलीफ, उच्च रक्तचाप, पुरान आव, पुरान कब्ज, सिर दर्द एवं बेचैनी जैसन तकलीफ के दूर करेला,
9: पेट के विभिन्न प्रकार के तकलीफ के करे दूर सियोर, यह स्टोमा क्यूर।
7: गुजरात क्रोमेट गुजरात के उत्पादन स्टोमा क्यूर।
10: अरे वाह भौजी, अरे ये की चेहरा पर गजब के चमक, पहिने कारी लगी छन हो, गोड़ भर

0: आ हम फोकटिया क्रीम नहीं यूज करै छी, ई तो गोरी गोरी क्रीम के जादू छै, बुझलियै ने?
1: जी हाँ, गोरी गोरी क्रीम जे देत अहाँके चेहरा पर गजब सन चमक, चेहरा के राखत गोरापन सावला हटात आ तहिना मुँह में रहल दाग धुरी सब सब दूर करत आ आँख के नीचा में रहल कालापन सेहो दूर भगात। आओ यत्र तत्र सर्वत्र बाजार में उपलब्ध अछि गोरी गोरी क्रीम।
2: आब हरेक गोरे गोरे क्रीम पर एकटा निश्चित उपहार देल जायत आ नकली सँ सावधान रहब।
0: तहन आब दोसर नहि, बस गोरी गोरी क्रीम।
1: निर्माता सारा भाई।
3: किसी डिस्को में जाए, किसी होटल में जाए।
4: कोलार्क रिसोर्ट बीरगंज 14 बहुअरी।
5: जी आप सही सुने, क्लार्क रिसर्च बीरगंज 14 बहुअरी, जो कि नारायणी सिंचाई के पूर्व में स्थित एक बहुत ही मनमोहक और हरियाली भरे वातावरण में सभी आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है। इस रिसर्च में अनेकों पार्टी हॉल जिसमें आप 20 आदमी से लेके 2000 आदमी तक का फंक्शन कर सकते हैं।
4: खास तौर पे बोर्ड मीटिंग, कॉन्फ्रेंस, बर्थडे पार्टी एंड एनिवर्सरी पार्टी और साथ ही शादियों के लिए खास रूप से अलग अलग पैकेज तैयार किया गया है।
5: क्लार्क रिसर्च आपको अनेकों तरह के व्यंजन परोसने के लिए तैयार है, जिसमें खास करके चाइनीज, इंडियन, कॉन्टिनेंटल, इटालियन और रीजनल फूड अवेलेबल है। पूरी तरह से ट्रेंड स्टाफ स्वादिष्ट खाना के साथ आपको सर्विस देने को तैयार है।
4: आप किसी भी विशेष जानकारी और बुकिंग के लिए फूड एंड बेवरेज मैनेजर से कॉन्टेक्ट करें।
6: संपर्क मोबाइल नंबर 98023 10555 और 98023 10888।
7: 92.8 फ्रिक्वेन्सी मोडुलेसनमा अहिले तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ द किङ अफ इन्टरटेनमेन्ट भोजपुरिया एफएम।

0: करी खूनदान दी जीवनदान टाइम चेक भोजपुरिया FM 92.8 MHz में अभी दोपहर के 2 बजे।
1: नमस्ते, आप सुन रहे हो भोजपुरिया FM 92.8। सुनते रहो, सुनाते रहो।

0: छुआ, दिल में है प्यार तेरा, होठों पे गीतवा।
1: अनेकतामा एक, यो हो भोजपुरी एफएम 92.8।
2: डाक्टर साहब देखी न, मुँह पियर आ गई बा, अहाँ तो झंझनाता, का बायकर इलाज?
3: देखी अपने के कहल सब समस्या आ साथ में सहरा मुरझाइल, सीढ़ी चढ़ला पर आ तेज चढ़ला पर जन सांस दम फूलेला उ समस्या, आ अपन उम्र से जन 5 साल ज्यादा दिखेला, ये सब समस्या के समाधान करे खातिर हेमोडेक्स के प्रयोग करी। साथे अपने अपन बच्चा के पूर्ण रूप से सुंदर स्वस्थ देखे के चाहतानी तो हेमोडेक्स ही प्रयोग करी।
4: जी गुजरात ग्रोमेड, विश्वास के एक नाम, गुजरात ग्रोमेड के बनल संपूर्ण पारिवारिक टॉनिक हेमोडेक्स, जे खून के कमी के समस्या से तुरंत छुटकारा दी। हेमोडेक्स आज वे अपन नजदीकी दुकान से खरीदी। हेमोडेक्स
5: जी अब अपने के साथ बा स्टोमा क्यूर, जॉन गैस्ट्रिक अल्सर, हाइपर एसिडिटी के कारण सांस और छाती के तकलीफ, उच्च रक्तचाप, पुरान आव, पुरान कब्ज, सिर दर्द एवं बेचैनी जैसन तकलीफ के दूर करेला,
2: पेट के विभिन्न प्रकार के तकलीफ के करे दूर सियोर, यह स्टोमा क्यूर।
4: गुजरात ग्रोमेड, गुजरात के उत्पादन स्टोमा क्यूर।
6: जो लोग डायबिटीज से परेशान है वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलता पूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज, जैसे
7: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, टीका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोरायसिस तथा
6: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
5: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता प्रत्येक गुरुवार घोड़ा साहन स्टेट बैंक से 5 मकान पूरब मुरारी जी के मकान में,
8: प्रत्येक शुक्रवार, शनिवार एवं रविवार
6: रक्सौल डंकर हॉस्पिटल से पूरब मिश्रा गली से पूरब वाली गली में त्यागी जी के अपने मकान में, प्रत्येक मंगलवार बेतिया उर्वशी सिनेमा से पूरब सेंट्रल बैंक के बगल में मानवर शोरूम के पास अजय झा जी के मकान में, प्रत्येक बुधवार मोतिहारी बेलही देवी मंदिर से पूरब राजेश्वरी होटल के सामने आनंद होटल के नीचे, प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में,
8: प्रत्येक बुधवार नरकटियागंज रजिस्ट्री कचहरी रोड तार खाना के बगल में सरबदेव कुशवाहा के मकान में।
5: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
6: और 90971602।
9: अरे वाह भौजी, अरे ये की चेहरा पर गजब के चमक, पहिने कारी लगे छन, गोड़ भगेल छी।

0: पतिया क्रीम नहि यूज करै छी, ई तऽ गोरी गोरी क्रीम के जादू छै, बुझलियै ने?
1: जी हाँ, गोरी गोरी क्रीम जे देत अहाँके चेहरा पर गजब सन चमक, चेहरा के राखत गोरापन, सावला हटात आ तहिना मुँह में रहल दाग धुरी सब सब दूर करत आ आँख के नीचा में रहल कालापन सेहो दूर भगात। आओ यत्र तत्र सर्वत्र बाजार में उपलब्ध अछि गोरी गोरी क्रीम।
2: आब हरेक गोरे गोरे क्रीम पर एकटा निश्चित उपहार देल जायत आ नकली सँ सावधान रहब।
0: तहन आब दोसर नहि, बस गोरी गोरी क्रीम।
1: निर्माता सारा भाई।
3: कोलार्क रिसोर्ट बीरगंज 14 बहुअरी।
4: जी आप सही सुने, कोलार्क रिसोर्ट बीरगंज 14 बहुअरी, जो कि नारायणी सिंचाई के पूर्व में स्थित एक बहुत ही मनमोहक और हरियाली भरे वातावरण में सभी आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है। इस रिसोर्ट में अनेकों पार्टी हॉल जिसमें आप 20 आदमी से लेके 2000 आदमी तक का फंक्शन कर सकते हैं।
3: खास तौर पे बोर्ड मीटिंग, कॉन्फ्रेंस, बर्थडे पार्टी एंड एनिवर्सरी पार्टी और साथ ही शादियों के लिए खास रूप से अलग अलग पैकेज तैयार किया गया है।
4: कोलार्क रिसोर्ट आपको अनेकों तरह के व्यंजन परोसने के लिए तैयार है, जिसमें खास करके चाइनीज, इंडियन, कॉन्टिनेंटल, इटालियन और रीजनल फूड अवेलेबल है। पूरी तरह से ट्रेंड स्टाफ स्वादिष्ट खाना के साथ आपको सर्विस देने को तैयार है।
3: आप किसी भी विशेष जानकारी और बुकिंग के लिए फूड एंड बेवरेज मैनेजर से कॉन्टेक्ट करें।
5: संपर्क मोबाइल नंबर 9803-10555 और 9803-10888।
6: सूचना भोजपुरिया FM से विज्ञापन एवं प्रचार प्रसार करावे खातिर संपर्क करी। संपर्क के खातिर मोबाइल नंबर 9850-36867, 9813-65011, वैसा ही व्हाट्सएप नंबर 9813-65011। अपने के बिजनेस तथा व्यापार के सहयात्री एवं शुभ चिंतक, हर पल अपने के साथ रेडियो भोजपुरिया FM 92.8 मेगाहर्ट्ज, आदर्श नगर बीरगंज टाउन हॉल गेट के पास परसा नेपाल।
7: नमस्ते, आप सुन रहे हो भोजपुरिया FM 92.8। सुनते रहो, सुनाते रहो।

0: अनेकतामा एक, यो हो भोजपुरी एफएम 92.8।
1: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज, जैसे
2: सभी प्रकार के नशा, जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, टीका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु छिनताई और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोरायसिस तथा
1: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
3: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता प्रत्येक गुरुवार घोड़ा साहन स्टेट बैंक से 5 मकान पूरब मुरारी जी के मकान में,
4: प्रत्येक शुक्रवार, शनिवार एवं रविवार
1: रक्सौल डंकर हॉस्पिटल से पूरब मिश्रा गली से पूरब वाली गली में त्यागी जी के अपने मकान में, प्रत्येक मंगलवार बेतिया उर्वशी सिनेमा से पूरब सेंट्रल बैंक के बगल में मानवर शोरूम के पास अजय झा जी के मकान में, प्रत्येक बुधवार मोतिहारी बेलही देवी मंदिर से पूरब राजेश्वरी होटल के सामने आनंद होटल के नीचे, प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में,
4: प्रत्येक बुधवार नरकटियागंज रजिस्ट्री कचहरी रोड तार खाना के बगल में सरबदेव कुशवाहा के मकान में।
3: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554493
1: और 9097160602।
5: डॉक्टर साहब देखी ना, मुंह पियर आ गई बा, हाथों झनझनाता, का भयकर इलाज
6: देखी। अपने के कहल सब समस्या आ साथ में सहरा मुरझाइल, सीढ़ी चढ़ला पर आ तेज चढ़ला पर जन सांस दम फूलेला उ समस्या, आ अपन उम्र से जन 5 साल ज्यादा दिखेला, इस सब समस्या के समाधान करे खातिर हेमोडेक्स के प्रयोग करी। साथे अपने अपन बच्चा के पूर्ण रूप से सुंदर स्वस्थ देखे के चाहतानी त हेमोडेक्स ही प्रयोग करी।
7: जी, गुजरात ग्रोमेट, विश्वास के एक नाम, गुजरात ग्रोमेट के बनल संपूर्ण पारिवारिक टॉनिक हेमोडेक्स, जे खून के कमी के समस्या से तुरंत छुटकारा दी। हेमोडेक्स आज वे अपन नजदीकी दुकान से खरीदी। हेमोडेक्स
8: जी, अब अपने के साथवा स्टोमा क्यूर, जॉन, गैस्ट्रिक अल्सर, हाइपर एसिडिटी के कारण सांस और छाती के तकलीफ, उच्च रक्तचाप, पुरान आव, पुरान कब्ज, सिर दर्द एवं बेचैनी जैसन तकलीफ के दूर करेला,
5: पेट के विभिन्न प्रकार के तकलीफ के करे दूर सियोर, यह स्टोमा क्यूर।
7: गुजरात ग्रोमेट, गुजरात के उत्पादन स्टोमा क्यूर।
9: अरे वाह भौजी, अरे ई की चेहरा पर गजब के चमक, पहिने कारी लगे छन, गोर भ गेल।

0: फोकटिया क्रीम नहि यूज करै छी, ई त गोरी गोरी क्रीम के जादू छै, बुझलियै ने?
1: जी हाँ, गोरी गोरी क्रीम जे देत अहाँके चेहरा पर गजब सन चमक, चेहरा के राखत गोरापन, सावला हटात आ तहिना मुँह में रहल दाग झुर्री सब सब दूर करत आ आँख के नीचा में रहल कालापन सेहो दूर भगात। आओ यत्र तत्र सर्वत्र बाजार में उपलब्ध अछि गोरी गोरी क्रीम।
2: आब हरेक गोरे गोरे क्रीम पर एकटा निश्चित उपहार देल जायत आ नकली सँ सावधान रहब।
0: तहन आब दोसर नहि, बस गोरी गोरी क्रीम।
1: निर्माता सारा भाई।
3: कोलार्क रिसर्च, बीरगंज 14 बहुअरी।
4: जी आप सही सुने, कोलार्क रिसर्च बीरगंज 14 बहुअरी, जो कि नारायणी सिंचाई के पूर्व में स्थित एक बहुत ही मनमोहक और हरियाली भरे वातावरण में सभी आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है। इस रिसर्च में अनेकों पार्टी हॉल जिसमें आप 20 आदमी से लेके 2000 आदमी तक का फंक्शन कर सकते हैं।
3: खास तौर पे बोर्ड मीटिंग, कॉन्फ्रेंस, बर्थडे पार्टी एंड एनिवर्सरी पार्टी और साथ ही शादियों के लिए खास रूप से अलग अलग पैकेज तैयार किया गया है।
4: कोलार्क रिसर्च आपको अनेकों तरह के व्यंजन परोसने के लिए तैयार है, जिसमें खास करके चाइनीज, इंडियन, कॉन्टिनेंटल, इटालियन और रीजनल फूड अवेलेबल है। पूरी तरह से ट्रेंड स्टाफ स्वादिष्ट खाना के साथ आपको सर्विस देने को तैयार है।
3: आप किसी भी विशेष जानकारी और बुकिंग के लिए फूड एंड बेवरेज मैनेजर से कॉन्टेक्ट करें।
5: संपर्क मोबाइल नंबर 98023 10555 और 98023 10888।
6: सूचना भोजपुरिया FM से विज्ञापन एवं प्रचार प्रसार करावे खातिर संपर्क करी। संपर्क के खातिर मोबाइल नंबर 98550 36867, 98013 65011, वैसा ही व्हाट्सएप नंबर 98013 65011। अपने के बिजनेस तथा व्यापार के सहयात्री एवं शुभचिंतक, हर पल अपने के साथ रेडियो भोजपुरिया FM 92.8 MHz, आदर्श नगर बीरगंज टाउन हॉल गेट के पास परसा नेपाल।
7: नमस्ते, आप सुन रहे हो भोजपुरिया FM 92.8। सुनते रहो, सुनाते रहो।

0: अनेकतामा एक, यो हो भोजपुरी एफएम 92.8।
1: जो लोग डायबिटीज से परेशान है वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज जैसे
2: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टैबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया का पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंताएं और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
1: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
3: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता प्रत्येक गुरुवार घोड़ा साहन स्टेट बैंक से 5 मकान पूरब मुरारी जी के मकान में,
4: एक शुक्रवार, शनिवार एवं रविवार
1: रक्सौल डंकर हॉस्पिटल से पूरब मिश्रा गली से पूरब वाली गली में त्यागी जी के अपने मकान में, प्रत्येक मंगलवार बेतिया उर्वशी सिनेमा से पूरब सेंट्रल बैंक के बगल में मानवर शोरूम के पास अजय झा जी के मकान में, प्रत्येक बुधवार मोतिहारी बेलही देवी मंदिर से पूरब राजेश्वरी होटल के सामने आनंद होटल के नीचे, प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में,
4: प्रत्येक बुधवार नरकटियागंज रजिस्ट्री कचहरी रोड मुक्ता खाना के बगल में सरबदेव कुशवाहा के मकान में।
3: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
1: और 9097160।
5: डॉक्टर साहब देखी ना, मुँह पियर आ गई बा, हाथो झनझनाता, का बाय कर इलाज?
6: देखी अपने के कहल सब समस्या आ साथ में चेहरा मुरझाइल, सीढ़ी चढ़ला पर आ तेज चढ़ला पर जन सांस दम फूलेला उ समस्या, आ अपन उम्र से जन 5 साल ज्यादा दिखेला, इस सब समस्या के समाधान करे खातिर हेमोडेक्स के प्रयोग करी। साथे अपने अपन बच्चा के पूर्ण रूप से सुंदर स्वस्थ देखे के चाहतानी तो हेमोडेक्स ही प्रयोग करी।
7: जी गुजरात ग्रोमेट, विश्वास के एक नाम, गुजरात ग्रोमेट के बनल संपूर्ण पारिवारिक टॉनिक हेमोडेक्स, जे खून के कमी के समस्या से तुरंत छुटकारा दी। हेमोडेक्स आज वे अपन नजदीकी दुकान से खरीदी। हेमोडेक्स
8: जी अब अपने के साथवा स्टोमा क्यू जॉन गैस्ट्रिक अल्सर हाइपर एसिडिटी के कारण सांस और छाती के तकलीफ, उच्च रक्तचाप, पुरान आ पुरान कब्ज, सिर दर्द एवं बेचैनी जैसन तकलीफ के दूर करेला,
9: पेट के विभिन्न प्रकार के तकलीफ के करे दूर सियोर, यह स्टोमा क्यूर।
7: गुजरात क्रोमेट गुजरात के उत्पादन स्टोमा क्यूर।
10: अरे वाह भौजी, अरे ये की चेहरा पर गजब के चमक, पहिने कारी लगे छन हो गोड़।

0: आ हम फोकटिया क्रीम नहीं यूज करै छी, ई तो गोरी गोरी क्रीम के जादू छै, बुझलियै ने?
1: जी हाँ, गोरी गोरी क्रीम जे देत अहाँ के चेहरा पर गजब सन चमक, चेहरा के राखत गोरापन सावला हटात आ तहिना मुँह में रहल दाग धुरी सब सब दूर करत आ आँख के नीचा में रहल कालापन सेहो दूर भगात। तो आओ यत्र तत्र सर्वत्र बाजार में उपलब्ध अछि गोरी गोरी क्रीम।
2: आब हरेक गोरे गोरे क्रीम पर एकटा निश्चित उपहार देल जायत आ नकली सँ सावधान रहब।
0: तहन आब दोसर नहि, बस गोरी गोरी क्रीम।
1: निर्माता सारा भाई।
3: किसी डिस्को में जाए, किसी होटल में जाए।
4: कोलार्क रिसोर्ट, बीरगंज 14 बहुअरी।
5: जी आप सही सुने, कोलार्क रिसर्च बीरगंज 14 बहुअरी, जो कि नारायणी सिंचाई के पूर्व में स्थित एक बहुत ही मनमोहक और हरियाली भरे वातावरण में सभी आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है। इस रिसर्च में अनेकों पार्टी हॉल जिसमें आप 20 आदमी से लेके 2000 आदमी तक का फंक्शन कर सकते हैं।
4: खास तौर पे बोर्ड मीटिंग, कॉन्फ्रेंस, बर्थडे पार्टी एंड एनिवर्सरी पार्टी और साथ ही शादियों के लिए खास रूप से अलग अलग पैकेज तैयार किया गया है।
5: क्लार्क रिसर्च आपको अनेकों तरह के व्यंजन परोसने के लिए तैयार है, जिसमें खास करके चाइनीज, इंडियन, कॉन्टिनेंटल, इटालियन और रीजनल फूड अवेलेबल है। पूरी तरह से ट्रेंड स्टाफ स्वादिष्ट खाना के साथ आपको सर्विस देने को तैयार है।
4: आप किसी भी विशेष जानकारी और बुकिंग के लिए फूड एंड बेवरेज मैनेजर से कॉन्टेक्ट करें।
6: संपर्क मोबाइल नंबर 98023 10555 और 98023 10888।
7: नमस्ते, आप सुन रहे हो भोजपुरी FM 92.8। सुनते रहो, सुनाते रहो।

0: खून दान ही जीवन दान है। टाइम चेक भोजपुरी FM 92.8 मेगाहर्ज में।
1: अभी दोपहर के 3 बजे।

0: अनेकतामा एक, यो हो भोजपुरी एफएम 92.8।
1: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज, जैसे
2: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, आईटी का, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोरायसिस तथा
1: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
3: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता प्रत्येक गुरुवार घोड़ा साहन स्टेट बैंक से 5 मकान पूरब मुरारी जी के मकान में,
4: प्रत्येक शुक्रवार, शनिवार एवं रविवार
1: रक्सौल डंकर हॉस्पिटल से पूरब मिश्रा गली से पूरब वाली गली में त्यागी जी के अपने मकान में, प्रत्येक मंगलवार बेतिया उर्वशी सिनेमा से पूरब सेंट्रल बैंक के बगल में मानवर शोरूम के पास अजय झा जी के मकान में, प्रत्येक बुधवार मोतिहारी बेलही देवी मंदिर से पूरब राजेश्वरी होटल के सामने आनंद होटल के नीचे, प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में,
4: प्रत्येक बुधवार नरकटियागंज रजिस्ट्री कचहरी रोड तार खाना के बगल में सरबदेव कुशवाहा के मकान में।
3: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554493
1: और 9097160602।
5: डॉक्टर साहब देखी ना, मुँह पियरा गई बा, हाँ तो झंझनाता, का बाएकर इलाज?
6: देखी अपने के कहल सब समस्या आ साथ में चेहरा मुरझाइल, सीढ़ी चढ़ला पर आ तेज चढ़ला पर जन सांस दम फूलेला उ समस्या आ अपन उम्र से जन 5 साल ज्यादा दिखेला, इस सब समस्या के समाधान करे खातिर हेमोडेक्स के प्रयोग करी। साथे अपने अपन बच्चा के पूर्ण रूप से सुंदर स्वस्थ देखे के चाहतानी तो हेमोडेक्स ही प्रयोग करी।
7: जी गुजरात ग्रोमेड, विश्वास के एक नाम, गुजरात ग्रोमेड के बनल संपूर्ण पारिवारिक टॉनिक हेमोडेक्स, जे खून के कमी के समस्या से तुरंत छुटकारा दी। हेमोडेक्स आज वे अपन नजदीकी दुकान से खरीदी। हेमोडेक्स
8: जी अब अपने के साथवा स्टोमा क्यूर, जौन, गैस्ट्रिक अल्सर, हाइपर एसिडिटी के कारण सांस और छाती के तकलीफ, उच्च रक्तचाप, पुरान आव, पुरान कब्ज, सिर दर्द एवं बेचैनी जैसन तकलीफ के दूर करेला,
9: पेट के विभिन्न प्रकार के तकलीफ के करे दूर सियोर, यह स्टोमा क्यूर।
7: गुजरात क्रोमेट गुजरात के उत्पादन स्टोमा क्यूर।
10: अरे वाह भौजी, अरे ये की चेहरा पर गजब के चमक, महीने कारी लगी सुन गोड़ भर।

0: आब हम फोकटिया क्रीम नहीं यूज करै छी, ई तो गोरी गोरी क्रीम के जादू छै, बुझलियै ने?
1: जी हाँ, गोरी गोरी क्रीम जे देत अहाँ के चेहरा पर गजब सन चमक, चेहरा के राखत गोरापन सावला हटात आ तहिना मुंह में रहल दाग झुर्री सब सब दूर करत आ आँख के नीचा में रहल कालापन सेहो दूर भगात। तो आओ यत्र तत्र सर्वत्र बाजार में उपलब्ध अछि गोरी गोरी क्रीम।
2: आब हरेक गोरे गोरे क्रीम पर एकटा निश्चित उपहार देल जायत आ नकली सा सावधान रहब।
0: तहन आब दोसर नहि, बस गोरी गोरी क्रीम।
1: निर्माता सारा भाई।
3: कोलार्क रिसोर्ट बीरगंज 14 बहुअरी।
4: जी आप सही सुने, कोलार्क रिसोर्ट बीरगंज 14 बहुअरी जो कि नारायणी सिंचाई के पूर्व में स्थित एक बहुत ही मनमोहक और हरियाली भरे वातावरण में सभी आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है। इस रिसोर्ट में अनेकों पार्टी हॉल जिसमें आप 20 आदमी से लेके 2000 आदमी तक का फंक्शन कर सकते हैं।
3: खास तौर पे बोर्ड मीटिंग, कॉन्फ्रेंस, बर्थडे पार्टी एंड एनिवर्सरी पार्टी और साथ ही शादियों के लिए खास रूप से अलग अलग पैकेज तैयार किया गया है।
4: कोलार्क रिसोर्ट आपको अनेकों तरह के व्यंजन परोसने के लिए तैयार है जिसमें खास करके चाइनीज, इंडियन, कॉन्टिनेंटल, इटालियन और रीजनल फूड अवेलेबल है। पूरी तरह से ट्रेंड स्टाफ स्वादिष्ट खाना के साथ आपको सर्विस देने को तैयार है।
3: आप किसी भी विशेष जानकारी और बुकिंग के लिए फूड एंड बेवरेज मैनेजर से कॉन्टेक्ट करें।
5: संपर्क मोबाइल नंबर 9803-10555 और 9803-10888।
6: सूचना भोजपुरिया FM से विज्ञापन एवं प्रचार प्रसार करावे खातिर संपर्क करी। संपर्क के खातिर मोबाइल नंबर 9850-36867, 9803-65011, वैसा ही व्हाट्सएप नंबर 9803-65011। अपने के बिजनेस तथा व्यापार के सहयात्री एवं शुभ चिंतक हर पल अपने के साथ रेडियो भोजपुरिया FM 92.8 मेगाहर्ट्ज आदर्श नगर बीरगंज टाउन हॉल गेट के पास परसा नेपाल।
7: नमस्ते, आप सुन रहे हो भोजपुरिया FM 92.8। सुनते रहो, सुनाते रहो।

0: अनेकतामा एक, यो हो भोजपुरी एफएम 92.8।
1: डाक्टर साहब देखी न मुँह पियरा गई बा हाँ तो झंझनाता का भाएकर इलाज
2: देखी अपने के कहल सब समस्या आ साथ में चेहरा मुरझाइल सीढ़ी चढ़ला पर आ तेज चढ़ला पर जन सांस दम फूलेला उ समस्या आ अपन उम्र से जन 5 साल ज्यादा दिखेला इस सब समस्या के समाधान करे खातिर हेमोडेक्स के प्रयोग करी। साथे अपने अपन बच्चा के पूर्ण रूप से सुंदर स्वस्थ देखे के चाहतानी तो हेमोडेक्स ही प्रयोग करी।
3: जी गुजरात ग्रोमेट विश्वास के एक नाम गुजरात ग्रोमेट के बनल संपूर्ण पारिवारिक टोनिक हेमोडेक्स जे खून के कमी के समस्या से तुरंत छुटकारा दी। हेमोडेक्स आजुए अपन नजदीकी दुकान से खरीदी हेमोडेक्स।
4: जी अब अपने के साथ बा स्टोमाक्यू जॉन गैस्ट्रिक अल्सर हाइपर एसिडिटी के कारण सांस और छाती के तकलीफ उच्च रक्तचाप पुरान आव पुरान कब्ज सिर दर्द एवं बेचैनी जैसन तकलीफ के दूर करेला
1: पेट के विभिन्न प्रकार के तकलीफ के करे दूर सियोर यह स्टोमाक्यूर
3: गुजरात क्रोमेट गुजरात के उत्पादन स्टोमाक्यूर।
5: जो लोग डायबिटीज से परेशान है वो डरे नहीं परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज जैसे
6: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब टैबलेट इंजेक्शन सिरप गांजा स्माइक के इलाज और गठिया टीका पथरी कमर दर्द घुटना दर्द दमा मिर्गी दाद दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया मासिक खराबी बवासीर पेट रोग शुगर गैस्ट्रिक शीघ्र पतन शुक्राणु में कमी नपुंसकता धातु चिंता और चर्म रोग में दाग दिनाए खुजली एक्जिमा सोराइसिस तथा
5: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
4: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता प्रत्येक गुरुवार घोड़ा साहन स्टेट बैंक से 5 मकान पूरब मुरारी जी के मकान में
7: एक शुक्रवार शनिवार एवं रविवार
5: रक्सौल डंकर हॉस्पिटल से पूरब मिश्रा गली से पूरब वाली गली में त्यागी जी के अपने मकान में प्रत्येक मंगलवार बेतिया उर्वशी सिनेमा से पूरब सेंट्रल बैंक के बगल में मानवर शोरूम के पास अजय झा जी के मकान में प्रत्येक बुधवार मोतिहारी बेलही देवी मंदिर से पूरब राजेश्वरी होटल के सामने आनंद होटल के नीचे प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में
7: प्रत्येक बुधवार नरकटियागंज रजिस्ट्री कचहरी रोड तार खाना के बगल में सरबदेव कुशवाहा के मकान में।
4: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
5: और 9097160602।
8: अरे वाह भौजी, अरे ये की चेहरा पर गजब के चमक पहिने कारी लगे छन हो गोड़ भ गेल छी।

0: आ हम फोकटिया क्रीम नहीं यूज करै छी, ई त गोरी गोरी क्रीम के जादू छै, बुझलियै ने?
1: जी हाँ, गोरी गोरी क्रीम जे देत अहाँके चेहरा पर गजब सन चमक, चेहरा के राखत गोरापन सावला हटात आ तहिना मुँह में रहल दाग धुरी सब सब दूर करत आ आँख के नीचा में रहल कालापन सेहो दूर भगात। आओ यत्र तत्र सर्वत्र बाजार में उपलब्ध अछि गोरी गोरी क्रीम।
2: आब हरेक गोरे गोरे क्रीम पर एकटा निश्चित उपहार देल जायत आ नकली सँ सावधान रहब।
0: तहन आब दोसर नहि, बस गोरी गोरी क्रीम।
1: निर्माता सारा भाई।
3: सूचना भोजपुरिया FM से विज्ञापन एवं प्रचार प्रसार करावे खातिर संपर्क करी। संपर्क के खातिर मोबाइल नंबर 98550-36867, 98013-65011, वैसा ही व्हाट्सएप नंबर 98013-65011। अपने के बिजनेस तथा व्यापार के सहयात्री एवं शुभ चिंतक, हर पल अपने के साथ रेडियो भोजपुरिया FM 92.8 MHz, आदर्श नगर बीरगंज टाउन हॉल गेट के पास परसा नेपाल।
4: नमस्ते, सुनत रहे रेडियो भोजपुरिया FM 92.8 MHz। गीत संगीत के साथ झूमत रहे

0: अनेकतामा एक, यो हो भोजपुरी एफएम 92.8।
1: जो लोग डायबिटीज से परेशान है वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज जैसे
2: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, आईटी का, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोरायसिस तथा
1: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
3: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता प्रत्येक गुरुवार घोड़ा साहन स्टेट बैंक से 5 मकान पूरब मुरारी जी के मकान में,
4: प्रत्येक शुक्रवार, शनिवार एवं रविवार
1: रक्सौल डंकर हॉस्पिटल से पूरब मिश्रा गली से पूरब वाली गली में त्यागी जी के अपने मकान में, प्रत्येक मंगलवार बेतिया उर्वशी सिनेमा से पूरब सेंट्रल बैंक के बगल में मानवर शोरूम के पास अजय झा जी के मकान में, प्रत्येक बुधवार मोतिहारी बेलही देवी मंदिर से पूरब राजेश्वरी होटल के सामने आनंद होटल के नीचे, प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में,
4: प्रत्येक बुधवार नरकटियागंज रजिस्ट्री कचहरी रोड तार खाना के बगल में सरबदेव कुशवाहा के मकान में।
3: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554493
1: और 9097160002।
5: डॉक्टर साहब देखी ना, मुँह पियर आ गई बा, हाँ तो झंझनाता, का बाएकर इलाज?
6: देखी अपने के कहल सब समस्या आ साथ में चेहरा मुरझाइल, सीढ़ी चढ़ला पर आ तेज चढ़ला पर जन सांस दम फूलेला उ समस्या आ अपन उम्र से जन 5 साल ज्यादा दिखेला, इस सब समस्या के समाधान करे खातिर हेमोडेक्स के प्रयोग करी। साथे अपने अपन बच्चा के पूर्ण रूप से सुंदर स्वस्थ देखे के चाहतानी त हेमोडेक्स ही प्रयोग करी।
7: जी गुजरात ग्रोमेट, विश्वास के एक नाम, गुजरात ग्रोमेट के बनल संपूर्ण पारिवारिक टॉनिक हेमोडेक्स, जे खून के कमी के समस्या से तुरंत छुटकारा दी। हेमोडेक्स आजुए अपन नजदीकी दुकान से खरीदी हेमोडेक्स।
8: जी अब अपने के साथ बा स्टोमा क्यूर, जॉन, गैस्ट्रिक अल्सर, हाइपर एसिडिटी के कारण सांस और छाती के तकलीफ, उच्च रक्तचाप, पुरान आव, पुरान कब्ज, सिर दर्द एवं बेचैनी जैसन तकलीफ के दूर करेला,
9: पेट के विभिन्न प्रकार के तकलीफ के करे दूर सियोर, यह स्टोमा क्यूर।
7: गुजरात ग्रोमेट, गुजरात के उत्पादन स्टोमा क्यूर।
10: अरे वाह भौजी, अरे ये की चेहरा पर गजब के चमक, पहिने कारी लगे छन, हो गोड़ भगे।

0: आ हम फोकटिया क्रीम नहीं यूज करै छी, ई तो गोरी गोरी क्रीम के जादू छै, बुझलियै ने?
1: जी हाँ, गोरी गोरी क्रीम जे देत अहाँके चेहरा पर गजब सन चमक, चेहरा के राखत गोरापन सावला हटात आ तहिना मुँह में रहल दाग झुर्री सब सब दूर करत आ आँख के नीचा में रहल कालापन सेहो दूर भगात। तो आओ यत्र तत्र सर्वत्र बाजार में उपलब्ध अछि गोरी गोरी क्रीम।
2: आब हरेक गोरे गोरे क्रीम पर एकटा निश्चित उपहार देल जायत आ नकली सँ सावधान रहब।
0: तहन आब दोसर नहि, बस गोरी गोरी क्रीम।
1: निर्माता सारा भाई।
3: किसी डिस्को में जाए, जाए, किसी होटल में जाए, जाए।
4: कोलार्क रिसोर्ट बीरगंज 14 बहुअरी।
5: जी आप सही सुने, कोलार्क रिसोर्ट बीरगंज 14 बहुअरी, जो कि नारायणी सिंचाई के पूर्व में स्थित एक बहुत ही मनमोहक और हरियाली भरे वातावरण में सभी आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है। इस रिसोर्ट में अनेकों पार्टी हॉल जिसमें आप 20 आदमी से लेके 2000 आदमी तक का फंक्शन कर सकते हैं।
4: खास तौर पे बोर्ड मीटिंग, कॉन्फ्रेंस, बर्थडे पार्टी एंड एनिवर्सरी पार्टी और साथ ही शादियों के लिए खास रूप से अलग अलग पैकेज तैयार किया गया है।
5: कोलार्क रिसोर्ट आपको अनेकों तरह के व्यंजन परोसने के लिए तैयार है, जिसमें खास करके चाइनीज, इंडियन, कॉन्टिनेंटल, इटालियन और रीजनल फूड अवेलेबल है। पूरी तरह से ट्रेंड स्टाफ स्वादिष्ट खाना के साथ आपको सर्विस देने को तैयार है।
4: आप किसी भी विशेष जानकारी और बुकिंग के लिए फूड एंड बेवरेज मैनेजर से कॉन्टेक्ट करें।
6: संपर्क मोबाइल नंबर 9803-10555 और 9803-10888।
7: नमस्ते, आप सुन रहे हो भोजपुरी FM 92.8। सुनते रहो, सुनाते रहो।

0: हामी सबै नेपाली अनि हामी सबैको भावना एक र सबैलाई मनपर्ने भोजपुरी एफएम 92.8
1: खुनदान ही जीवनदान है। टाइम चेक भोजपुरी एफएम 92.8 मेगाहर्ज में
2: अभी दोपहर के 4 बजे।
3: नमस्ते, आप सुन रहे हो भोजपुरी एफएम 92.8। सुनते रहो, सुनाते रहो।

नमस्ते, आप सुन रहे हो भोजपुरी FM 92.8। सुनते रहो, सुनाते रहो।

0: अनेकतामा एक, यो हो भोजपुरी एफएम 92.8।
1: जो लोग डायबिटीज से परेशान है वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज जैसे
2: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, टीका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
1: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
3: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता प्रत्येक गुरुवार घोड़ा साहन स्टेट बैंक से 5 मकान पूरब मुरारी जी के मकान में,
4: प्रत्येक शुक्रवार, शनिवार एवं रविवार
1: रक्सौल डंकर हॉस्पिटल से पूरब मिश्रा गली से पूरब वाली गली में त्यागी जी के अपने मकान में, प्रत्येक मंगलवार बेतिया उर्वशी सिनेमा से पूरब सेंट्रल बैंक के बगल में मानवर शोरूम के पास अजय झा जी के मकान में, प्रत्येक बुधवार मोतिहारी बेलही देवी मंदिर से पूरब राजेश्वरी होटल के सामने आनंद होटल के नीचे, प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में,
4: प्रत्येक बुधवार नरकटियागंज रजिस्ट्री कचहरी रोड तारखाना के बगल में सरबदेव कुशवाहा के मकान में।
3: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
1: और 9097160602।
5: डॉक्टर साहब देखी ना, मुंह पियर आ गई बा, हाँ तो झनझनाता, का बाएकर इलाज?
6: देखी अपने के कहल सब समस्या आ साथ में चेहरा मुरझाइल, सीढ़ी चढ़ला पर आ तेज चढ़ला पर जन सांस दम फूलेला उ समस्या, आ अपन उम्र से जन 5 साल ज्यादा दिखेला, इस सब समस्या के समाधान करे खातिर हेमोडेक्स के प्रयोग करी। साथे अपने अपन बच्चा के पूर्ण रूप से सुंदर स्वस्थ देखे के चाहतानी तो हेमोडेक्स ही प्रयोग करी।
7: जी गुजरात ग्रोमेड, विश्वास के एक नाम, गुजरात ग्रोमेड के बनल संपूर्ण पारिवारिक टॉनिक हेमोडेक्स, जे खून के कमी के समस्या से तुरंत छुटकारा दी। हेमोडेक्स आज वे अपन नजदीकी दुकान से खरीदी हेमोडेक्स।
8: जी अब अपने के साथ बा स्टोमा क्यूर, जौन, गैस्ट्रिक अल्सर, हाइपर एसिडिटी के कारण सांस और छाती के तकलीफ, उच्च रक्तचाप, पुरान आव, पुरान कब्ज, सिर दर्द एवं बेचैनी जैसन तकलीफ के दूर करेला,
9: पेट के विभिन्न प्रकार के तकलीफ के करे दूर सियोर, यह स्टोमा क्यूर।
7: गुजरात क्रोमेट गुजरात के उत्पादन स्टोमा क्यूर।
10: अरे वाह भौजी, अरे ये की चेहरा पर गजब के चमक, पहिने कारी लगे छन, हो गोड़ भ गेल।

0: आ हम फोकटिया क्रीम नहीं यूज करै छी, ई तो गोरी गोरी क्रीम के जादू छै, बुझलियै ने?
1: जी हाँ, गोरी गोरी क्रीम जे देत अहाँके चेहरा पर गजब सन चमक, चेहरा के राखत गोरापन सावला हटात, आ तहिना मुँह में रहल दाग झुर्री सब सब दूर करत, आ आँख के नीचा में रहल कालापन सेहो दूर भगात। आओ यत्र तत्र सर्वत्र बाजार में उपलब्ध अछि गोरी गोरी क्रीम।
2: आब हरेक गोरे गोरे क्रीम पर एकटा निश्चित उपहार देल जायत, आ नकली सँ सावधान रहब।
0: तहन आब दोसर नहि, बस गोरी गोरी क्रीम।
1: निर्माता सारा भाई।
3: कोलार्क रिसोर्ट बीरगंज 14 बहुअरी।
4: जी आप सही सुने, कोलार्क रिसोर्ट बीरगंज 14 बहुअरी, जो कि नारायणी सिंचाई के पूर्व में स्थित एक बहुत ही मनमोहक और हरियाली भरे वातावरण में सभी आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है। इस रिसोर्ट में अनेकों पार्टी हॉल, जिसमें आप 20 आदमी से लेके 2000 आदमी तक का फंक्शन कर सकते हैं।
3: खास तौर पे बोर्ड मीटिंग, कॉन्फ्रेंस, बर्थडे पार्टी एंड एनिवर्सरी पार्टी और साथ ही शादियों के लिए खास रूप से अलग अलग पैकेज तैयार किया गया है।
4: कोलार्क रिसोर्ट आपको अनेकों तरह के व्यंजन परोसने के लिए तैयार है, जिसमें खास करके चाइनीज, इंडियन, कॉन्टिनेंटल, इटालियन और रीजनल फूड अवेलेबल है। पूरी तरह से ट्रेंड स्टाफ स्वादिष्ट खाना के साथ आपको सर्विस देने को तैयार है।
3: आप किसी भी विशेष जानकारी और बुकिंग के लिए फूड एंड बेवरेज मैनेजर से कॉन्टेक्ट करें।
5: संपर्क मोबाइल नंबर 9803-10555 और 9803-10888।
6: सूचना भोजपुरिया FM से विज्ञापन एवं प्रचार प्रसार करावे खातिर संपर्क करी। संपर्क के खातिर मोबाइल नंबर 9850-36867, 9813-65011, वैसा ही व्हाट्सएप नंबर 9813-65011। अपने के बिजनेस तथा व्यापार के सहयात्री एवं शुभचिंतक, हर पल अपने के साथ रेडियो भोजपुरिया FM 92.8 मेगाहर्ट्ज, आदर्श नगर बीरगंज टाउन हॉल गेट के पास परसा नेपाल।
7: नमस्ते, आप सुन रहे हो भोजपुरिया FM 92.8। सुनते रहो, सुनाते रहो।

0: अनेकतामा एक, यो हो भोजपुरी एफएम 92.8।
1: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज कराकर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज जैसे
2: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, टीका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
1: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
3: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता प्रत्येक गुरुवार घोड़ा साहन स्टेट बैंक से 5 मकान पूरब मुरारी जी के मकान में,
4: प्रत्येक शुक्रवार, शनिवार एवं रविवार
1: रक्सौल डंकर हॉस्पिटल से पूरब मिश्रा गली से पूरब वाली गली में त्यागी जी के अपने मकान में, प्रत्येक मंगलवार बेतिया उर्वशी सिनेमा से पूरब सेंट्रल बैंक के बगल में मानवर शोरूम के पास अजय झा जी के मकान में, प्रत्येक बुधवार मोतिहारी बेलही देवी मंदिर से पूरब राजेश्वरी होटल के सामने आनंद होटल के नीचे, प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में,
4: प्रत्येक बुधवार नरकटियागंज रजिस्ट्री कचहरी रोड तार खाना के बगल में सरबदेव कुशवाहा के मकान में।
3: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554493
1: और 9097160602।
5: डॉक्टर साहब देखी ना, मुँह पियरा गई बा, हाँ तो झंझनाता, का बाएकर इलाज?
6: देखी अपने के कहल सब समस्या आ साथ में चेहरा मुरझाइल, सीढ़ी चढ़ला पर आ तेज चढ़ला पर जन सांस दम फूलेला उ समस्या आ अपन उम्र से जन 5 साल ज्यादा दिखेला इस सब समस्या के समाधान करे खातिर हेमोडेक्स के प्रयोग करी। साथे अपने अपन बच्चा के पूर्ण रूप से सुंदर स्वस्थ देखे के चाहतानी तो हेमोडेक्स ही प्रयोग करी।
7: जी गुजरात ग्रोमेड, विश्वास के एक नाम, गुजरात ग्रोमेड के बनल संपूर्ण पारिवारिक टॉनिक हेमोडेक्स, जे खून के कमी के समस्या से तुरंत छुटकारा दी। हेमोडेक्स आज वे अपन नजदीकी दुकान से खरीदी हेमोडेक्स।
8: जी अब अपने के साथवा स्टोमाक्यूल, जॉन, गैस्ट्रिक, अल्सर, हाइपर एसिडिटी के कारण सांस और छाती के तकलीफ, उच्च रक्तचाप, पुरान आव, पुरान कब्ज, सिर दर्द एवं बेचैनी जैसन तकलीफ के दूर करेला,
9: पेट के विभिन्न प्रकार के तकलीफ के करे दूर सियोर, यह स्टोमाक्यूल।
7: गुजरात क्रोमेट गुजरात के उत्पादन स्टोमाक्यूल।
10: ए लक्ष्मीनिया बोलत काहे नहीं कसन, काथी भइल बा?
11: ए रामू भैया, राते से बाबूजी के बोली बंद हो गइल बा, हाथ पैर भी सुन हो गइल बा, कहाँ इलाज कराई?
10: सुनो बबी देर। ए लक्ष्मीनिया बोलत काहे नहीं कसन, काथी भइल बा?
11: ए रामू भैया, राते से बाबूजी के बोली बंद हो गइल बा, हाथ पैर भी सुन हो गइल बा, कहाँ इलाज कराई?
10: सुनो बबी देर ना करो, इनका के जल्दी लेके चल जा मोतिहारी में डॉक्टर मोबिन हाशमी के हॉस्पिटल में। हमनी यहाँ के बहुत लोग इनका से इलाज करा के ठीक भइल बानी, और उनकर बेटा डॉक्टर मोहसिन हाशमी MBBS MD फेलोशिप न्यूरो के पढ़ाई पढ़ले बड़न, तथा यहाँ दोनों आदमी मिल के इस सब बीमारी के उचित इलाज, उत्तम व्यवस्था तथा कम पैसा में करेलन। हमरो 2 साल पहले इहे बीमारी भइल रहे, लेकिन आज हम घर गृहस्थी के सारा काम कर रहल बानी।
12: उठाओ सर, इनका के जल्दी ले चला मोतिहारी में डॉक्टर मोबिन हाशमी एवं डॉक्टर मोहसिन हाशमी के लगे।
11: जी हाँ।

0: हालको वा ब्रेन हेमरेज, ब्रेन ट्यूमर, गर्दन के दर्द, कमर दर्द, साइटिका, माइग्रेन, मिर्गी के इलाज, दिमाग एवं स्पाइन के ट्यूमर, टीबी तथा इन्फेक्शन आदि के इलाज सफलता पूर्वक होला।
1: सम्पर्क हाशमी न्यूरो केयर हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर, स्टेट बैंक बाजार ब्रांच के सामने मोतिहारी। संपर्क
2: डॉक्टर मोबिन हाशमी, मोबाइल नंबर 7201955466, 6262523, 58579 आ 98525868646।
3: अरे वाह भौजी, अरे ये की चेहरा पर गजब के चमक, महीने कारी लगी छन हो, गोड़ भगे।

0: आब हम फोकटिया क्रीम नहीं यूज करै छी, ई तो गोरी गोरी क्रीम के जादू छै, बुझलियै ने?
1: जी हाँ, गोरी गोरी क्रीम जे देत अहाँ के चेहरा पर गजब सन चमक, चेहरा के राखत गोरापन सावला हटात आ तहिना मुँह में रहल दाग झुर्री सब सब दूर करत आ आँख के नीचा में रहल कालापन सेहो दूर भगात। तो आओ यत्र तत्र सर्वत्र बाजार में उपलब्ध अछि गोरी गोरी क्रीम।
2: आब हरेक गोरे गोरे क्रीम पर एकटा निश्चित उपहार देल जायत आ नकली सँ सावधान रहब।
0: तहन आब दोसर नहि, बस गोरी गोरी क्रीम।
1: निर्माता सारा भाई।
3: किसी डिस्को में जाए, किसी होटल में जाए।
4: कोलार्क रिसोर्ट बीरगंज 14 बहुअरी।
5: जी आप सही सुने, क्लार्क रिसर्च बीरगंज 14 बहुअरी, जो कि नारायणी सिंचाई के पूर्व में स्थित एक बहुत ही मनमोहक और हरियाली भरे वातावरण में सभी आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है। इस रिसर्च में अनेकों पार्टी हॉल जिसमें आप 20 आदमी से लेके 2000 आदमी तक का फंक्शन कर सकते हैं।
4: खास तौर पे बोर्ड मीटिंग, कॉन्फ्रेंस, बर्थडे पार्टी एंड एनिवर्सरी पार्टी और साथ ही शादियों के लिए खास रूप से अलग अलग पैकेज तैयार किया गया है।
5: क्लार्क रिसर्च आपको अनेकों तरह के व्यंजन परोसने के लिए तैयार है, जिसमें खास करके चाइनीज, इंडियन, कॉन्टिनेंटल, इटालियन और रीजनल फूड अवेलेबल है। पूरी तरह से ट्रेंड स्टाफ स्वादिष्ट खाना के साथ आपको सर्विस देने को तैयार है।
4: आप किसी भी विशेष जानकारी और बुकिंग के लिए फूड एंड बेवरेज मैनेजर से कॉन्टेक्ट करें।
6: संपर्क मोबाइल नंबर 9803-10555 और 9803-10888।
7: सूचना भोजपुरिया FM से विज्ञापन एवं प्रचार प्रसार करावे खातिर संपर्क करी। संपर्क के खातिर मोबाइल नंबर 9855-36867, 9803-6511, वैसा ही व्हाट्सएप नंबर 9803-6511। अपने के बिजनेस तथा व्यापार के सहयात्री एवं शुभचिंतक हर पल अपने के साथ रेडियो भोजपुरिया FM 92.8 मेगाहर्ट्ज आदर्श नगर बीरगंज टाउन हॉल गेट के पास परसा नेपाल।
8: नमस्ते, आप सुन रहे हो भोजपुरिया FM 92.8। सुनते रहो, सुनाते रहो।

0: ये है भोजपुरिया FM 92.8 FM FM सुनते रहो सुनाते रहो।
1: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा कर इलाज कराकर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य SP त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज जैसे
2: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, साइटी का, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंताएं और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
1: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
3: वैद्य SP त्यागी जी से मिलने का पता प्रत्येक गुरुवार घोड़ा साहन स्टेट बैंक से 5 मकान पूरब मुरारी जी के मकान में,
4: प्रत्येक शुक्रवार, शनिवार एवं रविवार
1: रक्सौल डंकर हॉस्पिटल से पूरब मिश्रा गली से पूरब वाली गली में त्यागी जी के अपने मकान में, प्रत्येक मंगलवार बेतिया उर्वशी सिनेमा से पूरब सेंट्रल बैंक के बगल में मानवर शोरूम के पास अजय झा जी के मकान में, प्रत्येक बुधवार मोतिहारी बेलही देवी मंदिर से पूरब राजेश्वरी होटल के सामने आनंद होटल के नीचे, प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में,
4: प्रत्येक बुधवार नरकटियागंज रजिस्ट्री कचहरी रोड तार खाना के बगल में सरबदेव कुशवाहा के मकान में।
3: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
1: और 9097160002।
5: डॉक्टर साहब देखी ना, मुंह पियर आ गई बा, हाथों झनझनाता, का बाएकर इलाज?
6: देखी अपने के कहल सब समस्या आ साथ में चेहरा मुरझाइल, सीढ़ी चढ़ला पर आ तेज चढ़ला पर जन सांस दम फूलेला उ समस्या, आ अपन उम्र से जन 5 साल ज्यादा दिखेला, इस सब समस्या के समाधान करे खातिर हेमोडेक्स के प्रयोग करी। साथे अपने अपन बच्चा के पूर्ण रूप से सुंदर स्वस्थ देखे के चाहतानी तो हेमोडेक्स ही प्रयोग करी।
7: जी गुजरात ग्रोमेट, विश्वास के एक नाम, गुजरात ग्रोमेट के बनल संपूर्ण पारिवारिक टॉनिक हेमोडेक्स, जे खून के कमी के समस्या से तुरंत छुटकारा दी। हेमोडेक्स आजवे अपन नजदीकी दुकान से खरीदी हेमोडेक्स।
8: जी अब अपने के साथ बा स्टोमाक्यूर, जॉन, गैस्ट्रिक अल्सर, हाइपर एसिडिटी के कारण सांस और छाती के तकलीफ, उच्च रक्तचाप, पुरान आव, पुरान कब्ज, सिर दर्द एवं बेचैनी जैसन तकलीफ के दूर करेला,
9: पेट के विभिन्न प्रकार के तकलीफ के करे दूर सियोर, यह स्टोमाक्यूर।
7: गुजरात ग्रोमेट गुजरात के उत्पादन स्टोमाक्यूर।
10: अरे वाह भौजी, अरे ई की चेहरा पर गजब के चमक, पहिने कारी लगे छन, गोर भ गेल।

0: आ हम फोकटिया क्रीम नहीं यूज करै छी, ई त गोरी गोरी क्रीम के जादू छै, बुझलियै ने?
1: जी हाँ, गोरी गोरी क्रीम जे देत अहाँके चेहरा पर गजब सन चमक, चेहरा के राखत गोरापन सावला हटात, आ तहिना मुँह में रहल दाग झुर्री सब सब दूर करत, आ आँख के नीचा में रहल कालापन सेहो दूर भगात। तो आओ यत्र तत्र सर्वत्र बाजार में उपलब्ध अछि गोरी गोरी क्रीम।
2: आब हरेक गोरे गोरे क्रीम पर एकटा निश्चित उपहार देल जायत, आ नकली सँ सावधान रहब।
0: तहन आब दोसर नहि, बस गोरी गोरी क्रीम।
1: निर्माता सारा भाई।
3: कोलार्क रिसोर्ट बीरगंज 14 बहुअरी।
4: जी आप सही सुने, कोलार्क रिसोर्ट बीरगंज 14 बहुअरी, जो कि नारायणी सिंचाई के पूर्व में स्थित एक बहुत ही मनमोहक और हरियाली भरे वातावरण में सभी आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है। इस रिसोर्ट में अनेकों पार्टी हॉल जिसमें आप 20 आदमी से लेके 2000 आदमी तक का फंक्शन कर सकते हैं।
3: खास तौर पे बोर्ड मीटिंग, कॉन्फ्रेंस, बर्थडे पार्टी एंड एनिवर्सरी पार्टी और साथ ही शादियों के लिए खास रूप से अलग अलग पैकेज तैयार किया गया है।
4: कोलार्क रिसोर्ट आपको अनेकों तरह के व्यंजन परोसने के लिए तैयार है, जिसमें खास करके चाइनीज, इंडियन, कॉन्टिनेंटल, इटालियन और रीजनल फूड अवेलेबल है। पूरी तरह से ट्रेंड स्टाफ स्वादिष्ट खाना के साथ आपको सर्विस देने को तैयार है।
3: आप किसी भी विशेष जानकारी और बुकिंग के लिए फूड एंड बेवरेज मैनेजर से कॉन्टेक्ट करें।
5: संपर्क मोबाइल नंबर 98023 10555 और 98023 10888।
6: सूचना भोजपुरिया FM से विज्ञापन एवं प्रचार प्रसार करावे खातिर संपर्क करी। संपर्क के खातिर मोबाइल नंबर 98550 36867, 98013 65011, वैसा ही व्हाट्सएप नंबर 98013 65011। अपने के बिजनेस तथा व्यापार के सहयात्री एवं शुभ चिंतक, हर पल अपने के साथ रेडियो भोजपुरिया FM 92.8 MHz, आदर्श नगर बीरगंज टाउन हॉल गेट के पास परसा नेपाल।
7: नमस्ते, सुनत रहे रेडियो भोजपुरिया FM 92.8 MHz।
8: गीत संगीत के साथ झूमत रहे।

0: हामी सबै नेपाली अनि हामी सबैको भावना एक र सबैलाई मनपर्ने भोजपुरी एफएम 92.8
1: रक्तदान जीवनदान टाइम चेक भोजपुरी एफएम 92.8 मेगाहर्ज में अभी संझिया के 5 बजे।

0: अनेकतामा एक, यो हो भोजपुरी एफएम 92.8।
1: जो लोग डायबिटीज से परेशान है वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज कराकर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज जैसे
2: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, टीका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
1: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
3: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता प्रत्येक गुरुवार घोड़ा साहन स्टेट बैंक से 5 मकान पूरब मुरारी जी के मकान में,
4: प्रत्येक शुक्रवार, शनिवार एवं रविवार
1: रक्सौल डंकन हॉस्पिटल से पूरब मिश्रा गली से पूरब वाली गली में त्यागी जी के अपने मकान में, प्रत्येक मंगलवार बेतिया उर्वशी सिनेमा से पूरब सेंट्रल बैंक के बगल में मानवर शोरूम के पास अजय झा जी के मकान में, प्रत्येक बुधवार मोतिहारी बिलही देवी मंदिर से पूरब राजेश्वरी होटल के सामने आनंद होटल के नीचे, प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में,
4: प्रत्येक बुधवार नरकटियागंज रजिस्ट्री कचहरी रोड तार खाना के बगल में सरबदेव कुशवाहा के मकान में।
3: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
1: और 9097160602।
5: डॉक्टर साहब देखी ना, मुंह पियरा गइल बा, हाँ तो झनझनाता, का बा एकर इलाज?
6: देखी अपने के कहल सब समस्या आ साथ में चेहरा मुरझाइल, सीढ़ी चढ़ला पर आ तेज चढ़ला पर जन सांस दम फूलेला उ समस्या, आ अपन उम्र से जन 5 साल ज्यादा दिखेला, इस सब समस्या के समाधान करे खातिर हेमोडेक्स के प्रयोग करी। साथे अपने अपन बच्चा के पूर्ण रूप से सुंदर स्वस्थ देखे के चाहतानी तो हेमोडेक्स ही प्रयोग करी।
7: जी गुजरात ग्रोमेट, विश्वास के एक नाम, गुजरात ग्रोमेट के बनल संपूर्ण पारिवारिक टॉनिक हेमोडेक्स, जे खून के कमी के समस्या से तुरंत छुटकारा दी। हेमोडेक्स आजुए अपन नजदीकी दुकान से खरीदी हेमोडेक्स।
8: जी अब अपने के साथवा स्टोमाक्यू, जौन, गैस्ट्रिक अल्सर, हाइपर एसिडिटी के कारण सांस और छाती के तकलीफ, उच्च रक्तचाप, पुरान आव, पुरान कब्ज, सिर दर्द एवं बेचैनी जैसन तकलीफ के दूर करेला,
9: पेट के विभिन्न प्रकार के तकलीफ के करे दूर सियोर, इहा स्टोमाक्यूर।
7: गुजरात क्रोमेट गुजरात के उत्पादन स्टोमाक्यूर।
10: ए चाचा जी राउर लाठी हेने बाटे आ खोजतानी होने हैली रोवा अपन लाठी।
11: अरे देख न बबी, आँख से कुछ लौटे नहीं छे, भगवान तोहरा सदा खुश रखे।
10: चली चाचा जी रोरा के ले चलतानी राम कुमार महावीर प्रसाद केरिया आँखा अस्पताल परवानीपुर बीरगंज में।
12: ई हॉस्पिटल के सेवा सब है,
10: हाथ तथा कंप्यूटर विधि से मोतिया बिंदु के ऑपरेशन, पर्दा यानी रेटिना के संपूर्ण इलाज, जल बिंदु के संपूर्ण इलाज,
12: बल्ब देखला पर इंद्रधनुष के जैसन यदि दिखाई पड़ता तो समझी कि अपने के जल बिंदु भइल बा,
10: कॉर्निया के संपूर्ण इलाज,
12: बच्चा के आँख के संपूर्ण इलाज।
10: नोट, कंप्यूटर से ऑपरेशन के 2 घंटा बाद घर जाए के मिली।
12: आँख से संबंधित सभी इलाज के खातिर केडिया आँखा अस्पताल परवानीपुर बीरगंज।
13: अरे वाह भौजी, अरे ये की चेहरा पर गजब के चमक, पहिने कारी लगे छन, गोड़ भगे।

0: आ हम फोकटिया क्रीम नहीं यूज करै छी, ई तो गोरी गोरी क्रीम के जादू छे, बुझलियै ने?
1: जी हाँ, गोरी गोरी क्रीम जे देत अहाँके चेहरा पर गजब सन चमक, चेहरा के राखत गोरापन सावला हटात आ तहिना मुँह में रहल दाग झुर्री सब सब दूर करत आ आँख के नीचा में रहल कालापन सेहो दूर भगात। आओ यत्र तत्र सर्वत्र बाजार में उपलब्ध अछि गोरी गोरी क्रीम।
2: आब हरेक गोरे गोरे क्रीम पर एकटा निश्चित उपहार देल जायत आ नकली सँ सावधान रहब।
0: तहन आब दोसर नहि, बस गोरी गोरी क्रीम।
1: निर्माता सारा भाई।
3: कोलार्क रिसोर्ट बीरगंज 14 बहुअरी।
4: जी आप सही सुने, कोलार्क रिसोर्ट बीरगंज 14 बहुअरी, जो कि नारायणी सिंचाई के पूर्व में स्थित एक बहुत ही मनमोहक और हरियाली भरे वातावरण में सभी आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है। इस रिसोर्ट में अनेकों पार्टी हॉल जिसमें आप 20 आदमी से लेके 2000 आदमी तक का फंक्शन कर सकते हैं।
3: खास तौर पे बोर्ड मीटिंग, कॉन्फ्रेंस, बर्थडे पार्टी एंड एनिवर्सरी पार्टी और साथ ही शादियों के लिए खास रूप से अलग अलग पैकेज तैयार किया गया है।
4: कोलार्क रिसोर्ट आपको अनेकों तरह के व्यंजन परोसने के लिए तैयार है, जिसमें खास करके चाइनीज, इंडियन, कॉन्टिनेंटल, इटालियन और रीजनल फूड अवेलेबल है। पूरी तरह से ट्रेंड स्टाफ स्वादिष्ट खाना के साथ आपको सर्विस देने को तैयार है।
3: आप किसी भी विशेष जानकारी और बुकिंग के लिए फूड एंड बेवरेज मैनेजर से कॉन्टेक्ट करें।
5: संपर्क मोबाइल नंबर 98023 10555 और 98023 10888।

0: अनेकतामा एक, यो हो भोजपुरी एफएम 92.8।
1: जो लोग डायबिटीज से परेशान है वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज जैसे
2: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टैबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, टीका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
1: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
3: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता प्रत्येक गुरुवार घोड़ा साहन स्टेट बैंक से 5 मकान पूरब मुरारी जी के मकान में,
4: एक शुक्रवार, शनिवार एवं रविवार
1: रक्सौल डंकर हॉस्पिटल से पूरब मिश्रा गली से पूरब वाली गली में त्यागी जी के अपने मकान में, प्रत्येक मंगलवार बेतिया उर्वशी सिनेमा से पूरब सेंट्रल बैंक के बगल में मानवर शोरूम के पास अजय झा जी के मकान में, प्रत्येक बुधवार मोतिहारी बेलही देवी मंदिर से पूरब राजेश्वरी होटल के सामने आनंद होटल के नीचे, प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में,
4: प्रत्येक बुधवार नरकटियागंज रजिस्ट्री कचहरी रोड तारखाना के बगल में सरदेव कुशवाहा के मकान में।
3: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
1: और 9097160602।
5: डॉक्टर साहब देखी ना, मुंह पियर आ गई बा, हाँ तो झनझनाता, का बा एकर इलाज?
6: देखी अपने के कहल सब समस्या आ साथ में चेहरा मुरझाइल, सीढ़ी चढ़ला पर आ तेज चढ़ला पर जन सांस दम फूलेला उ समस्या, आ अपन उम्र से जन 5 साल ज्यादा दिखेला, इस सब समस्या के समाधान करे खातिर हेमोडेक्स के प्रयोग करी। साथे अपने अपन बच्चा के पूर्ण रूप से सुंदर स्वस्थ देखे के चाहतानी तो हेमोडेक्स ही प्रयोग करी।
7: जी गुजरात ग्रोमेट, विश्वास के एक नाम, गुजरात ग्रोमेट के बनल संपूर्ण पारिवारिक टॉनिक हेमोडेक्स, जे खून के कमी के समस्या से तुरंत छुटकारा दी। हेमोडेक्स आजुए अपन नजदीकी दुकान से खरीदी हेमोडेक्स।
8: जी अब अपने के साथ बा स्टोमा क्यूर, जॉन गैस्ट्रिक अल्सर, हाइपर एसिडिटी के कारण सांस और छाती के तकलीफ, उच्च रक्तचाप, पुरान आव, पुरान कब्ज, सिर दर्द एवं बेचैनी जैसन तकलीफ के दूर करेला,
9: पेट के विभिन्न प्रकार के तकलीफ के करे दूर सियोर, यह स्टोमा क्यूर।
7: गुजरात क्रोमेट गुजरात के उत्पादन स्टोमा क्यूर।
10: ए लक्ष्मीनिया बोलत काहे नहीं कसन, काथी भइल बा?
11: ए रामू भैया, राते से बाबूजी के बोली बंद हो गइल बा, हाथ पैर भी सुन हो गइल बा, कहाँ इलाज कराई?
10: सुनो बबी, देर ना करो, इनका के जल्दी लेके चल जा मोतिहारी में डॉक्टर मोबिन हाशमी के हॉस्पिटल में। हमनी यहाँ के बहुत लोग इनका से इलाज करा के ठीक भइल बानी, और उनकर बेटा डॉक्टर मोहसिन हाशमी MBBS MD फेलोशिप न्यूरो के पढ़ाई पढ़ले बाड़न, तथा यहाँ दोनों आदमी मिल के इस सब बीमारी के उचित इलाज, उत्तम व्यवस्था तथा कम पैसा में करेलन। हमरो 2 साल पहले यह बीमारी भइल रहे, लेकिन आज हम घर गृहस्थी के सारा काम कर रहल बानी।
12: उठाओ सर, इनका के जल्दी ले चला मोतिहारी में डॉक्टर मोबिन हाशमी एवं डॉक्टर मोहसिन हाशमी के लगे।
11: जी हाँ, यहाँ लकवा, ब्रेन हेमरेज, ब्रेन ट्यूमर, गर्दन के दर्द, कमर दर्द, साइटिका, माइग्रेन, मिर्गी के इलाज, दिमाग एवं स्पाइन के ट्यूमर, टीबी तथा इन्फेक्शन आदि के इलाज सफलतापूर्वक होला।
10: संपर्क हाशमी न्यूरो केयर हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर, स्टेट बैंक बाजार ब्रांच के सामने मोतिहारी। संपर्क
13: डॉक्टर मोबिन हाशमी, मोबाइल नंबर 7201955466, 6262523, 58579 आ 98525868046।
14: अरे वाह भौजी, अरे ये की चेहरा पर गजब के चमक, पहिने कारी लगी छन हो, गोड़ भगे।

0: आ हम फोकटिया क्रीम नहीं यूज करै छी, ई तो गोरी गोरी क्रीम के जादू छै, बुझलियै ने?
1: जी हाँ, गोरी गोरी क्रीम जे देत अहाँके चेहरा पर गजब सन चमक, चेहरा के राखत गोरापन सावला हटात आ तहिना मुँह में रहल दाग झुर्री सब सब दूर करत आ आँख के नीचा में रहल कालापन सेहो दूर भगात। तो आओ यत्र तत्र सर्वत्र बाजार में उपलब्ध अछि गोरी गोरी क्रीम।
2: आब हरेक गोरे गोरे क्रीम पर एकटा निश्चित उपहार देल जायत आ नकली सँ सावधान रहब।
0: तहन आब दोसर नहि, बस गोरी गोरी क्रीम।
1: निर्माता सारा भाई।
3: कोलार्क रिसोर्ट बीरगंज 14 बहुअरी।
4: जी आप सही सुने, कोलार्क रिसोर्ट बीरगंज 14 बहुअरी, जो कि नारायणी सिंचाई के पूर्व में स्थित एक बहुत ही मनमोहक और हरियाली भरे वातावरण में सभी आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है। इस रिसोर्ट में अनेकों पार्टी हॉल जिसमें आप 20 आदमी से लेके 2000 आदमी तक का फंक्शन कर सकते हैं।
3: खास तौर पे बोर्ड मीटिंग, कॉन्फ्रेंस, बर्थडे पार्टी एंड एनिवर्सरी पार्टी और साथ ही शादियों के लिए खास रूप से अलग अलग पैकेज तैयार किया गया है।
4: कोलार्क रिसोर्ट आपको अनेकों तरह के व्यंजन परोसने के लिए तैयार है, जिसमें खास करके चाइनीज, इंडियन, कॉन्टिनेंटल, इटालियन और रीजनल फूड अवेलेबल है। पूरी तरह से ट्रेंड स्टाफ स्वादिष्ट खाना के साथ आपको सर्विस देने को तैयार है।
3: आप किसी भी विशेष जानकारी और बुकिंग के लिए फूड एंड बेवरेज मैनेजर से कॉन्टेक्ट करें।
5: संपर्क मोबाइल नंबर 9803-10555 और 9803-10888।
6: सूचना भोजपुरिया FM से विज्ञापन एवं प्रचार प्रसार करावे खातिर संपर्क करी। संपर्क के खातिर मोबाइल नंबर 9850-36867, 9813-65011, वैसा ही व्हाट्सएप नंबर 9813-65011। अपने के बिजनेस तथा व्यापार के सहयात्री एवं शुभ चिंतक, हर पल अपने के साथ रेडियो भोजपुरिया FM 92.8 MHz, आदर्श नगर बीरगंज टाउन हॉल गेट के पास, परसा नेपाल।

0: और अभी आपने सुना था नहीं 92.8।
1: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य SP त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज जैसे
2: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टैबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, टीका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंताएं और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
1: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
3: वैद्य SP त्यागी जी से मिलने का पता प्रत्येक गुरुवार घोड़ा साहन स्टेट बैंक से 5 मकान पूरब मुरारी जी के मकान में,
4: प्रत्येक शुक्रवार, शनिवार एवं रविवार
1: रक्सौल डंकर हॉस्पिटल से पूरब मिश्रा गली से पूरब वाली गली में त्यागी जी के अपने मकान में, प्रत्येक मंगलवार बेतिया उर्वशी सिनेमा से पूरब सेंट्रल बैंक के बगल में मानवर शोरूम के पास अजय झा जी के मकान में, प्रत्येक बुधवार मोतिहारी बेलही देवी मंदिर से पूरब राजेश्वरी होटल के सामने आनंद होटल के नीचे, प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में,
4: प्रत्येक बुधवार नरकटियागंज रजिस्ट्री कचहरी रोड तार खाना के बगल में सरबदेव कुशवाहा के मकान में।
3: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
1: और 90971602।
5: डॉक्टर साहब देखी ना, मुँह पियर आ गई बा, हाथों झनझनाता, का बाएकर इलाज?
6: देखी अपने के कहल सब समस्या आ साथ में चेहरा मुरझाइल, सीढ़ी चढ़ला पर आ तेज चढ़ला पर जन सांस दम फूलेला उ समस्या आ अपन उम्र से जन 5 साल ज्यादा दिखेला इस सब समस्या के समाधान करे खातिर हेमोडेक्स के प्रयोग करी। साथे अपने अपन बच्चा के पूर्ण रूप से सुंदर स्वस्थ देखे के चाहतानी तो हेमोडेक्स ही प्रयोग करी।
7: जी गुजरात ग्रोमेट विश्वास के एक नाम, गुजरात ग्रोमेट के बनल संपूर्ण पारिवारिक टॉनिक हेमोडेक्स जे खून के कमी के समस्या से तुरंत छुटकारा दी। हेमोडेक्स आजवे अपन नजदीकी दुकान से खरीदी हेमोडेक्स।
8: जी अब अपने के साथवा स्टोमाक्यू जॉन गैस्ट्रिक अल्सर हाइपर एसिडिटी के कारण सांस और छाती के तकलीफ उच्च रक्तचाप पुरान आव पुरान कब्ज सिर दर्द एवं बेचैनी जैसन तकलीफ के दूर करेला
5: पेट के विभिन्न प्रकार के तकलीफ के करे दूर सियोर स्टोमाक्यूर।
7: गुजरात ग्रोमेट गुजरात के उत्पादन स्टोमाक्यूर।
9: अरे वाह भौजी, अरे ई की चेहरा पर गजब के चमक पहिने कारी लगे छन, हो गोर भ गेल।

0: आ हम फोकटिया क्रीम नहीं यूज करै छी, ई तो गोरी गोरी क्रीम के जादू छै, बुझलियै ने?
1: जी हाँ, गोरी गोरी क्रीम जे देत अहाँके चेहरा पर गजब सन चमक, चेहरा के राखत गोरापन सावला हटात आ तहिना मुँह में रहल दाग झुर्री सब सब दूर करत आ आँख के नीचा में रहल कालापन सेहो दूर भगात। आओ यत्र तत्र सर्वत्र बाजार में उपलब्ध अछि गोरी गोरी क्रीम।
2: आब हरेक गोरे गोरे क्रीम पर एकटा निश्चित उपहार देल जायत आ नकली सँ सावधान रहब।
0: तहन आब दोसर नहि, बस गोरी गोरी क्रीम।
1: निर्माता सारा भाई।
3: कोलार्क रिसोर्ट बीरगंज 14 बहुअरी।
4: जी आप सही सुने, कोलार्क रिसोर्ट बीरगंज 14 बहुअरी, जो कि नारायणी सिंचाई के पूर्व में स्थित एक बहुत ही मनमोहक और हरियाली भरे वातावरण में सभी आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है। इस रिसोर्ट में अनेकों पार्टी हॉल जिसमें आप 20 आदमी से लेके 2000 आदमी तक का फंक्शन कर सकते हैं।
3: खास तौर पे बोर्ड मीटिंग, कॉन्फ्रेंस, बर्थडे पार्टी एंड एनिवर्सरी पार्टी और साथ ही शादियों के लिए खास रूप से अलग अलग पैकेज तैयार किया गया है।
4: कोलार्क रिसोर्ट आपको अनेकों तरह के व्यंजन परोसने के लिए तैयार है, जिसमें खास करके चाइनीज, इंडियन, कॉन्टिनेंटल, इटालियन और रीजनल फूड अवेलेबल है। पूरी तरह से ट्रेंड स्टाफ स्वादिष्ट खाना के साथ आपको सर्विस देने को तैयार है।
3: आप किसी भी विशेष जानकारी और बुकिंग के लिए फूड एंड बेवरेज मैनेजर से कॉन्टेक्ट करें।
5: संपर्क मोबाइल नंबर 9803-10555 और 9803-10888।
6: नमस्ते, आप सुन रहे हो भोजपुरी FM 92.8। सुनते रहो, सुनाते रहो।

0: रक्तदान जीवन दान टाइम चेक भोजपुरी FM 92.8 मेगाहर्ज में
1: अभी संझिया के 6 बजे।
2: नमस्ते, आप सुन रहे हो भोजपुरी FM 92.8। सुनते रहो, सुनाते रहो।

0: भोजपुरी आवाज, भोजपुरी संस्कृति और ये भोजपुरिया सबके साथ यह भोजपुरिया एफएम 92.8 MHz।
1: जो लोग डायबिटीज से परेशान है वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज जैसे
2: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टैबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, टीका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
1: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
3: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता प्रत्येक गुरुवार घोड़ा साहन स्टेट बैंक से 5 मकान पूरब मुरारी जी के मकान में,
4: एक शुक्रवार, शनिवार एवं रविवार
1: रक्सौल डंकर हॉस्पिटल से पूरब मिश्रा गली से पूरब वाली गली में त्यागी जी के अपने मकान में, प्रत्येक मंगलवार बेतिया उर्वशी सिनेमा से पूरब सेंट्रल बैंक के बगल में मानवर शोरूम के पास अजय झा जी के मकान में, प्रत्येक बुधवार मोतिहारी बेलही देवी मंदिर से पूरब राजेश्वरी होटल के सामने आनंद होटल के नीचे, प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में,
4: प्रत्येक बुधवार नरकटियागंज रजिस्ट्री कचहरी रोड तार खाना के बगल में सरबदेव कुशवाहा के मकान में।
3: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
1: और 90971602।
5: डॉक्टर साहब देखी ना, मुँह पियरा गई बा, हाँ तो झनझनाता, का बाय कर इलाज?
6: देखी अपने के कहल सब समस्या आ साथ में चेहरा मुरझाइल, सीढ़ी चढ़ला पर आ तेज चढ़ला पर जन सांस दम फूलेला उ समस्या, आ अपन उम्र से जन 5 साल ज्यादा दिखेला, इस सब समस्या के समाधान करे खातिर हेमोडेक्स के प्रयोग करी। साथे अपने अपन बच्चा के पूर्ण रूप से सुंदर स्वस्थ देखे के चाहतानी तो हेमोडेक्स ही प्रयोग करी।
7: जी गुजरात ग्रोमेट, विश्वास के एक नाम, गुजरात ग्रोमेट के बनल संपूर्ण पारिवारिक टोनिक हेमोडेक्स, जे खून के कमी के समस्या से तुरंत छुटकारा दी। हेमोडेक्स आज वे अपन नजदीकी दुकान से खरीदी। हेमोडेक्स
8: जी अब अपने के साथ बा स्टोमाक्यूल, जौन, गैस्ट्रिक अल्सर, हाइपर एसिडिटी के कारण सांस और छाती के तकलीफ, उच्च रक्तचाप, पुरान आव, पुरान कब्ज, सिर दर्द एवं बेचैनी जैसन तकलीफ के दूर करेला,
9: पेट के विभिन्न प्रकार के तकलीफ के करे दूर सियोर, यह स्टोमाक्यूल।
7: गुजरात ग्रोमेट गुजरात के उत्पादन स्टोमाक्यूल।
10: अरे वाह भौजी, अरे ये की चेहरा पर गजब के चमक, पहिने कारी लगे छन, हो गोड़ भगे।

0: आ हम फोकटिया क्रीम नहीं यूज करै छी, ई तो गोरी गोरी क्रीम के जादू छै, बुझलियै ने?
1: जी हाँ, गोरी गोरी क्रीम जे देत अहाँ के चेहरा पर गजब सन चमक, चेहरा के राखत गोरापन सावला हटात आ तहिना मुँह में रहल दाग झुर्री सब सब दूर करत आ आँख के नीचा में रहल कालापन सेहो दूर भगात। तो आओ यत्र तत्र सर्वत्र बाजार में उपलब्ध अछि गोरी गोरी क्रीम।
2: आब हरेक गोरे गोरे क्रीम पर एकटा निश्चित उपहार देल जायत आ नकली सँ सावधान रहब।
0: तहन आब दोसर नहि, बस गोरी गोरी क्रीम।
1: निर्माता सारा भाई।
3: किसी डिस्को में जाए, जाए, किसी होटल में जाए, जाए।
4: कोलार्क रिसोर्ट्स बीरगंज 14 बहुअरी।
5: जी आप सही सुने, कोलार्क रिसोर्ट्स बीरगंज 14 बहुअरी, जो कि नारायणी सिंचाई के पूर्व में स्थित एक बहुत ही मनमोहक और हरियाली भरे वातावरण में सभी आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है। इस रिसोर्ट्स में अनेकों पार्टी हॉल जिसमें आप 20 आदमी से लेके 2000 आदमी तक का फंक्शन कर सकते हैं।
4: खास तौर पे बोर्ड मीटिंग, कॉन्फ्रेंस, बर्थडे पार्टी एंड एनिवर्सरी पार्टी और साथ ही शादियों के लिए खास रूप से अलग अलग पैकेज तैयार किया गया है।
5: कोलार्क रिसोर्ट्स आपको अनेकों तरह के व्यंजन परोसने के लिए तैयार है, जिसमें खास करके चाइनीज, इंडियन, कॉन्टिनेंटल, इटालियन और रीजनल फूड अवेलेबल है। पूरी तरह से ट्रेंड स्टाफ स्वादिष्ट खाना के साथ आपको सर्विस देने को तैयार है।
4: आप किसी भी विशेष जानकारी और बुकिंग के लिए फूड एंड बेवरेज मैनेजर से कॉन्टेक्ट करें।
6: संपर्क मोबाइल नंबर 98023 10555 और 98023 10888।
7: सूचना भोजपुरिया FM से विज्ञापन एवं प्रचार प्रसार करावे खातिर संपर्क करी। संपर्क के खातिर मोबाइल नंबर 98550 36867, 98013 65011, वैसा ही व्हाट्सएप नंबर 98013 65011। अपने के बिजनेस तथा व्यापार के सहयात्री एवं शुभ चिंतक, हर पल अपने के साथ। रेडियो भोजपुरिया FM 92.8 MHz, आदर्श नगर बीरगंज टाउन हॉल गेट के पास, परसा नेपाल।
8: नमस्ते, आप सुन रहे हो भोजपुरिया FM 92.8। सुनते रहो, सुनाते रहो।

0: अनेकतामा एक, यो हो भोजपुरी एफएम 92.8।
1: जो लोग डायबिटीज से परेशान है वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज जैसे
2: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, साइटी का, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंताएं और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
1: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
3: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता प्रत्येक गुरुवार घोड़ा साहन स्टेट बैंक से 5 मकान पूरब मुरारी जी के मकान में,
4: प्रत्येक शुक्रवार, शनिवार एवं रविवार
1: रक्सौल डंकर हॉस्पिटल से पूरब मिश्रा गली से पूरब वाली गली में त्यागी जी के अपने मकान में, प्रत्येक मंगलवार बेतिया उर्वशी सिनेमा से पूरब सेंट्रल बैंक के बगल में मानवर शोरूम के पास अजय झा जी के मकान में, प्रत्येक बुधवार मोतिहारी बेलही देवी मंदिर से पूरब राजेश्वरी होटल के सामने आनंद होटल के नीचे, प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में,
4: प्रत्येक बुधवार नरकटियागंज रजिस्ट्री कचहरी रोड तार खाना के बगल में सरबदेव कुशवाहा के मकान में।
3: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
1: और 9097160602।
5: डॉक्टर साहब देखी ना, मुँह पियर आ गई बा, हाथों झनझनाता, का बाएकर इलाज?
6: देखी अपने के कहल सब समस्या आ साथ में चेहरा मुरझाइल, सीढ़ी चढ़ला पर आ तेज चढ़ला पर जन सांस दम फूलेला उ समस्या, आ अपन उम्र से जन 5 साल ज्यादा दिखेला, इस सब समस्या के समाधान करे खातिर हेमोडेक्स के प्रयोग करी। साथे अपने अपन बच्चा के पूर्ण रूप से सुंदर स्वस्थ देखे के चाहतानी त हेमोडेक्स ही प्रयोग करी।
7: जी गुजरात ग्रोमेट, विश्वास के एक नाम, गुजरात ग्रोमेट के बनल संपूर्ण पारिवारिक टोनिक हेमोडेक्स, जे खून के कमी के समस्या से तुरंत छुटकारा दी। हेमोडेक्स आजवे अपन नजदीकी दुकान से खरीदी हेमोडेक्स।
8: जी अब अपने के साथवा स्टोमा क्यू, जॉन, गैस्ट्रिक अल्सर, हाइपर एसिडिटी के कारण सांस और छाती के तकलीफ, उच्च रक्तचाप, पुरान आव, पुरान कब्ज, सिर दर्द एवं बेचैनी जैसन तकलीफ के दूर करेला,
9: पेट के विभिन्न प्रकार के तकलीफ के करे दूर सियोर, इहा स्टोमा क्योर।
7: गुजरात क्रोमेट गुजरात के उत्पादन स्टोमा क्योर।
10: अरे वाह भौजी, अरे ये की चेहरा पर गजब के चमक, पहिने कारी लगे छन, गोड़ भग

0: हम फोकटिया क्रीम नहीं यूज करी छी, ई त गोरी गोरी क्रीम के जादू छै, बुझलियै ने?
1: जी हाँ, गोरी गोरी क्रीम जे देत अहाँ के चेहरा पर गजब सन चमक, चेहरा के राखत गोरापन सावला हटात आ तहिना मुँह में रहल दाग धूरी सब सब दूर करत आ आँख के नीचा में रहल कालापन सेहो दूर भगात। तो आओ यत्र तत्र सर्वत्र बाजार में उपलब्ध अछि गोरी गोरी क्रीम।
2: आब हरेक गोरे गोरे क्रीम पर एकटा निश्चित उपहार देल जायत आ नकली सँ सावधान रहब।
0: तहन आब दोसर नहि, बस गोरी गोरी क्रीम।
1: निर्माता सारा भाई।
3: ए चाचा जी, राउर लाठी है ने बाटे आ खोजा तानी हो ने हाईली रोवा अपन लाठी।
4: अरे देख ना बबी, याद से कुछ लौटे नहीं छे, भगवान तो हटा सदा खुश रखे।
3: चली चाचा जी, रोरा के ले चलो तानी। राम कुमार महावीर प्रसाद केडिया आँखा अस्पताल परवानीपुर बीरगंज में।
4: ये हॉस्पिटल के सेवा सब है,
3: हाथ तथा कंप्यूटर विधि से मोतिया बिंदु के ऑपरेशन, पर्दा यानी रेटिना के संपूर्ण इलाज, जल बिंदु के संपूर्ण इलाज,
4: बल्ब देखला पर इंद्रधनुष के जैसन यदि दिखाई पड़त त समझी कि अपने के जल बिंदु भइल बा,
3: कॉर्निया के संपूर्ण इलाज,
4: बच्चा के आँख के संपूर्ण इलाज।
3: नोट, कंप्यूटर से ऑपरेशन के 2 घंटा बाद घर जाए के मिली।
4: आँख से संबंधित सभी इलाज के खातिर केडिया आँखा अस्पताल परवानीपुर बीरगंज।
5: सूचना भोजपुरिया FM से विज्ञापन एवं प्रचार प्रसार करावे खातिर संपर्क करी। संपर्क के खातिर मोबाइल नंबर 98550-36867, 98013-65011, वैसा ही व्हाट्सएप नंबर 98013-65011। अपने के बिजनेस तथा व्यापार के सहयात्री एवं शुभचिंतक, हर पल अपने के साथ। रेडियो भोजपुरिया FM 92.8 MHz, आदर्श नगर बीरगंज टाउन हॉल गेट के पास, परसा नेपाल।
6: नमस्ते, आप सुन रहे हो भोजपुरिया FM 92.8। सुनते रहो, सुनाते रहो।

0: नमस्ते, आप सुन रहे हो भोजपुरी FM 92.8। सुनते रहो, सुनाते रहो।
1: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलता पूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य SP त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज, जैसे
2: सभी प्रकार के नशा, जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, टीका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
1: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलता पूर्वक करते हैं।
3: वैद्य SP त्यागी जी से मिलने का पता प्रत्येक गुरुवार घोड़ा साहन स्टेट बैंक से 5 मकान पूरब मुरारी जी के मकान में,
4: प्रत्येक शुक्रवार, शनिवार एवं रविवार
1: रक्सौल डंकर हॉस्पिटल से पूरब मिश्रा गली से पूरब वाली गली में त्यागी जी के अपने मकान में, प्रत्येक मंगलवार बेतिया उर्वशी सिनेमा से पूरब सेंट्रल बैंक के बगल में मानवर शोरूम के पास अजय झा जी के मकान में, प्रत्येक बुधवार मोतिहारी बेलही देवी मंदिर से पूरब राजेश्वरी होटल के सामने आनंद होटल के नीचे, प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में,
4: प्रत्येक बुधवार नरकटियागंज रजिस्ट्री कचहरी रोड तार खाना के बगल में सरबदेव कुशवाहा के मकान में।
3: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
1: और 9097160602।
5: डॉक्टर साहब देखी ना, मुंह पियर आ गई बा, हाँ तो झनझनाता, का बाएकर इलाज?
6: देखी अपने के कहल सब समस्या आ साथ में चेहरा मुरझाइल, सीढ़ी चढ़ला पर आ तेज चढ़ला पर जन सांस दम फूलेला उ समस्या, आ अपन उम्र से जन 5 साल ज्यादा दिखेला, इस सब समस्या के समाधान करे खातिर हेमोडेक्स के प्रयोग करी। साथे अपने अपन बच्चा के पूर्ण रूप से सुंदर स्वस्थ देखे के चाहतानी तो हेमोडेक्स ही प्रयोग करी।
7: जी गुजरात ग्रोमेट, विश्वास के एक नाम, गुजरात ग्रोमेट के बनल संपूर्ण पारिवारिक टॉनिक हेमोडेक्स, जे खून के कमी के समस्या से तुरंत छुटकारा दी। हेमोडेक्स आज वे अपन नजदीकी दुकान से खरीदी। हेमोडेक्स
8: जी अब अपने के साथवा स्टोमा क्यूर, जॉन, गैस्ट्रिक अल्सर, हाइपर एसिडिटी के कारण सांस और छाती के तकलीफ, उच्च रक्तचाप, पुरान आव, पुरान कब्ज, सिर दर्द एवं बेचैनी जैसन तकलीफ के दूर करेला।
9: पेट के विभिन्न प्रकार के तकलीफ के करे दूर सियोर, यह स्टोमा क्यूर।
7: गुजरात ग्रोमेट गुजरात के उत्पादन स्टोमा क्यूर।
10: अरे वाह भौजी, अरे ये की चेहरा पर गजब के चमक, पहिने कारी लगे छन, हो गोड़ भगे।

0: हम फोकटिया क्रीम नहीं यूज करी छी, ई त गोरी गोरी क्रीम के जादू छै, बुझलियै ने?
1: जी हाँ, गोरी गोरी क्रीम जे देत अहाँ के चेहरा पर गजब सन चमक, चेहरा के राखत गोरापन सावला हटात आ तहिना मुँह में रहल दाग धुरी सब सब दूर करत आ आँख के नीचा में रहल कालापन सेहो दूर भगात। त आओ यत्र तत्र सर्वत्र बाजार में उपलब्ध अछि गोरी गोरी क्रीम।
2: आब हरेक गोरे गोरे क्रीम पर एकटा निश्चित उपहार देल जायत आ नकली सँ सावधान रहब।
0: तहन आब दोसर नहि, बस गोरी गोरी क्रीम।
1: निर्माता सारा भाई।
3: ए लक्ष्मीनिया बोलत काहे नहीं कसन, काथी भइल बा?
4: ए रामू भैया, राते से बाबूजी के बोली बंद हो गइल बा, हाथ पैर भी सुन हो गइल बा, कहाँ इलाज कराई?
3: सुनो बबी, देर ना करो, इनका के जल्दी लेके चल जा मोतिहारी में डॉक्टर मोबिन हाशमी के हॉस्पिटल में। हमनी यहाँ के बहुत लोग इनका से इलाज करा के ठीक भइल बानी। और उनकर बेटा डॉक्टर मोहसिन हाशमी MBBS MD फेलोशिप न्यूरो के पढ़ाई पढ़ले बड़न, तथा यहाँ दोनों आदमी मिल के इस सब बीमारी के उचित इलाज उत्तम व्यवस्था तथा कम पैसा में करेलन। हमरो 2 साल पहले इहे बीमारी भइल रहे, लेकिन आज हम घर गृहस्थी के सारा काम कर रहल बानी।
5: उठाव सर, इनका के जल्दी ले चला मोतिहारी में डॉक्टर मोबिन हाशमी एवं डॉक्टर मोहसिन हाशमी के लगे।
4: जी हाँ, यहाँ लकवा, ब्रेन हेमरेज, ब्रेन ट्यूमर, गर्दन के दर्द, कमर दर्द, साइटिका, माइग्रेन, मिर्गी के इलाज, दिमाग एवं स्पाइन के ट्यूमर, टीबी तथा इन्फेक्शन आदि के इलाज सफलता पूर्वक होला।
3: संपर्क हाशमी न्यूरो केयर हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर, स्टेट बैंक बाजार ब्रांच के सामने मोतिहारी। संपर्क
6: डॉक्टर मोबिन हाशमी, मोबाइल नंबर 7291-55466, 62-5523, 58-579 आ 98-525-68-46।
7: सूचना भोजपुरिया FM से विज्ञापन एवं प्रचार प्रसार करावे खातिर संपर्क करी। संपर्क के खातिर मोबाइल नंबर 98-550-36-867, 98-013-65-011, वैसा ही व्हाट्सएप नंबर 98-013-65-011। अपने के बिजनेस तथा व्यापार के सहयात्री एवं शुभचिंतक, हर पल अपने के साथ रेडियो भोजपुरिया FM 92.8 MHz, आदर्श नगर बीरगंज टाउन हॉल गेट के पास, परसा नेपाल।
8: नमस्ते, आप सुन रहे हो भोजपुरिया FM 92.8। सुनते रहो, सुनाते रहो।

भक्ति से ओतप्रोत कार्यक्रम सत्संग प्रभात। सत्संग प्रभात, सत्य पे निष्ठा कलयुग का पतवार, सब करेगा वही जो है पालनहार। मर्यादा को सिखाए अधर्म पर पहुँचे आघात, परम निष्ठा से सुनो यही है कार्यक्रम सत्संग प्रभात। जितेंद्र पारासर के साथ में रेडियो भोजपुरी FM 92.8 MHz में प्रत्येक दिन सुबह 6 बजे से 7 बजे तक, सायं 7 बजे से 8 बजे तक कार्यक्रम सत्संग प्रभात। सत्संग प्रभात।

प्रियम 92.8 मेगाहर्ज में अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सत्संग प्रभात सत्संग प्रभात सत्संग प्रभात सत्संग जितेंद्र पारासरिक के साथ।

अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक कारण करुणा भ्रोणालय परात्पर परब्रह्म श्री कृष्ण की वांग्मय छवि श्रीमद् भागवत महापुराण एवं कथारसिक श्री हनुमंत लाल जी महाराज परम पावनी मंगल में बेला कार्यक्रम सत्संग प्रभात में आप सबों का ढेर सारा स्वागत है। मैं आप लोकस्नेही जितेंद्र पारासर और अभी आप रेडियो भोजपुरी एफएम 92.8 मेगाहर्ज की तरंग के माध्यम से श्रवण कर रहे हैं कार्यक्रम सत्संग प्रभात को। प्रभु की सदैव कृपा हम भक्तों के ऊपर बनी रहे, यही प्रभु से विनती है, यही प्रभु से प्रार्थना है। सिद्धात्मन, हम सब मिलकर के बड़े आनंद के साथ कार्यक्रम सत्संग प्रभात में ढेर सारी चर्चाएं श्रवण कर रहे थे। संतों का आश्रय लेना, बड़े और बुजुर्गों के आश्रय लेना, जिसने आश्रय लिया उसके जीवन में उसका जीवन मानव धन्य हो गया। आजकल थोड़ी ही बातों में ये कहा करते हैं, बड़ी बुजुर्ग क्या करते मेरे लिए। शरात्मन, कुछ करते नहीं वे, लेकिन जो आपके जीवन में जो अनुभव अपने जीवन की जो बताते हैं वही आपके जीवन के लिए रंग ला देता है, वही रंग ला देता है। एक उदाहरण के लिए हम सब देखें, जब सुग्रीव जी महाराज ये कह दिए कि तुम लोग जाओ सीता मैया का पता लगा करके आओ, और हां एक मापदंड बनाई कि तुम लोगों को जाना है सीता मैया का खोज करके, एक महीने के अंदर तुम लोगों को वापस भी आना है, एक मापदंड क्या दिया कि एक महीने के अंदर यदि तुम लोग सीता मैया का खोज किए बिना वापस आते हो तुम लोगों को मृत्यु दंड दी जाएगी। जीवन में कुछ जो हट होता है उसको टाला नहीं जा सकता, जैसे बाल हट, बालक ने कह दिया उसे करके दिखाता है, योगी हट, योगी ने कुछ कह दिया उसे करके दिखाता है, उसके बाद में है राजहट, राजा जो कह दे उसे करके दिखाता है, और महाराज अंत में तो स्त्री हट है ही, स्त्री जो कह दे उसे करके दिखाती है। यहां पर राजहट है, राजा ने कह दिया कि तुम लोगों को जाना है एक महीने के अंदर खोज करके वापस आना है, अन्यथा तुम लोगों को मृत्यु दंड दी जाएगी। इस प्रसंग को बड़े ही शांत चित्त होकर के हृदयंगम करें, सब के सब जितने भी बंदर भालू थे सब के सब जा रहे हैं समुद्र किनारे, सबके अंदर में वे चिंता बनी हुई है, बिना खोजे वापस जाएंगे तो राजा छुड़ेगा नहीं मार देगा, बिना खोजे वापस जाए तो राजा छोड़ेगा नहीं मार डालेगा। जब आगे गए भीषण समुद्र जब देखा तो कहा कि इधर बढ़ेंगे डूब के मर जाएंगे। अब विचार करिए, आगे जाएंगे डूब के मर जाएंगे, पीछे जाएंगे राजा छोड़ेगा नहीं, राजा तो हत्या कर देगा, मार डालेगा। उसी जगह पर एक जगह से आवाज आई कि तुम लोगों को हम छोड़ेंगे नहीं मार डालेंगे, कहा कि तीसरा चलता फिरता हुआ आयु को कम करने वाला कौन आ गया भाई। सब जगह से ऐसा आवाज आ रहा है कि जब समय खराब होता है ना
तो जीवन में एक जगह से विपत्ति नहीं आती, चारों तरफ से वही नकारात्मक बातें, नकारात्मक चीज सबके सब ग्रसित कर लेते हैं, सबके सब ग्रसित कर लेते हैं। भाई पीछे भी मृत्यु, सामने भी मृत्यु, अब बगल में भी कहने वाला ये कह रहा है कि सब लोगों को हम खा जाएंगे। तब तक दृष्टि पड़ी उस गुफा के अंदर, संपाति बैठा हुआ था, कहा कि सब लोगों को मार करके खा जाएंगे। तब तक उसी में से एक ने कहा कि धन्य है वो जटायु जी महाराज जिन्होंने राम कार्य के लिए अपने जीवन को समर्पण कर दिया, भगवान राम के कार्य के लिए अपने जीवन को न्यौछावर कर दिया, जीवन को जीवन सोचा ही नहीं, निवर्छावर कर दिया। जिन सीता मैया को रावण लेकर के हर करके जा रहा था, किसी के अंदर वो साहस नहीं थी, लेकिन जटायु ने तो ये कर डाला कि मेरे पास में जितनी ताकत और हिम्मत है उससे मैं पीछे कभी नहीं हट सकता। क्यों? क्योंकि नारी के ऊपर किसी भी प्रकार से अत्याचार हो तो मानो कौन कहे, पशु भी पकसता नहीं। भले उसके बार बार उसने छलांग लगाई, रावण के ऊपर झपट्टा मारा, लेकिन रावण उस खड़ग से जटायु जी महाराज के पंख को काटा, जटायु जी महाराज

कि राम कार्य करने वाले लोगों को तुम खाने के लिए उद्यत हो रहे हो। और उस समय में संपाति ने कहा कि देखो, मैं काफी दिन से भूखे हूं, लेकिन फिर भी राम की जहां तक बात आई तो राम से जीवन में स्नेह कौन नहीं करता। कहा कि काम करो, तुम स्नेह करते हो तो हम लोगों के ऊपर उपकार कर दो। संपाति ने कहा कि क्या उपकार, तो पता नहीं चलता मां सीता इस वक्त कहां है, सीता इस वक्त कहां है। और महाराज, आप सब भी, हम सब भी सुने होंगे कि जो गिद्ध होता है उसके समक्ष दूर दृष्टि होती है, बड़ा दूर तक देख लेता है। हम सब मानव से बहुत ही अधिक दूर दृष्टि तक गिद्ध के अंदर वो दृष्टि पाई जाती, पता चल जाता। और उसने छलांग लगाया विशाल पर्वत पे, और उसने खूब अच्छे से टक लगा करके देखा तो कहा कि हां, समुद्र के बीच एक नगरी है और वहां पर एक विलखती हुई, रोती हुई एक नारी बैठी हुई है। और समझ लो, लगभग दूरी ये सत योजन का है, सौ योजन का है। जो सौ योजन जाएगा वहीं सीता मैया का खोज करके वापस आएगा, जो जाएगा वहीं सीता मैया का खोज करके वापस आएगा। सब लोगों ने कहा कि संपाति जी, और थोड़ा सा कोई सेवा हो तो बता दीजिए। कहा कि नहीं, मैं अब वृद्ध हो चला हूं, उसके अलावा मेरे लिए कोई सेवा शेष नहीं रहा, क्षमा याचना। सबने जय जयकार मनाया कि चलो, कम से कम इतना तो पता चला कि सीता मैया इस जगह पे हैं। सौ योजन जाएगा जो सीता मैया को वापस खोज करके आएगा। किसी ने पूछा ये योजन क्या होता है। सौ योजन जो जाएगा वहीं सीता मैया को खोज करके वापस आएगा। अब सबके मन में यह विचार होना चालू हो गया कि क्या करें, हम तो अधिक जा नहीं सकते हैं। किसी ने कहा हम तो अधिक जा नहीं सकते हैं, हम तो अधिक जा नहीं सकते हैं। सबके मन में यही विचार ही आया।

विचार किया कि ये योजन क्या है, तो उसमें बताया कि एक योजन में तीन कोश, यानी 1200 किलोमीटर। 100 योजन का मतलब हो गया 1200 किलोमीटर जो जाएगा वहीं सीता मैया को खोज करके वापस आएगा। अब किसी के पास में उतनी हिम्मत नहीं, किसी ने कहा कि हम तो इतने किलोमीटर चले जाएंगे, इतने दूर चले जाएंगे, इतने दूर चले जाएंगे। सबने लगाया, किसी ने कहा हम 20 योजन चले जाएंगे, किसी ने कहा 30 योजन चले जाएंगे, किसी ने कहा 40 योजन चले जाएंगे। कहा कि तेरा कार्य नहीं, बैठ जा महाराज। जो 100 जो 50 योजन जाने वाला था वो तो एकदम सीना तान करके खड़ा था, अरे हम 50 योजन चले जाएंगे। और विचार करिए, सबसे वृद्ध जो हैं वो हैं श्री जामवंत जी महाराज, सबसे वृद्ध हैं, सबसे वृद्ध हैं जामवंत जी महाराज। कहा कि 50 योजन वाले तुम भी बैठ जा, 60 योजन वाला तो उससे तो अधिक सीना तान करके खड़ा था। कहा हम 60 योजन। कहा तू भी बैठ जा। 70 योजन वाला तो एकदम फुफकार मार रहा था। कहा बेटा तू भी बैठ जा। किसी के साथ में हिम्मत नहीं आई।

अपनी जो स्टोरी है, जो कहानी है, जामवंत जी महाराज सबसे शेयर कर रहे हैं, सबसे बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं जामवंत जी? ये बता रहे हैं

जामोहन जी महाराज कहे तुम लोगों के इस जवानी के ऊपर लानत है। विचार करिए, बड़े वृद्ध हैं और इन्होंने लानत जताई कि तुम लोगों के जवानी के ऊपर ये लानत है। आज सीता मैया के खोज के लिए कोई कहता है कि 10 योजन जाएंगे, किसी ने कहा 20 योजन जाएंगे, किसी ने कहा 60 योजन जाएंगे, किसी ने 70 जताया, किसी ने 80 जताया। लानत है तुम लोगों के ऊपर। अरे जब मेरी जवानी थी उस समय में राजा वली के समक्ष वामन भगवान जब गए, विराट रूप जिस समय में धारण उन्होंने किया, इस धरती का मैंने 7 बार प्रदक्षिणा किया था, भ्रमण करके आया। बलि बांधत प्रभु बाड़ी हो शोतन वर्णी न जाए, उभय घरी महदिन ही मैं 7 प्रदक्षिणा धाय। 7 बार मैंने प्रदक्षिणा किया था। और कोई कहता है कि हम इतने योजन जाएंगे, उतने योजन जाएंगे, उतने योजन जाएंगे। इस हौसला बुलंद को सुन करके अंगद जी महाराज उठ करके खड़े हुए। अंगद जी ने कहा कि अरे हम चले जाएंगे, इसमें कोई संशय नहीं है, हम जाएंगे। जय जयकार हुई, अंगद जी महाराज की बड़ी जय जयकार हुई। और अंगद जी महाराज की जय जयकार होने के पश्चात एक शब्द में क्या कह रहे हैं,

0: पार,
1: हम चले जाएंगे पार, लेकिन
0: जिय संशय कछु फिरतिवारा,
1: हम चले जाएंगे लेकिन वापस आएंगे या नहीं आएंगे इसका कोई गारंटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। वापस आएंगे या नहीं आएंगे इसका कोई गारंटी मुझे नहीं है। जामुन जी महाराज कहे तो इतना उछल क्यों रहे हो, जा सकते हो, ये सब जानता है कि तुम जा सकते हो लेकिन आने में संशय है, तो फिर कार्य तो बना नहीं, कार्य तो सिद्ध हुआ नहीं। जाने के लिए तुम चले जाओगे लेकिन वापस नहीं आओगे, ये तो कार्य सिद्धि नहीं हो पाई। किसी ने पूछा, अरे पूछ लो, वापस आने में क्या संशय है, क्या दिक्कत परेशानी है। जामोन जी महाराज, किसी ने पूछा अंगद जी महाराज से, अंगद जी महाराज कहना प्रारंभ किए कि हम और रावण का बेटा अक्षय कुमार दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे, और हां बल के ऊपर तो मुझे काफी घमंड था ही, बात बात में अक्षय कुमार को मैं मार डालता था। जब भी कोई बात होती थी उसको मैं धमका देता था, जब भी कोई बात होती थी एक मुक्का लगा देता था। सहन करते गया, सहन नहीं हुई, उसने जाकर के गुरुजी महाराज से उसने उलाहना दिया, शिकायत किया, गुरुजी ये बार बार मुझे जो है मारना चालू कर देता है, मुक्का से मारता है, कभी कुछ से प्रताड़ित करता है, कभी कुछ से प्रताड़ित करता है, मैं कितना सहन करूं। गुरुजी को बड़ा आवेश आया, गुरुजी ने श्राप दिया, अरे अंगद तेरे बल के ऊपर इतना घमंड है, जा तुम्हें मैं श्राप देता हूं, आज के बाद यदि ये अक्षय कुमार एक मुक्का भी तुम्हें जमा दे तो तुम जीवित नहीं रह सकती हो, तुम्हें मरना ही पड़ेगा। ये श्राप लगी हुई थी गुरुजी का। इसी के लिए अंगद जी महाराज कह रहे हैं कि हम तो चले जाएंगे, कोई मेरे लिए बड़ी बात नहीं है, लेकिन वापस आएंगे या नहीं आएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्यों? क्योंकि यदि अक्षय कुमार मिल गया और देखिएगा कि इसने लंका नगरी में आकर के प्रवेश किया, उत्पात मचा रहा है, है? कहीं जी एक मुक्का भी जमा दिया तो हम तो यहीं पे मेरा राम नाम सत्य हो जाएगा, हम तो मर जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। इसके लिए कह रहे हैं कि जिय संशय कछु फिरति वारा, आने में मुझे कुछ संशय हो गए, अब बात साफ हो गई, यानी कि अब कोई जाने वाला नहीं है। सबने अपने सिर को नीचे झुका करके मुखमंडल पे मायूसी छाई हुई है, किसी के उस चेहरा पे हंसी का सवाल ही नहीं उठता, सब के सब मायूस हैं। और महाराज एक पल के लिए भी जब हनुमान जी महाराज को यह लगता उस समय में राम के नामों का उच्चारण करना प्रारंभ कर देते, दुनियादारी नहीं, भगवान राम के हृदय में राम बसे हुए हैं, परमात्मा बसे हुए हैं, ईश्वर बसे हुए हैं, और उस समय में हनुमान जी महाराज भगवान राम का गुणगान करते हैं, प्रभु का स्मरण कर रहे हैं सिर को झुका करके। क्यों? हनुमान जी महाराज के हृदय में राम और जानकी दोनों बैठते हैं,

प्रभु राम चुपचाप राम का छवि लेकर के और हनुमान जी महाराज बैठे हुए हैं। भगवान उनके समक्ष हृदय में बस प्रभु राम बैठे हुए हैं। कौन? हनुमान जी महाराज चुपचाप एकदम आनंद चित्त होकर के और बैठे हुए हैं। क्यों? उनके हृदय में राम बैठे हुए हैं। और महाराज आइए प्यारा शुभ जन्म।

0: और हनुमान जी महाराज चुपचाप बैठे हुए, कोई किसी से मतलब नहीं, लेकिन जा पर कृपा राम कह हुई ता पर कृपा करे सब कोई, एक तो कम से कम आशा विश्वास तो बनी हुई है ना। हनुमान जी महाराज है, चामुन जी महाराज उठ करके खड़े होकर के हनुमंत लाल जी महाराज सिर झुका करके बैठे हुए भगवान राम के नामों का उच्चारण अहर्निश कर रहे हैं, प्रभु राम का नामों का उच्चारण अहर्निश कर रहे हैं। जामोन जी महाराज कहे कि आप मायूस मंडल इतने मायूसी होकर के आप बैठे हुए हैं, अरे सीता का खोज आप ही से होने वाला है, पता है आपको? आपके अंदर कितना बल है, कितनी ताकत है, आपको पता है? आप कितने बलवान हैं और सब कार्य को आप कर सकते हैं, यहां तक तो ठीक रही। हनुमान जी महाराज थोड़ा सा टस से मस नहीं हुए, लेकिन जब जामोन जी महाराज कहे कि राम कार्य लगी तब अवतारा, हे हनुमान तुम्हारा इस धराधाम पे आना ये तो राम कार्य के लिए ही हुआ है तुम्हारा यह अवतार, और तुम चुपचाप बैठे हुए हो, उठ। और उस समय में जोश जगाते हैं और हनुमान जी महाराज सुनते हूं भयो हूं पर्वताकार, पर्वता के आकार जैसे हो गए। हनुमान महाराज इतने विशाल रूप धारण किए, जय जयकार हो रही है, बालाजी सरकार की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो, जय जयकार हो रही है। हनुमान जी ने कहा कि आप मुझे आदेश दें कि त्रिकुट नामक पर्वत सहित रावण सहित सीता मैया को वापस लेकर के यहां आ जा रहे हैं, हम जाएंगे तो सीता मैया का सिर्फ देख करके नहीं, पूरे त्रिकुट नाम के पर्वत सहित उठा करके पूरे लंका को लेकर के आ जाए। और जय जयकार हो रही है, कार्य बन गया, कार्य बन गया, जय हो हनुमंत लाल जी महाराज की जय हो, जिन्होंने हम लोगों के सूखे हुए उस पौधे पे जिन्होंने सिंचन करने वाले जल बन करके आप उद्यत हुए, जय हो जय जयकार हो रही है हनुमान जी महाराज की। जामवंत जी महाराज कहे कि इतनी आवेश नहीं, शांत हो जा, तुम्हें पर्वत सहित लंका को लेकर के नहीं आना है, जाना है और जा करके सिर्फ सीता मैया को देख करके वापस आना है। कहा कि इतने दूर जाएंगे सीता मैया को सिर्फ देख करके आना पड़ेगा, है? 100 योजन जाने के बाद सिर्फ देख करके आना पड़ेगा? कहा कि हां इतना ही कार्य करना है, क्यों? सीता मैया का देख करके पता करके जब आओगे ना तो राम जी महाराज लक्ष्मण जी महाराज के साथ हम सब बंदर भालुओं के साथ चलेंगे और रावण को वध करेंगे, समाप्त करेंगे कांटे को, और सीता मैया को अपने साथ में वापस लेकर के तब आएंगे। हनुमान जी महाराज शांत हो गए, कहा कि इतने दूर जाकर के और चुपचाप आ जाना मुझसे तो बनता नहीं, अरे जाएंगे तो दो चार फैट लगाएंगे, दो चार मुक्का लगाएंगे तभी आना पड़ेगा। कहा कि ये सब कार्य नहीं करना है हनुमान जी, विचार करिए। इस दृष्टांत को दर्शाने में मेरा ये मंतव्य था, इस जगह पे जबी जोशवान जवान अवस्था में पड़े हुए जितनी भी सेनाएं थी उसके अंदर यदि जामवंत जी महाराज नहीं होते तो वो हौसला देने वाले हनुमान जी के समक्ष, इतने बंदर भालुओं के समक्ष हौसला कौन देता, कौन देता हौसला? और महाराज हनुमान जी महाराज जब निकले हैं तो ढेर सारी समस्याएं आई। मैनाक नाम के पर्वत जो स्वर्ण का था, सोने का था, हनुमान जी महाराज आप विश्राम कर लीजिए, विचार करिए, यदि हनुमान जी महाराज उस सोने में खो करके विश्राम करना चालू कर देते तो सीता मैया का खोज पता चलता? रुको दो घंटे सो लेते हैं, सोना कब मिला हुआ है। हनुमान जी ने महाराज सिर्फ स्पर्श किया और उन्होंने स्पर्श करके कहा, राम काज कीन्हे बिनो मोह कहां विश्राम, भगवान राम के कार्य किए हुए बिना मुझे विश्राम मेरे लिए हराम होगा। अरे जीवन में सुरसा आई, सुरसा को भी हनुमान जी महाराज परास्त किए, सिंहिका को भी परास्त किए, लंकनी मिली लंकनी को भी परास्त किए, मेघनाथ को भी परास्त किए, अक्षय कुमार को समाप्त किए, कितने राक्षसों को संहार किए, लेकिन वरदान भी दिए। विभीषण किस प्रकार से तुम रह लेते हो? भगवान राम के जो अहरणिश, भगवान राम के श्री चरणों में जिसका आस बना हुआ है, चाहे वो लंका में क्यों न हो और कहीं संत के कुटिया में क्यों न हो, भगवान राम के प्रति यदि आस बना हुआ है तो जीवन में कहीं भी रह लेगा, उसे कोई कठिनाई नहीं आएगी, और कठिनाई भी आएगी तो राम के प्रसाद को समझ करके वो हृदय में रख लेता है। विचार करिए, यदि जीवन में हनुमान जी महाराज के इस जीवन में जाने के पश्चात सिंहिका नहीं मिलती, सुरसा नहीं मिलती, लंकिनी नहीं मिलती, तो फिर इस कथा का उद्देश्य कोई रहता ही नहीं। हमारे जीवन में थोड़े से कष्ट और परेशानी आ गई तो हम ये कहा करते, अरे भगवान मेरे ऊपर कृपा आपकी नहीं हो रही है, हे परमात्मा आपकी कृपा मेरे ऊपर नहीं हो रही है, विचलित हो जाते। लेकिन विचार करिए, हनुमान जी महाराज के जीवन में कितनी बड़ी भीषण विपत्ति आई, लेकिन सब विपत्ति को उन्होंने टालते हुए, सब दुखों को उन्होंने टालते हुए एक ध्येय बना करके मुझे राम की कार्य मुझे करना है, भगवान राम की कार्य, राम कार्य कीन्हे बिनु मोहि कहां विश्राम, भगवान राम का कार्य जब तक मैं न कर लूं तब तक हमारे जीवन में विश्राम नाम का चीज है ही नहीं। विचार करिए कि हमारे जीवन में जो बड़े बुजुर्ग होते हैं ना, कुछ करते नहीं, यहां जामवंत जी महाराज कुछ किए नहीं, लेकिन सब चीज सब रोल जामवंत जी महाराज का ही है। जामवंत जी महाराज यदि नहीं होते तो सीता मैया का खोज करने में कितनी पसीना छूट गई होती ये किसी को पता नहीं। जामवंत जी महाराज कुछ किए नहीं लेकिन बहुत कार्य कर दिए, हौसला वो बुलंद कर दिए। अपने जीवन की जो घटित घटना है, जीवन का जो सार है, सबको उन्होंने बता दिया कि हमारे जीवन में ऐसे ऐसे थी, तुम लोगों को भी इस प्रकार से करना चाहिए। अरे तुम लोग कहते हो कि 10 योजन चले जाएंगे, 20 योजन चले जाएंगे, 30 योजन चले जाएंगे, यदि 99 योजन भी जाने वाला व्यक्ति भी डूब करके आएगा, लानत होनी चाहिए तुम लोगों के जीवन के ऊपर। उतना हौसला बुलंद करने में भी अंगद जी महाराज उठ करके खड़े हुए, हम चले जाएंगे लेकिन किसी कारणवश वापस नहीं हो पाएंगे। फिर हौसला भरते हुए हनुमान जी के ऊपर उन्होंने कहा, हनुमान जी महाराज चुपचाप बैठे हुए, कोई प्रत्युत्तर नहीं। आज पता चली जो गरजता है वो बरसता नहीं, और जो बरसने वाला होता है वो कम ही गरज करके और बरस लेता है। चुपचाप बैठे हुए हनुमान जी महाराज चुपचाप, लेकिन हौसला भरने के लिए तो जामवंत जी महाराज इतना हौसला भर दिए हनुमान जी के समक्ष कि विशाल रूप, उस सुंदर पर्वत पे विशाल रूप धारण करके और लगाए छलांग सीता मैया का खोज करके वापस आ गए। कहने का अभिप्राय यह है कि बड़ों का सम्मान करना, बड़ों का आदर करना हमारे जीवन में जिस दिन ही आ जाए उस दिन हमारा जीवन कृतार्थ हो जाएगा, उस दिन हमारा जीवन पावन हो जाएगा। उस लक्ष्य के तरफ जाने से कोई रोक नहीं सकता। बड़े बुजुर्ग, अरे बंधुओं, आपका उम्र यदि 25 साल का है आपके बड़े बुजुर्ग 75 वर्ष के हैं, कुछ कह रहे हैं मानिए, उनका अनुभव 75 वर्ष का है लेकिन आपका अनुभव सिर्फ 25 वर्ष का है। वो अपना अनुभव बता करके ही आपके जीवन की जो नैया है ना उसको पार कर सकते हैं, पार कर सकते हैं। वो अपना अनुभव देते हैं जीवन में। हर एक घर में इस प्रकार से यदि मानना शुभारंभ हो जाए तो जीवन में कोई कार्य बिगड़ता नहीं, कभी भी नहीं बिगड़ सकता। लेकिन हम आप सिर्फ लोगों को मनाने में रहते हैं कि ये मेरा बात क्यों नहीं मान रहा। जिस दिन स्वीकार करने की क्षमता आपके अंदर आ जाए ना, उस दिन जीवन में कोई कष्ट नहीं आएगी। जो हो रहा है ईश्वर की कृपा से हो रहा है, प्रभु की कृपा से हो रही है। और महाराज जो होने वाला है वो भी अच्छा ही होगा, प्रभु की कृपा से वो भी अच्छा होगा। और महाराज लगाए छलांग सीता मैया का खोज करके वापस भी आ गए। बड़े बुजुर्गों का सम्मान किया जाए, बड़े बुजुर्गों का आदर किया जाए, हमसे जो सम्माननीय है श्रेष्ठ हैं उनको आदर किया जाए, जीवन कृतार्थ हो जाएगा, जीवन पावन हो जाएगा। कार्यक्रम सत्संग प्रभात रेडियो भोजपुरी FM 92.8 मेगाहर्ज के तरंग के माध्यम से आप सब मिलकर के श्रवण कर रहे हैं। कार्यक्रम सत्संग प्रभात आपको कैसा लग रहा है? मुझे आशा विश्वास है कि कार्यक्रम सत्संग प्रभात आपको अच्छा लगा होगा। कार्यक्रम सत्संग प्रभात से आप जुड़े रहें, ईश्वर की कृपा बनी रहे, इसके लिए प्रभु से विनती है, प्रभु से प्रार्थना है। अभिषेक कुमार जी लिख रहे हैं, राधे राधे, कार्यक्रम सत्संग प्रभात मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, इस कार्यक्रम को हम गोपालगंज से श्रवण कर रहे हैं, ढेर सारा धन्यवाद। रंजन तिवारी जी भी इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, राधे राधे लिख करके भेजे, उसके लिए ढेर सारा धन्यवाद, पश्चिमी चंपारण से। अखिलेश कुमार यादव जी भी इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं नरकटियागंज से, कार्यक्रम सत्संग प्रभात सुन करके आप साथ दे रहे हैं, उसके लिए ढेर सारा धन्यवाद मेरे तरफ से। संजीव जी बगहा से इस कार्यक्रम को रसपान कर रहे हैं, उसके लिए भी ढेर सारा धन्यवाद। और रामपुर टोकनी से आश मोहम्मद अंसारी जी भी इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, कार्यक्रम सत्संग प्रभात मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। राजेश जी मुसहरवा से इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, विश्रामपुर गांव बालिका, कार्यक्रम मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, उसके लिए ढेर सारा धन्यवाद। ब्रिजमोहन जी, ब्रिजमोहन पांडे जी इस कार्यक्रम को मानिकपुर से श्रवण कर रहे हैं, ढेर सारा धन्यवाद। श्याम सुंदर बैठा जी गम्हरिया पान भंडार नहर चौक से आप इस कार्यक्रम को रसपान कर रहे हैं, दीवाना पान भंडार से, उसके लिए भी ढेर सारा धन्यवाद। राजकुमार माली जी परसौनी से इस कार्यक्रम को रसपान कर रहे हैं, पूजा जी इस कार्यक्रम को श्रवण कर रही हैं, पीयूष कुमार पांडे जी भी इस कार्यक्रम को रसपान कर रहे हैं, उसी क्रम में गुडू उज्झा जी भी इस कार्यक्रम को रसपान कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं। कार्यक्रम सत्संग प्रभात रेडियो भोजपुरी FM 92.8 मेगाहर्ट्ज के तरंग के माध्यम से इस कार्यक्रम आपको कैसा लगा? कार्यक्रम अच्छा लगा होगा तो प्रत्युत्तर जरूर दीजिए, 98-51-17-762 पर प्रत्युत्तर जरूर दिया जाए। इसी शुभ संदेशों के साथ आने वाले सत्र में मैं जितेंद्र पारासर आप सबों के समक्ष जरूर उपस्थित होंगे। कार्यक्रम सत्संग प्रभात सुनकर के साथ दिए, उसके लिए ढेर सारा धन्यवाद। आपका जीवन मंगलमय हो, प्रभु की अनन्य कृपा आप सबों के ऊपर बनी रहे। इसी शुभ संदेशों के साथ जरूर आने वाले सत्र में आप सबों के समक्ष जरूर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जितेंद्र पारासर को विदा दीजिए और सुनते रहिए रेडियो भोजपुरी FM 92.8 मेगाहर्ज के तरंग के माध्यम से आप सब बने रहिए। इसी शुभ संदेशों के साथ जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।
1: भोजपुरी FM 92.8 मेगाहर्ज में अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सत्संग प्रभात, सत्संग प्रभात, सत्संग प्रभात, सत्संग प्रभात जितेंद्र परासर के साथ में।
2: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज जैसे
3: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टैबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, साइटिका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
2: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
4: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता प्रत्येक गुरुवार घोड़ा साहन स्टेट बैंक से 5 मकान पूरब मुरारी जी के मकान में,
5: प्रत्येक शुक्रवार, शनिवार एवं रविवार
2: रक्सौल डंकर हॉस्पिटल से पूरब मिश्रा गली से पूरब वाली गली में त्यागी जी के अपने मकान में, प्रत्येक मंगलवार बेतिया उर्वशी सिनेमा से पूरब सेंट्रल बैंक के बगल में मानवर शोरूम के पास अजय झा जी के मकान में, प्रत्येक बुधवार मोतिहारी बेलही देवी मंदिर से पूरब राजेश्वरी होटल के सामने आनंद होटल के नीचे, प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में,
5: प्रत्येक बुधवार नरकटियागंज रजिस्ट्री कचहरी रोड मुख्तार खाना के बगल में सरबदेव कुशवाहा के मकान में।
4: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
2: और 9097160602।
6: डॉक्टर साहब देखी ना, मुँह पियर आ गई बा, हाँ तो झंझनाता, का बा एकर इलाज?
7: देखी अपने के कहल सब समस्या आ साथ में चेहरा मुरझाइल, सीढ़ी चढ़ला पर आ तेज चढ़ला पर जन सांस दम फूलेला उ समस्या आ अपन उम्र से जन 5 साल ज्यादा दिखेला इस सब समस्या के समाधान करे खातिर हेमोडेक्स के प्रयोग करी। साथे अपने अपन बच्चा के पूर्ण रूप से सुंदर स्वस्थ देखे के चाहतानी तो हेमोडेक्स ही प्रयोग करी।
8: जी गुजरात ग्रोमेट विश्वास के एक नाम, गुजरात ग्रोमेट के बनल संपूर्ण पारिवारिक टॉनिक हेमोडेक्स जे खून के कमी के समस्या से तुरंत छुटकारा दी। हेमोडेक्स आजवे अपन नजदीकी दुकान से खरीदी हेमोडेक्स।
9: जी अब अपने के साथवा स्टोमाक्यूर, जॉन, गैस्ट्रिक अल्सर, हाइपर एसिडिटी के कारण सांस और छाती के तकलीफ, उच्च रक्तचाप, पुरान आव, पुरान कब्ज, सिर दर्द एवं बेचैनी जैसन तकलीफ के दूर करेला,
6: पेट के विभिन्न प्रकार के तकलीफ के करे दूर सियोर, यह स्टोमाक्यूर।
8: गुजरात ग्रोमेट गुजरात के उत्पादन स्टोमाक्यूर।
10: ए चाचा जी राउर लाठी है ने बाटे आ खोजा तानी हो ने हैली रोवा अपन लाठी।
11: अरे देख न बबी आग से कुछ लौटे नहीं छे, भगवान तोहरा सदा खुश रखे।
10: चली चाचा जी रोरा के ले चलो तानी राम कुमार महावीर प्रसाद केरिया आँखा अस्पताल परवानीपुर बीरगंज में।
12: ये हॉस्पिटल के सेवा सब है
10: हाथ तथा कंप्यूटर विधि से मोतिया बिंदु के ऑपरेशन, पर्दा यानी रेटिना के संपूर्ण इलाज, जल बिंदु के संपूर्ण इलाज,
12: बल्ब देखला पर इंद्रधनुष के जैसन यदि दिखाई पड़ता तो समझी कि अपने के जल बिंदु भइल बा,
10: कॉर्निया के संपूर्ण इलाज,
12: बच्चा के आँख के संपूर्ण इलाज।
10: नोट, कंप्यूटर से ऑपरेशन के 2 घंटा बाद घर जाए के मिली।
12: आँख से संबंधित सभी इलाज के खातिर केड़िया आँखा अस्पताल परवानीपुर बीरगंज।
13: ए लक्ष्मीनिया बोलत काहे नहीं कसन, काथी भइल बा?
14: ए रामू भैया राते से बाबूजी के बोली बंद हो गइल बा, हाथ पैर भी सुन हो गइल बा, कहाँ इलाज कराई?
13: सुनो बबी देर ना करो, इनका के जल्दी लेके चल जा मोतिहारी में डॉक्टर मोबिन हाशमी के हॉस्पिटल में। हमनी यहाँ के बहुत लोग इनका से इलाज करा के ठीक भइल बानी और उनकर बेटा डॉक्टर मोहसिन हाशमी MBBS MD फेलोशिप न्यूरो के पढ़ाई पढ़ले बाड़न तथा यहाँ दोनों आदमी मिल के इस सब बीमारी के उचित इलाज, उत्तम व्यवस्था तथा कम पैसा में करेलन। हमरो 2 साल पहले यह बीमारी भइल रहे लेकिन आज हम घर गृहस्थी के सारा काम कर रहल बानी।
15: उठाओ सर इनका के जल्दी ले चला मोतिहारी में डॉक्टर मोबिन हाशमी एवं डॉक्टर मोहसिन हाशमी के लगे।
14: जी हाँ, यहाँ लकवा, ब्रेन हेमरेज, ब्रेन ट्यूमर, गर्दन के दर्द, कमर दर्द, साइटिका, माइग्रेन, मिर्गी के इलाज, दिमाग एवं स्पाइन के ट्यूमर, टीबी तथा इन्फेक्शन आदि के इलाज सफलतापूर्वक होला।
13: सम्पर्क हास्मी न्यूरो केयर हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर स्टेट बैंक बाजार ब्रांच के सामने मोतिहारी। संपर्क
16: डॉक्टर मोबिन हास्मी मोबाइल नंबर 7201-55466 62-5523 58-579 आ 98-525-68-46।
17: अरे वाह भौजी, अरे ये की चेहरा पर गजब के चमक, पहिने कारी लवी छन हो गोड़ भगे।

0: आ हम फोकटिया क्रीम नहीं यूज करै छी, ई तो गोरी गोरी क्रीम के जादू छै, बुझलियै ने?
1: जी हाँ, गोरी गोरी क्रीम जे देत अहाँ के चेहरा पर गजब सन चमक, चेहरा के राखत गोरापन सांवला हटात, आ तहिना मुँह में रहल दाग धुरी सब सब दूर करत, आ आँख के नीचा में रहल कालापन सेहो दूर भगात। तो आओ यत्र तत्र सर्वत्र बाजार में उपलब्ध अछि गोरी गोरी क्रीम।
2: आब हरेक गोरे गोरे क्रीम पर एकटा निश्चित उपहार देल जायत, आ नकली सँ सावधान रहब।
0: तहन आब दोसर नहि, बस गोरी गोरी क्रीम।
1: निर्माता सारा भाई।
3: कोलार्क रिसोर्ट बीरगंज 14 बहुअरी।
4: जी आप सही सुने, कोलार्क रिसर्च बीरगंज 14 बहुअरी, जो कि नारायणी सिंचाई के पूर्व में स्थित एक बहुत ही मनमोहक और हरियाली भरे वातावरण में सभी आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है। इस रिसर्च में अनेकों पार्टी हॉल जिसमें आप 20 आदमी से लेके 2000 आदमी तक का फंक्शन कर सकते हैं।
3: खास तौर पे बोर्ड मीटिंग, कॉन्फ्रेंस, बर्थडे पार्टी।

0: एनिवर्सरी पार्टी और साथ ही शादियों के लिए खास रूप से अलग अलग पैकेज तैयार किया गया है।
1: क्लार्क रिसर्च आपको अनेकों तरह के व्यंजन परोसने के लिए तैयार है, जिसमें खास करके चाइनीज, इंडियन, कॉन्टिनेंटल, इटालियन और रीजनल फूड अवेलेबल है। पूरी तरह से ट्रेंड स्टाफ स्वादिष्ट खाना के साथ आपको सर्विस देने को तैयार है।
0: आप किसी भी विशेष जानकारी और बुकिंग के लिए फूड एंड बेवरेज मैनेजर से कांटेक्ट करें।
2: संपर्क मोबाइल नंबर 9803-10555 और 9803-10888।
3: सूचना भोजपुरिया FM से विज्ञापन एवं प्रचार प्रसार करावे खातिर संपर्क करी। संपर्क के खातिर मोबाइल नंबर 9850-36867, 9803-65011, वैसा ही व्हाट्सएप नंबर 9803-65011। अपने के बिजनेस तथा व्यापार के सहयात्री एवं शुभ चिंतक, हर पल अपने के साथ रेडियो भोजपुरिया FM 92.8 MHz, आदर्श नगर, बीरगंज, टाउन हॉल गेट के पास, परसा नेपाल।

0: हामी सबै नेपाली अनि हामी सबैको भावना एक र सबैलाई मनपर्ने भोजपुरी एफएम 92.8
1: भक्ति से ओतप्रोत कार्यक्रम सत्संग प्रभात सत्संग प्रभात सत्य पे निष्ठा कलयुग का पतवार सब करेगा वही जो है पालनहार मर्यादा को सिखाए अधर्म पर पहुँचे आघात परम निष्ठा से सुनो यही है कार्यक्रम सत्संग प्रभात जितेंद्र पाराश्र के साथ में रेडियो भोजपुरी एफएम 92.8 मेगाहर्ट्ज में प्रत्येक दिन सुबह 6 बजे से 7 बजे तक सायं 7 बजे से 8 बजे तक कार्यक्रम सत्संग प्रभात सत्संग प्रभात।

0: खून दान ही जीवन दान है। टाइम चेक भोजपुरिया FM 92.8 MHz में
1: अभी संजिया के 8 बजे
2: भोजपुरी भाषा संस्कृति के पहचान भोजपुरिया FM 92.8 MHz पर अभी रहुआ सुनतानी भोजपुरी निर्गुण।

0: अनेकतामा एक, यो हो भोजपुरी एफएम 92.8।
1: जो लोग डायबिटीज से परेशान है वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी।

0: एकर इलाज?
1: देखी अपने के कहल सब समस्या आ साथ में चेहरा मुरझाइल, सीढ़ी चढ़ला पर आ तेज चढ़ला पर जन सांस दम फूलेला उ समस्या आ अपन उम्र से जन 5 साल ज्यादा दिखेला इस सब समस्या के समाधान करे खातिर हेमोडेक्स के प्रयोग करी। साथे अपने अपन बच्चा के पूर्ण रूप से सुंदर स्वस्थ देखे के चाहतानी त हेमोडेक्स ही प्रयोग करी।
2: जी गुजरात ग्रोमेड, विश्वास के एक नाम। गुजरात ग्रोमेड के बनल संपूर्ण पारिवारिक टॉनिक हेमोडेक्स, जे खून के कमी के समस्या से तुरंत छुटकारा दी। हेमोडेक्स आजवे अपन नजदीकी दुकान से खरीदी। हेमोडेक्स
3: जी अब अपने के साथवा स्टोमा क्यूर, जॉन गैस्ट्रिक अल्सर, हाइपर एसिडिटी के कारण सांस और छाती के तकलीफ, उच्च रक्तचाप, पुरान आ पुरान कब्ज, सिर दर्द एवं बेचैनी जैसन तकलीफ के दूर करेला।
0: पेट के विभिन्न प्रकार के तकलीफ के करे दूर सियोर, यह स्टोमा क्यूर।
2: गुजरात ग्रोमेड, गुजरात के उत्पादन स्टोमा क्यूर।
4: ए चाचा जी राउर लाठी है ने बाटे आ खोजा तानी हो ने हैली रोवा अपन लाठी।
5: अरे देख ना बबी, आँख से कुछ लगते नहीं छे, भगवान तोहरा सदा खुश रखे।
4: चली चाचा जी रोरा के ले चलो तानी राम कुमार महावीर प्रसाद केडिया आँखा अस्पताल परवानीपुर बीरगंज में।
6: ई हॉस्पिटल के सेवा सब
4: हाथ तथा कंप्यूटर विधि से मोतिया बिंदु के ऑपरेशन, पर्दा यानी रेटिना के संपूर्ण इलाज, जल बिंदु के संपूर्ण इलाज,
6: बल्ब देखला पर इंद्रधनुष के जैसन यदि दिखाई पड़ता तो समझी कि अपने के जल बिंदु भइल बा,
4: कॉर्निया के संपूर्ण इलाज,
6: बच्चा के आँख के संपूर्ण इलाज।
4: नोट, कंप्यूटर से ऑपरेशन के 2 घंटा बाद घर जाए के मिली।
6: आँख से संबंधित सभी इलाज के खातिर केडिया आँखा अस्पताल परवानीपुर बीरगंज।
7: अरे वाह भौजी, अरे ई की चेहरा पर गजब के चमक, पहिने कारी लवी छन हो गोड़ भग।

0: हम फोकटिया क्रीम नहीं यूज करी छी, ई त गोरी गोरी क्रीम के जादू छै, बुझलियै ने?
1: जी हाँ, गोरी गोरी क्रीम जे देत अहाँ के चेहरा पर गजब सन चमक, चेहरा के राखत गोरापन सावला हटात आ तहिना मुँह में रहल दाग धुरी सब सब दूर करत आ आँख के नीचा में रहल कालापन सेहो दूर भगात। तो आओ यत्र तत्र सर्वत्र बाजार में उपलब्ध अछि गोरी गोरी क्रीम।
2: आब हरेक गोरे गोरे क्रीम पर एकटा निश्चित उपहार देल जायत आ नकली सँ सावधान रहब।
0: तहन आब दोसर नहि, बस गोरी गोरी क्रीम।
1: निर्माता सारा भाई।
3: कोलार्क रिसर्च बीरगंज 14 बहुअरी।
4: जी आप सही सुने, कोलार्क रिसर्च बीरगंज 14 बहुअरी जो कि नारायणी सिंचाई के पूर्व में स्थित एक बहुत ही मनमोहक और हरियाली भरे वातावरण में सभी आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है। इस रिसर्च में अनेकों पार्टी हॉल जिसमें आप 20 आदमी से लेके 2000 आदमी तक का फंक्शन कर सकते हैं।
3: खास तौर पे बोर्ड मीटिंग, कॉन्फ्रेंस, बर्थडे पार्टी एंड एनिवर्सरी पार्टी और साथ ही शादियों के लिए खास रूप से अलग अलग पैकेज तैयार किया गया है।
4: कोलार्क रिसर्च आपको अनेक तरह के व्यंजन परोसने के लिए तैयार है जिसमें खास करके चाइनीज, इंडियन, कॉन्टिनेंटल, इटालियन और रीजनल फूड अवेलेबल है। पूरी तरह से ट्रेंड स्टाफ स्वादिष्ट खाना के साथ आपको सर्विस देने को तैयार है।
3: आप किसी भी विशेष जानकारी और बुकिंग के लिए फूड एंड बेवरेज मैनेजर से कॉन्टेक्ट करें।
5: संपर्क मोबाइल नंबर 98023 10555 और 98023 10888।
6: सूचना भोजपुरिया FM से विज्ञापन एवं प्रचार प्रसार करावे खातिर संपर्क करी। संपर्क के खातिर मोबाइल नंबर 98550 36867, 98013 65011, वैसा ही व्हाट्सएप नंबर 98013 65011। अपने के बिजनेस तथा व्यापार के सहयात्री एवं शुभचिंतक, हर पल अपने के साथ रेडियो भोजपुरिया FM 92.8 MHz आदर्श नगर बीरगंज टाउन हॉल गेट के पास परसा नेपाल।
0: भोजपुरी भाषा संस्कृति के पहचान, भोजपुरी

0: अनेकतामा एक, यो हो भोजपुरी एफएम 92.8।
1: जो लोग डायबिटीज से परेशान है वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा कर इलाज कराकर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज जैसे
2: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, साइटी का, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंताएं और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
1: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
3: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता प्रत्येक गुरुवार घोड़ा साहन स्टेट बैंक से 5 मकान पूरब मुरारी जी के मकान में,
4: प्रत्येक शुक्रवार, शनिवार एवं रविवार
1: रक्सौल डंकन हॉस्पिटल से पूरब, मिश्रा गली से पूरब वाली गली में त्यागी जी के अपने मकान में, प्रत्येक

0: मंगलवार बेतिया उर्वशी सिनेमा से पूर्व सेंट्रल बैंक के बगल में मानवर शोरूम के पास अजय झाजी के मकान में, प्रत्येक बुधवार मोतिहारी बेलही देवी मंदिर से पूर्व राजेश्वरी होटल के सामने आनंद होटल के नीचे, प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में,
1: प्रत्येक बुधवार नरकटियागंज रजिस्ट्री कचहरी रोड मुख्तार खाना के बगल में सरबदेव कुशवाहा के मकान में।
2: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554493
0: और 9097160।
3: डॉक्टर साहब देखी ना, मुँह पियरा गई बा, हाँ तो झंझनाता, का बा एकर इलाज?
4: देखी अपने के कहल सब समस्या आ साथ में चेहरा मुरझाइल, सीढ़ी चढ़ला पर आ तेज चढ़ला पर जन सांस दम फूलेला उ समस्या, आ अपन उम्र से जन 5 साल ज्यादा दिखेला, इस सब समस्या के समाधान करे खातिर हेमोडेक्स के प्रयोग करी। साथे अपने अपन बच्चा के पूर्ण रूप से सुंदर स्वस्थ देखे के चाहतानी तो हेमोडेक्स ही प्रयोग करी।
5: जी गुजरात ग्रोमेट, विश्वास के एक नाम, गुजरात ग्रोमेट के बनल संपूर्ण पारिवारिक टोनिक हेमोडेक्स, जे खून के कमी के समस्या से तुरंत छुटकारा दी। हेमोडेक्स आज वे अपन नजदीकी दुकान से खरीदी। हेमोडेक्स
6: जी अब अपने के साथवा स्टोमा क्यू, जौन, गैस्ट्रिक अल्सर, हाइपर एसिडिटी के कारण सांस और छाती के तकलीफ, उच्च रक्तचाप, पुरान आ पुरान कब्ज, सिर दर्द एवं बेचैनी जैसन तकलीफ के दूर करेला,
7: पेट के विभिन्न प्रकार के तकलीफ के करे दूर सियोर, यह स्टोमा क्यूर।
5: गुजरात ग्रोमेट गुजरात के उत्पादन स्टोमा क्यूर।
8: ए लक्ष्मीनिया बोलत काहे नहीं कसन, काथी भइल बा?
9: ए रामू भैया, राते से बाबूजी के बोली बंद हो गइल बा, हाथ पैर भी सुन हो गइल बा, कहाँ इलाज कराई?
8: सुनो बबी, देर ना करो, इनका के जल्दी लेके चल जा मोतिहारी में डॉक्टर मोबिन हाशमी के हॉस्पिटल में। हमनी यहाँ के बहुत लोग इनका से इलाज करा के ठीक भइल बानी, और उनकर बेटा डॉक्टर मोहसिन हाशमी MBBS MD फेलोशिप न्यूरो के पढ़ाई पढ़ले बड़न, तथा यहाँ दोनों आदमी मिल के इस सब बीमारी के उचित इलाज, उत्तम व्यवस्था तथा कम पैसा में करेलन। हमरो 2 साल पहले इहे बीमारी भइल रहे, लेकिन आज हम घर गृहस्थी के सारा काम कर रहल बानी।
10: उठाओ सर, इनका के जल्दी ले चला मोतिहारी में डॉक्टर मोबिन हाशमी एवं डॉक्टर मोहसिन हाशमी के लगे।
9: जी हाँ, यहाँ लकवा, ब्रेन हेमरेज, ब्रेन ट्यूमर, गर्दन के दर्द, कमर दर्द, साइटिका, माइग्रेन, मिर्गी के इलाज, दिमाग एवं स्पाइन के ट्यूमर, टीबी तथा इन्फेक्शन आदि के इलाज सफलता पूर्वक होला।
8: संपर्क हाशमी न्यूरो केयर हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर, स्टेट बैंक बाजार ब्रांच के सामने मोतिहारी। संपर्क
11: डॉक्टर मोबिन हाशमी, मोबाइल नंबर 7201955466, 6262523, 58579 आ 98525868646।
12: अरे वाह भौजी, अरे ये की चेहरा पर गजब के चमक, पहिने कारी लगे छन, हो गोड़ भगे।

0: आ हम फोकटिया क्रीम नहीं यूज करै छी, ई तो गोरी गोरी क्रीम के जादू छै, बुझलियै ने?
1: जी हाँ, गोरी गोरी क्रीम जे देत अहाँके चेहरा पर गजब सन चमक, चेहरा के राखत गोरापन सावला हटात आ तहिना मुँह में रहल दाग झुर्री सब सब दूर करत आ आँख के नीचा में रहल कालापन सेहो दूर भगात। तो आओ यत्र तत्र सर्वत्र बाजार में उपलब्ध अछि गोरी गोरी क्रीम।
2: आब हरेक गोरे गोरे क्रीम पर एकटा निश्चित उपहार देल जायत आ नकली सँ सावधान रहब।
0: तहन आब दोसर नहि, बस गोरी गोरी क्रीम।
1: निर्माता सारा भाई।
3: सूचना भोजपुरिया FM से विज्ञापन एवं प्रचार प्रसार करावे खातिर संपर्क करी। संपर्क के खातिर मोबाइल नंबर 98550368667, 98013665011, वैसा ही व्हाट्सएप नंबर 98013665011। अपने के बिजनेस तथा व्यापार के सहयात्री एवं शुभ चिंतक, हर पल अपने के साथ रेडियो भोजपुरिया FM 92.8 MHz, आदर्श नगर बीरगंज टाउन हॉल गेट के पास परसा नेपाल।
4: सौरभ मधुकर के प्यारे प्यारे भजनों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और साथ ही बेल आइकॉन जरूर दबाए।

0: अनेकतामा एक, यो हो भोजपुरी एफएम 92.8।
1: जो लोग डायबिटीज से परेशान है वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज जैसे
2: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, टीका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
1: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
3: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता प्रत्येक गुरुवार घोड़ा साहन स्टेट बैंक से 5 मकान पूरब मुरारी जी के मकान में,
4: एक शुक्रवार, शनिवार एवं रविवार
1: रक्सौल डंकर हॉस्पिटल से पूरब मिश्रा गली से पूरब वाली गली में त्यागी जी के अपने मकान में, प्रत्येक मंगलवार बेतिया उर्वशी सिनेमा से पूरब सेंट्रल बैंक के बगल में मानवर शोरूम के पास अजय झा जी के मकान में, प्रत्येक बुधवार मोतिहारी बेलही देवी मंदिर से पूरब राजेश्वरी होटल के सामने आनंद होटल के नीचे, प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में,
4: प्रत्येक बुधवार नरकटियागंज रजिस्ट्री कचहरी रोड कारखाना के बगल में सरबदेव कुशवाहा के मकान में।
3: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
1: और 9097160602।
5: डॉक्टर साहब देखी ना, मुंह पियर आ गई बा, हाँ तो झनझनाता, का बाएकर इलाज?
6: देखी अपने के कहल सब समस्या आ साथ में चेहरा मुरझाइल, सीढ़ी चढ़ला पर आ तेज चढ़ला पर जन सांस दम फूलेला उ समस्या, आ अपन उम्र से जन 5 साल ज्यादा दिखेला, इस सब समस्या के समाधान करे खातिर हेमोडेक्स के प्रयोग करी। साथे अपने अपन बच्चा के पूर्ण रूप से सुंदर स्वस्थ देखे के चाहतानी तो हेमोडेक्स ही प्रयोग करी।
7: जी गुजरात ग्रोमेड, विश्वास के एक नाम, गुजरात ग्रोमेड के बनल संपूर्ण पारिवारिक टॉनिक हेमोडेक्स, जे खून के कमी के समस्या से तुरंत छुटकारा दी। हेमोडेक्स आज वे अपन नजदीकी दुकान से खरीदी। हेमोडेक्स
8: जी अब अपने के साथ बा स्टोमाक्यू, जौन, गैस्ट्रिक अल्सर, हाइपर एसिडिटी के कारण सांस और छाती के तकलीफ, उच्च रक्तचाप, पुरान आव, पुरान कब्ज, सिर दर्द एवं बेचैनी जैसन तकलीफ के दूर करेला,
9: पेट के विभिन्न प्रकार के तकलीफ के करे दूर सियोर, इहा स्टोमाक्यू।
7: गुजरात क्रोमेट, गुजरात के उत्पादन।

0: Stoma Cure.
1: अरे वाह भौजी, अरे ये की चेहरा पर गजब के चमक, पहिने कारी लगी छन हो, गोड़ भगे।

0: आ हम फोकटिया क्रीम नहीं यूज करी छी, ई त गोरी गोरी क्रीम के जादू छे, बुझलियै ने?
1: जी हाँ, गोरी गोरी क्रीम जे देत अहाँ के चेहरा पर गजब सन चमक, चेहरा के राखत गोरापन सावला हटात आ तहिना मुंह में रहल दाग धुरी सब सब दूर करत आ आँख के नीचा में रहल कालापन सेहो दूर भगात। तो आओ यत्र तत्र सर्वत्र बाजार में उपलब्ध अछि गोरी गोरी क्रीम।
2: अब हरेक गोरे गोरे क्रीम पर एकटा निश्चित उपहार देल जात आ नकली सा सावधान रहब।
0: तहन आप दोसर नहि, बस गोरी गोरी क्रीम।
1: निर्माता सारा भाई।
3: कोलार्क रिसोर्ट बीरगंज 14 बहुअरी।
4: जी आप सही सुने, कोलार्क रिसोर्ट बीरगंज 14 बहुअरी, जो कि नारायणी सिंचाई के पूर्व में स्थित एक बहुत ही मनमोहक और हरियाली भरे वातावरण में सभी आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है। इस रिसोर्ट में अनेकों पार्टी हॉल जिसमें आप 20 आदमी से लेके 2000 आदमी तक का फंक्शन कर सकते हैं।
3: खास तौर पे बोर्ड मीटिंग, कॉन्फ्रेंस, बर्थडे पार्टी एंड एनिवर्सरी पार्टी और साथ ही शादियों के लिए खास रूप से अलग अलग पैकेज तैयार किया गया है।
4: कोलार्क रिसोर्ट आपको अनेक तरह के व्यंजन परोसने के लिए तैयार है, जिसमें खास करके चाइनीज, इंडियन, कॉन्टिनेंटल, इटालियन और रीजनल फूड अवेलेबल है। पूरी तरह से ट्रेंड स्टाफ स्वादिष्ट खाना के साथ आपको सर्विस देने को तैयार है।
3: आप किसी भी विशेष जानकारी और बुकिंग के लिए फूड एंड बेवरेज मैनेजर से कॉन्टेक्ट करें।
5: संपर्क मोबाइल नंबर 98023 10555 और 98023 10888।
6: भोजपुरी भाषा संस्कृति के पहचान, भोजपुरी FM 92.8 मेगाहर्ट्ज़ पर अभी रहुआ सुनतानी भोजपुरी निर्गुण।

0: रक्तदान जीवनदान टाइम चेक भोजपुरिया एफएम 92.8 मेगाहर्ज में
1: अभी रात के 9 बजे।
2: नमस्ते, आप सुन रहे हो भोजपुरिया एफएम 92.8। सुनते रहो, सुनाते रहो।

भक्ति से ओतप्रोत कार्यक्रम सत्संग प्रभात। सत्संग प्रभात, सत्य पे निष्ठा कलयुग का पतवार, सब करेगा वही जो है पालनहार। मर्यादा को सिखाए अधर्म पर पहुँचे आघात, परम निष्ठा से सुनो यही है कार्यक्रम सत्संग प्रभात। जितेंद्र पारासर के साथ में रेडियो भोजपुरी FM 92.8 MHz में प्रत्येक दिन सुबह 6 बजे से 7 बजे तक, सायं 7 बजे से 8 बजे तक कार्यक्रम सत्संग प्रभात। सत्संग प्रभात।

0: अभी आपने सुना था नहीं।
1: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य SP त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज जैसे
2: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टैबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, टीका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
1: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
3: वैद्य SP त्यागी जी से मिलने का पता प्रत्येक गुरुवार घोड़ा साहन स्टेट बैंक से 5 मकान पूरब मुरारी जी के मकान में,
4: एक शुक्रवार, शनिवार एवं रविवार
1: रक्सौल डंकर हॉस्पिटल से पूरब मिश्रा गली से पूरब वाली गली में त्यागी जी के अपने मकान में, प्रत्येक मंगलवार बेतिया उर्वशी सिनेमा से पूरब सेंट्रल बैंक के बगल में मानवर शोरूम के पास अजय झा जी के मकान में, प्रत्येक

0: बुधवार मोतिहारी बेलही देवी मंदिर से पूरब राजेश्वरी होटल के सामने आनंद होटल के नीचे प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में
1: प्रत्येक बुधवार नरकटियागंज रजिस्ट्री कचहरी रोड मुख्तार खाना के बगल में सरबदेव कुशवाहा के मकान में।
2: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554493
0: और 9097160602।
3: डॉक्टर साहब देखी ना मुँह पियर आ गई बा आहा तो झंझनाता का बा एकर इलाज।
4: देखी अपने के कहल सब समस्या आ साथ में सहरा मुरझाइल सीढ़ी चढ़ला पर आ तेज चढ़ला पर जन सांस दम फूलेला उ समस्या आ अपन उम्र से जन 5 साल ज्यादा दिखेला इस सब समस्या के समाधान करे खातिर हेमोडेक्स के प्रयोग करी। साथ ही अपने अपन बच्चा के पूर्ण रूप से सुंदर स्वस्थ देखे के चाहतानी तो हेमोडेक्स ही प्रयोग करी।
5: जी गुजरात ग्रोमेड विश्वास के एक नाम गुजरात ग्रोमेड के बनल संपूर्ण पारिवारिक टॉनिक हेमोडेक्स जे खून के कमी के समस्या से तुरंत छुटकारा दी। हेमोडेक्स आज वे अपन नजदीकी दुकान से खरीदी हेमोडेक्स।
6: जी अब अपने के साथ बा स्टोमा क्यूर जॉन गैस्ट्रिक अल्सर हाइपर एसिडिटी के कारण सांस और छाती के तकलीफ उच्च रक्तचाप पुरान आव पुरान कब्ज सिर दर्द एवं बेचैनी जैसन तकलीफ के दूर करेला
7: पेट के विभिन्न प्रकार के तकलीफ के करे दूर सियोर यह स्टोमा क्यूर
5: गुजरात प्रोमेट गुजरात के उत्पादन स्टोमा क्यूर।
8: अरे वाह भौजी अरे ये की चेहरा पर गजब के चमक महीने कारी लगे छन हो गोड़ भगे।

0: पतिया क्रीम नहि यूज करै छी, ई तऽ गोरी गोरी क्रीम के जादू छै, बुझलियै ने?
1: जी हाँ, गोरी गोरी क्रीम जे देत अहाँके चेहरा पर गजब सन चमक, चेहरा के राखत गोरापन सावला हटात आ तहिना मुँह में रहल दाग धुरी सब सब दूर करत आ आँख के नीचा में रहल कालापन सेहो दूर भगात। आओ यत्र तत्र सर्वत्र बाजार में उपलब्ध अछि गोरी गोरी क्रीम।
2: आब हरेक गोरे गोरे क्रीम पर एकटा निश्चित उपहार देल जायत आ नकली सँ सावधान रहब।
0: तहन आब दोसर नहि, बस गोरी गोरी क्रीम।
1: निर्माता सारा भाई।
3: सूचना भोजपुरिया FM से विज्ञापन एवं प्रचार प्रसार करावे खातिर संपर्क करी। संपर्क के खातिर मोबाइल नंबर 98550-36-867, 98013-65-011, वैसा ही व्हाट्सएप नंबर 98013-65-011। अपने के बिजनेस तथा व्यापार के सहयात्री एवं शुभ चिंतक, हर पल अपने के साथ। रेडियो भोजपुरिया FM 92.8 MHz, आदर्श नगर बीरगंज टाउन हॉल गेट के पास, परसा नेपाल।
4: नमस्ते, आप सुन रहे हो भोजपुरिया FM 92.8। सुनते रहो, सुनाते रहो।

0: अभी आपने सुना था
1: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज कराकर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य SP त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज जैसे
2: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, टीका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
1: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
3: वैद्य SP त्यागी जी से मिलने का पता प्रत्येक गुरुवार घोड़ा साहन स्टेट बैंक से 5 मकान पूरब मुरारी जी के मकान में,
4: प्रत्येक शुक्रवार, शनिवार एवं रविवार
1: रक्सौल डंकर हॉस्पिटल से पूरब मिश्रा गली से पूरब वाली गली में त्यागी जी के अपने मकान में, प्रत्येक मंगलवार बेतिया उर्वशी सिनेमा से पूरब सेंट्रल बैंक के बगल में मानवर शोरूम के पास अजय झा जी के मकान में, प्रत्येक बुधवार मोतिहारी बेलही देवी मंदिर से पूरब राजेश्वरी होटल के सामने आनंद होटल के नीचे, प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में,
4: प्रत्येक बुधवार नरकटियागंज रजिस्ट्री कचहरी रोड तार खाना के बगल में सरबदेव कुशवाहा के मकान में।
3: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
1: और 9097160602।
5: डॉक्टर साहब देखी ना, मुंह पियर आ गई बा, हाँ तो झनझनाता, का बाएकर इलाज?
6: देखी अपने के कहल सब समस्या आ साथ में चेहरा मुरझाइल, सीढ़ी चढ़ला पर आ तेज चढ़ला पर जन सांस दम फूलेला उ समस्या आ अपन उम्र से जन 5 साल ज्यादा दिखेला, इस सब समस्या के समाधान करे खातिर हेमोडेक्स के प्रयोग करी। साथे अपने अपन बच्चा के पूर्ण रूप से सुंदर स्वस्थ देखे के चाहतानी तो हेमोडेक्स ही प्रयोग करी।
7: जी गुजरात ग्रोमेट, विश्वास के एक नाम, गुजरात ग्रोमेट के बनल संपूर्ण पारिवारिक टॉनिक हेमोडेक्स, जे खून के कमी के समस्या से तुरंत छुटकारा दी। हेमोडेक्स आज वे अपन नजदीकी दुकान से खरीदी। हेमोडेक्स
8: जी अब अपने के साथ बा स्टोमाक्यूर, जॉन, गैस्ट्रिक अल्सर, हाइपर एसिडिटी के कारण सांस और छाती के तकलीफ, उच्च रक्तचाप, पुरान आव, पुरान कब्ज, सिर दर्द एवं बेचैनी जैसन तकलीफ के दूर करेला,
5: पेट के विभिन्न प्रकार के तकलीफ के करे दूर सियोर, यह स्टोमाक्यूर।
7: गुजरात क्रोमेट गुजरात के उत्पादन स्टोमाक्यूर।
9: अरे वाह भौजी, अरे ये की चेहरा पर गजब के चमक, पहिने कारी लगे छन, हो गोड़ भ गेल।

0: आब हम फोकटिया क्रीम नहीं यूज करै छी, ई तो गोरी गोरी क्रीम के जादू छै, बुझलियै ने?
1: जी हाँ, गोरी गोरी क्रीम जे देत अहाँके चेहरा पर गजब सन चमक, चेहरा के राखत गोरापन सावला हटात आ तहिना मुँह में रहल दाग धुरी सब सब दूर करत आ आँख के नीचा में रहल कालापन सेहो दूर भगात। तो आओ यत्र तत्र सर्वत्र बाजार में उपलब्ध अछि गोरी गोरी क्रीम।
2: आब हरेक गोरे गोरे क्रीम पर एकटा निश्चित उपहार देल जायत आ नकली सँ सावधान रहब।
0: तहन आब दोसर नहि, बस गोरी गोरी क्रीम।
1: निर्माता सारा भाई।
3: ए लक्ष्मीनिया, बोलत काहे नहीं कसन, काथी भइल बा?
4: ए रामू भैया, राते से बाबूजी के बोली बंद हो गइल बा, हाथ पैर भी सुन हो गइल बा, कहाँ इलाज कराई?
3: सुनो बबी, देर ना करो, इनका के जल्दी लेके चल जा मोतिहारी में डॉक्टर मोबिन हाशमी के हॉस्पिटल में। हमनी यहाँ के बहुत लोग इनका से इलाज करा के ठीक भइल बानी। और उनकर बेटा डॉक्टर मोहसिन हाशमी MBBS MD फेलोशिप न्यूरो के पढ़ाई पढ़ले बड़न, तथा यहाँ दोनों आदमी मिल के इस सब बीमारी के उचित इलाज, उत्तम व्यवस्था तथा कम पैसा में करेलन। हमरो 2 साल पहले यह बीमारी भइल रहे, लेकिन आज हम घर गृहस्थी के सारा काम कर रहल बानी।
5: उठावा सा, इनका के जल्दी ले चला मोतिहारी में डॉक्टर मोबिन हाशमी एवं डॉक्टर मोहसिन हाशमी के लगे।
4: जी हाँ, यहाँ लकवा, ब्रेन हेमरेज, ब्रेन ट्यूमर, गर्दन के दर्द, कमर दर्द, साइटिका, माइग्रेन, मिर्गी के इलाज, दिमाग एवं स्पाइन के ट्यूमर, टीबी तथा इन्फेक्शन आदि के इलाज सफलता पूर्वक होला।
3: संपर्क हाशमी न्यूरो केयर हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर, स्टेट बैंक बाजार ब्रांच के सामने मोतिहारी। संपर्क
6: डॉक्टर मोबिन हाशमी, मोबाइल नंबर 7201955466, 7062523, 58579 आ 98525868046।
7: कोलार्क रिसर्च, बीरगंज 14 बहुअरी।
3: जी आप सही सुने, कोलार्क रिसर्च बीरगंज 14 बहुअरी, जो कि नारायणी सिंचाई के पूर्व में स्थित एक बहुत ही मनमोहक और हरियाली भरे वातावरण में सभी आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है। इस रिसर्च में अनेकों पार्टी हॉल, जिसमें आप 20 आदमी से लेके 2000 आदमी तक का फंक्शन कर सकते हैं।
7: खास तौर पे बोर्ड मीटिंग, कॉन्फ्रेंस, बर्थडे पार्टी एंड एनिवर्सरी पार्टी और साथ ही शादियों के लिए खास रूप से अलग अलग पैकेज तैयार किया गया है।
3: कोलार्क रिसर्च आपको अनेकों तरह के व्यंजन परोसने के लिए तैयार है, जिसमें खास करके चाइनीज, इंडियन, कॉन्टिनेंटल, इटालियन और रीजनल फूड अवेलेबल है। पूरी तरह से ट्रेंड स्टाफ स्वादिष्ट खाना के साथ आपको सर्विस देने को तैयार है।
7: आप किसी भी विशेष जानकारी और बुकिंग के लिए फूड एंड बेवरेज मैनेजर से कॉन्टेक्ट करें।
5: संपर्क मोबाइल नंबर 9803-10555 और 9803-10888।
8: सूचना भोजपुरिया FM से विज्ञापन एवं प्रचार प्रसार करावे खातिर संपर्क करी। संपर्क के खातिर मोबाइल नंबर 9850-36-867, 9813-65-011, वैसा ही व्हाट्सएप नंबर 9813-65-011। अपने के बिजनेस तथा व्यापार के सहयात्री एवं शुभचिंतक, हर पल अपने के साथ रेडियो भोजपुरिया FM 92.8 MHz, आदर्श नगर बीरगंज, टाउन हॉल गेट के पास, परसा, नेपाल।
9: नमस्ते, आप सुन रहे हो भोजपुरिया FM 92.8। सुनते रहो, सुनाते रहो।

0: अभी आपने सुना था नहीं?
1: जो लोग डायबिटीज से परेशान है वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा कर इलाज कराकर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य SP त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज जैसे
2: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, साइटिका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
1: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
3: वैद्य SP त्यागी जी से मिलने का पता प्रत्येक गुरुवार घोड़ा साहन स्टेट बैंक से 5 मकान पूरब मुरारी जी के मकान में,
4: प्रत्येक शुक्रवार, शनिवार एवं रविवार
1: रक्सौल डंकर हॉस्पिटल से पूरब मिश्रा गली से पूरब वाली गली में त्यागी जी के अपने मकान में, प्रत्येक मंगलवार बेतिया उर्वशी सिनेमा से पूरब सेंट्रल बैंक के बगल में मानवर शोरूम के पास अजय झा जी के मकान में, प्रत्येक बुधवार मोतिहारी बेलही देवी मंदिर से पूरब राजेश्वरी होटल के सामने आनंद होटल के नीचे, प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में,
4: प्रत्येक बुधवार नरकटियागंज रजिस्ट्री कचहरी रोड तार खाना के बगल में सरबदेव कुशवाहा के मकान में।
3: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
1: और 9097160।
5: डॉक्टर साहब देखी ना, मुंह पियरा गई बा, हाथों झनझनाता, का बाएकर इलाज?
6: देखी अपने के कहल सब समस्या आ साथ में चेहरा मुरझाइल, सीढ़ी चढ़ला पर आ तेज चढ़ला पर जन सांस दम फूलेला उ समस्या आ अपन उम्र से जन 5 साल ज्यादा दिखेला इस सब समस्या के समाधान करे खातिर हेमोडेक्स के प्रयोग करी। साथे अपने अपन बच्चा के पूर्ण रूप से सुंदर स्वस्थ देखे के चाहतानी त हेमोडेक्स ही प्रयोग करी।
7: जी गुजरात ग्रोमेट विश्वास के एक नाम, गुजरात ग्रोमेट के बनल संपूर्ण पारिवारिक टॉनिक हेमोडेक्स जे खून के कमी के समस्या से तुरंत छुटकारा दी। हेमोडेक्स आजवे अपन नजदीकी दुकान से खरीदी हेमोडेक्स।
8: जी अब अपने के साथवा स्टोमा क्यूर, जॉन, गैस्ट्रिक अल्सर, हाइपर एसिडिटी के कारण सांस और छाती के तकलीफ, उच्च रक्तचाप, पुरान कब्ज, सिर दर्द एवं बेचैनी जैसन तकलीफ के दूर करेला,
5: पेट के विभिन्न प्रकार के तकलीफ के करे दूर सियोर, यह स्टोमा क्यूर।
7: गुजरात ग्रोमेट गुजरात के उत्पादन स्टोमा क्यूर।
9: अरे वाह भौजी, अरे ई की चेहरा पर गजब के चमक, पहिने कारी लगे छन, गोर भ गेल छी।

0: आब हम फोकटिया क्रीम नहीं यूज करै छी, ई तो गोरी गोरी क्रीम के जादू छै, बुझलियै ने?
1: जी हाँ, गोरी गोरी क्रीम जे देत अहाँके चेहरा पर गजब सन चमक, चेहरा के राखत गोरापन सावला हटात आ तहिना मुँह में रहल दाग झुर्री सब सब दूर करत आ आँख के नीचा में रहल कालापन सेहो दूर भगात। तो आओ यत्र तत्र सर्वत्र बाजार में उपलब्ध अछि गोरी गोरी क्रीम।
2: आब हरेक गोरे गोरे क्रीम पर एकटा निश्चित उपहार देल जायत आ नकली सँ सावधान रहब।
0: तहन आब दोसर नहि, बस गोरी गोरी क्रीम।
1: निर्माता सारा भाई।
3: ए चाचा जी, रौ लाठी हेने बाटे आ खोज तानी हो ने हैली रौआ अपन लाठी।
4: अरे देख न बबी, आग से कुछ लौटे नहीं छे, भगवान तोहरा सदा खुश रखे।
3: चली चाचा जी, रौरा के ले चलो तानी राम कुमार महावीर प्रसाद केडिया आँखा अस्पताल परवानीपुर बीरगंज में।
5: ई हॉस्पिटल के सेवा सब है,
3: हाथ तथा कंप्यूटर विधि से मोतिया बिंदु के ऑपरेशन, पर्दा यानी रेटिना के संपूर्ण इलाज, जल बिंदु के संपूर्ण इलाज,
5: बल्ब देखला पर इंद्रधनुष के जैसन यदि दिखाई पड़ता तो समझी कि अपने के जल बिंदु भइल बा,
3: कॉर्निया के संपूर्ण इलाज,
5: बच्चा के आँख के संपूर्ण इलाज।
3: नोट, कंप्यूटर से ऑपरेशन के 2 घंटा बाद घर जाए के मिली।
5: आँख से संबंधित सभी इलाज के खातिर केडिया आँखा अस्पताल परवानीपुर बीरगंज।
6: नमस्ते, आप सुन रहे हो भोजपुरी FM 92.8। सुनते रहो, सुनाते रहो।

0: हामी सबै नेपाली अनि हामी सबैको भावना एक र सबैलाई मनपर्ने भोजपुरी एफएम 92.8
1: करी खुनदान दी जीवनदान टाइम चेक भोजपुरी एफएम 92.8 मेगाहर्ज में
2: अभी रात के 10 बजे।